आत्मयाकर शरीर स्वस्थ खीण समय सिमरंतु नानक राम दामोदर माधवे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु रूप साध संगत जीओ, बिरद बाबा धन गुरु अमरदास जी महाराज उन्हां दा बख्शिश कीता अज दा हुक्मनामा। ये चार पदियां दे चै, चार चरणां दे चै, चार पैरियां दे चै। किसे एक केंद्री ख्याल नूं, किसे एक मरकजी ख्याल नूं बार बार चार पैरियां दे, चार चरणां दे, चार पदियां दे च दोहराया गया। इहदे च प्रथम पंक्ति अक्सर चौपदियां दे च अगर रहाओ ना होवे तो फिर पहली पंक्ति ही सिरलेख है, सिरमौर है, अनुमान है। युग चारे धन जे भवे, इहदे च चार युगां दा मेरे पातशाह ने जिक्र कीता है। अर्थ करन तो पहले थोड़ा जिहा मैं

0: तव भय भुमंचित साध संगम ओट नानक नारायण। धार्मिक दुनिया विच काम एक ऐसा विषय है, एक ऐसा प्रकरण है, एक ऐसा मजमून है जो अछूता है, जिसते बहुपक्षी विचार नहीं हुई, जे किधरे हुई है इशारतन खुल के नहीं हुई, जे किधरे हुई है दबे हुए अल्फाजां च खुले शब्दां दे च नहीं, उसका एक कारण भी दिखाई देता है। मनुख दा लोभ बार प्रगट होता है और बार भी वो कृत है, धन दी पकड़, पदार्थां दी पकड़ और उस लई भज दौड़ दिखाई दे जाती है। क्रोधातुर मनुख दा क्रोध भी एक ऐसी कृत है जो बार किसी ते प्रगट होता है, दिखाई दे जाता है। ये तो इस वक्त क्रोध दे जी रहे। अहंकार बोलां दे राही तरह तरह दी कृत दे राही प्रगट हो जाता है, दृश्यमान है। काम एक अंदरूनी वेग है, एक अंदरूनी बिरती है, एक अंदर दा उछाल है। शायद एक कृत भी अंदरूनी बन गई, पर्दे विच बन गई। क्रोध कृत प्रगट है, लोभ कृत प्रगट है, अहंकार प्रदर्शित होता है, लेकिन काम पर्दे विच होता है, छुप के होता है। इस कृत नूं सब तो छुपाया जाता है, हर एक तो छुपाया जाता है। शायद इसे वास्ते काम दी कोई खुल के चर्चा नहीं हुई। इस दे संबंध विच महापुरुषा ने खुल के कुछ लिखिया भी नहीं है। लिखे हुए ग्रंथ मिलते ने क्रोध दे उते, लोभ ते, अहंकार ते, मोह ते, लेकिन ए विषय बड़े बड़े सतपुरुषां दी कलम तो भी अछूता रह गया। और मूल कारण यही दिखाई देता है कि काम कृत मनुख सरेआम नहीं करता है। ये गल वखरी है कि पशु सरेआम करते ने, पंछी सरेआम करते ने और इस कृत नूं दिनदिश करते ने, जबकि मनुख ने इस कृत नूं रात लई चुनिया है। पढ़दा ते फिर रात दा पढ़दा, छुप के फिर रात दा अंधकार। यही कारण है कि इस दी विचार भी किधरे होई है बहुत तारीकी देच, बहुत पर्दियां देच, बहुत छुप छुप के होई है। क्रोध दी चर्चा मनुख सरेआम करता है, अहंकार दी गल भी सरेआम करता है। बहस मुबासे देच मोह दा भी जिक्र आम चलता है, लेकिन काम इस दी विचारधारा, इस दी चर्चा, इस दा बहस मुबासा भी करन लई मनुख किसे विशेष थां नूं चुनदा है और विशेष व्यक्ति नूं चुनदा है। हर एक दे सामने इस दी चर्चा करन लग्या भी संकोच करदा है, छुपांदा है इस विचार नूं। और यही कारण है चाहे राजनीतिक दुनिया है, चाहे सामाजिक दुनिया है, चाहे धार्मिक दुनिया है, हर विषय ते विचार होइए, यही एक विषय है जो अछूता रह गया। जे प्रातन कुछ ऋषियां ने जैसे के वात्सायन कोका पंडित इत्यादिक ने काम सूत्र लिखे तो एक कोई बहुत सारे ग्रंथ नहीं ने, थोड़े ने। और हैरानगी दी गल ए है कि इन्हों महापुरुषों ने भी जो कुछ लिखे है काम कृत नु किवें प्रगट करना है, इस कृत दा किवें प्रयोग करना है, यही लिखे है। अगर कोई महापुरुष ए लिखे कि क्रोध किवें करना चाहिदा है, इन्हों किवें प्रगट करना है, तो एक गल स्पष्ट हो गई, ये महापुरुष नहीं है। अगर कोई हंकार की व्याख्या इस ढंग नाल करे कि किवें हंकारी बनीदा है ते किवें हंकार नु प्रदर्शित करीदा है और हंकार प्रगट करन दे ढंग दसे, उकसाहन दे ढंग दसे, तो ए विचार ए लेखनी कोई धार्मिक लेखनी नहीं है। और इस संबंध विच कोई लिखे कि लोभी किवें बनीदा है और लोभ नु किवें प्रगट करीदा है, तो ओ स्पष्ट होवेगी गल कि कोई लोभी लिख रहा है। इस वास्ते ऐसा जापदा है वात्सायन ने या कोका पंडित ने काम सूत्र जो लिखे है काम उभारण लई, काम प्रदर्शित करन लई, कामी किवें बनीदा है और काम नु किवें प्रदर्शित करीदा है, ये लिखे है। इस वास्ते धार्मिक ग्रंथां दी कोटी विच वात्सायन दे काम सूत्र या कोका पंडित दे काम शास्त्र दर्जा नहीं प्राप्त कर सके। वो एक कामियां दी लेखनी बन के रह गए, कामियां दे पढ़न योग ही जो है रह गए और अत्यंत वासना ग्रसे हुए मनुखा ने अपनी वासना नु होर उजागर करने लई उन्होंने पढ़ना पढ़ाना शुरू किया। यही कारण है कि धर्म की दुनिया च और समाज की दुनिया च यह ग्रंथ प्रतिष्ठा नहीं पा सके। इस अछूते विषय नु गुरु नानक देव जी ने, गुरु अर्जन देव जी महाराज ने बकायदा छोया है, अपने विचारां विच थां दित्ती है और इस दा जिक्र भी कीता है। ये तो ठीक है कि जन्म दी क्रिया काम आश्रित है, तो जब काम आश्रित है काम बंद हो जाए, काम रहे ही ना तो जन्म बंद हो जाएगा। जन्म काम है, काम जीवन का केंद्र है। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज इसकी जो व्याख्या कर रहे ने अपने पावन शब्दों विच थां दित्ती है, तो महज इसलिए कि जैसे अधिक मात्रा विच खाया होया भोजन अमृत दी थां ते जहर बनता है, तंदुरुस्ती दी थां ते रोग पैदा करता है, इस तरह असीम काम जीवन विकसित नहीं करता बल्कि जीवन भ्रष्ट करता है, तलांजली विच ले जाता है। और यही बार बार दे जन्म ते मरण का कारण बनता है। शायद इसे वास्ते ही धन गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमान कर रहे ने कि काम अनंत जूना देच पान दा कारण बनता है, जीवन भटक के रह जाता है अनंत जन्मा तक। आप साफ फरमान कर देने, हे काम नरक विश्राम बहु जौनी भरमावण है। इस दी मूल व्याख्या ते इंज बनदी है जब जन्म काम तो होया है, तो काम दी अंश जीवन विच होवेगी, लाजमी होवेगी। जैसे मां बाप तो शरीर आया है, तो शरीर विच मां बाप दी अंश मौजूद है। मां की रकत पिता बिन धारा, पातशाहिंद भी फरमान करते ने, पानी मैला माटी गोरी, इस माटी की पुत्री जोरी। पिता दा मैला पानी, मां दी लाल मिट्टी, माटी गोरी गेरवी लाल, इस माटी की पुत्री जोरी। ए गेरवी लाल मिट्टी ते मैला पानी, इस दी सहयोग दे नाल ए मनुखी तन दा पुतला बनया। मिट्टी ते पानी दा मिश्रण कीता एक वेग ने, जिसका नाम है काम। इस वेग ने मिट्टी ते पानी नू जोड़े है, तो इस पुतले विच मिट्टी है, पानी है, वो वेग भी है। मां दा खून भी है, पिता दा बिंद भी है इस काया विच, लेकिन काम दा वेग भी है जन्म तो ही। इस बिंद नू, इस खून नू असी काया विचों कढ नहीं सकदे। ते जिथे उस बिंद नू, उस खून नू इस काया विचों नहीं कढ सकदे, तो काम नू भी नहीं कढ सकदे, क्योंकि तिन्हां दे मिश्रण दे नाल ही ते काया दा ढांचा बनया है, ये पुतला बनया है। पानी मैला माटी गोरी, इस माटी की पुत्री जोरी। बड़ा सुंदर ये पुतला बनया। तो सतगुरुदेव जी महाराज काम दे त्याग दा उपदेश नहीं दे रहे। इस उपदेश दे चाहे काम दे प्रति संयम। जैसे बकायदा आयुर्वेद ग्रंथ कहंदे ने, भूख लगे खादा होया भोजन दारू है, औषधि है, अमृत है, पर भूख नहीं एक एक बुरकी पाई हुई ए रोग पैदा करेगी। शरीर की लोड़ नहीं तुम दे रहे हैं। काम दा वेग शरीर की अधिक शक्ति है, जो शरीर विच नहीं समा सकती। वो अधिक वेग पर बलवाशना बनता है, काम बनता है। इसका निकास सही ढंग नाल हो सके, संयममयी हो सके, बकायदा शिक्षा है, दीक्षा है, मर्यादा बनाई गई है। लेकिन काम शरीर का हिस्सा है, सोचनी का नहीं। अज के समय विच काम चिंतन का हिस्सा बन गया, काम सोचनी का हिस्सा बन गया। शरीर विच ते है, ये मन विच भी हो गया, चिंतन विच आ गया, सोचनी विच आ गया, विचारां विच आ गया। ताही ते आज जितना साहित बाजार विच बिक रहा है, लोकी खरीद के पढ़ रहे ने, उस साहित विच काम ही काम है। साहित्यकारां दी कलम काम दे संबंध विच लिख रही है। लासमी साहित्यकार काम बारे सोच रहे ने, काम दा चिंतन कर रहे ने, काम दे विचार उन्हां दे अंदर चल रहे ने, काम सोचनी बन गई है। किसी वक्त शायर मशरिक डॉक्टर मोहम्मद इकबाल ने आख्या सी, हिंद के शायर व सूरत गर अफसाना नवीस, है बिचारे के आजा पर औरत सवार।
1: भावें उन्हें अपने देश की गल की थी।
0: हिंद के शायर व सूरतगर अफसाना नवीस है बिचारे के आजा पर औरत सवार।
1: ये जो नावलिस्ट ने कहानीकार ने ये जो संतराश ने ये जो शायर ने दर्शक ने विचारक ने इना दे विचारां विच इना दी लेखनी विच इना दी चित्रकारी विच इना दी संतराशी विच
0: काम ही काम छाया है।
1: मानो काम तो बिना और कुछ है ही नहीं। सारा साहित्य काम आश्रित हो गया है और इसे ही कहानियां शायरी दे आधार ते बनन वालियां फिल्मां काम दी प्रदर्शित तस्वीर बन गईयां। चारों पासे मानो काम ही काम छाया हुआ है। पोस्टर्स इश्तेहार फिल्मां मैगजीन शायरी संतराशी तस्वीर सब काम दी नुमाइश बन के रह गए। काम चिंतन बन गया, काम विचार बन गया, काम सोचनी बन गया, काम याद बन गया, काम राम बन गया, काम परमात्मा बन गया। जबकि चाहिदा ते ऐसा सी काम नू राम बना दे, लेकिन काम ही राम हो गया और चारों पासे काम ही मनुख दे दिल दिमाग ते छा के रह गया। काम एक ऐसा जज्बा अगर विचारां च आ जाए, सोचनी च आ जाए, चिंतन दे च आ जाए तो काम ग्रसिया मनुख राम दा चिंतन नहीं कर सकदा, नाम दा सिमरन नहीं कर सकदा। भगत रविदास जी महाराज फरमान कर देने, तुम कहियत हो जगते गुरु स्वामी, हम कहियत कल युग के कामी। हे जगत गुरु, हे जगत दे मालिक परमात्मा, असी ते इस दौर दे इस कल युग दे कामी जीव हां, काम नाल भरे होए। प्रथम इस काम नू अर्थां दे रूप विच समझना है। काम दे अखरी अर्थ ते ने कामना, पर कामनावां विच बहुत वासना है। इस वास्ते प्रियवाची शब्द बन गया काम वासना। कामना विच पदार्थ होवन तो काम लोभ, कामना सता दी होवे तो काम अहंकार। पर चूंकि कामना बहु वासना दी है, इस वास्ते काम वासना ते शब्द प्रचलित हो गया। काम लोभ काम अहंकार एक कथनी विच ना आ सके, ये लेखनी विच भी ना आ सके। काम दे अर्थ ने कामना, पर चूंकि कामना दी ज्यादा वासना है रूप है, यही कारण है कि काम दे अर्थ ही बन गए वासना, काम दे अर्थ ही बन गए रूप। रूपे कामे दोस्ती, रूपे कामे दोस्ती भुखे सादे गंड। जैसे स्वाद सारा भुख दे च है, इतना भोजन दे च नहीं, तो वासना रूप दे ही आकर्षित होंदी है, रूप दी तरफ खिंच दी है। तो काम ते रूप दी दोस्ती बन गई।
0: एक शायर ने बड़ा सुंदर लिखे है,
1: वो कहिंदा है जब हुसन नहीं तो इश्क भी पैदा नहीं होता, बुलबुल गिले दीवार पर शैदा नहीं होता, बुलबुल गुले दीवार पर शैदा नहीं होता, दीवार देते जो फुल बने होया है कोई बुलबुल उसते नगमे नहीं अलापती, नहीं चहचहांदी, नहीं गीत गांदी, क्योंकि तस्वीर है, हुसन दी तस्वीर है, हुसन नहीं, रूप दी छाया है, रूप नहीं। तो पंछी सियाणे ने छाया ते आशिक नहीं आंदे, छाया ते फिरा नहीं आंदे, रूप ते स्वप्न ते मनुख ते किसे किसे थां पंछियां तो भी गया गुजरे है, इते तस्वीरां ते भी मोहित है, चाहे चलदी फिरदी तस्वीर है जैसे कि फिल्मां, चाहे पत्थर दे उते उकरियां या तस्वीरां ने, चाहे तरह तरह दी इल्मे मसूरी है, चित्रकारी है, मनुख ते उसते भी फिदा होया पिया। यही कारण है कि फैश तस्वीरां वालियां मैगजीन्स बहुत बिक रहे ने, बहुत पढ़े जा रहे ने, और उन्हां तस्वीरां नूं मनुख देखदा है, खूब देखदा है। दूर क्यों जायो, मनुख दा ए वेग किसे समय इतनी शिखरता ते पहुंचिया सी कि जमीन दे ते मंदिर भी काम दे बने, राम दे नहीं, जैसे के खजुराहे दे मंदिर, कोणार्क दे मंदिर, जगन्नाथ पुरी दियां पत्थर ते उकरियां तस्वीरां मूर्तियां। हैरानगी है, खजुराहे नूं देखण लई देश विदेश तो भीड़ पहुंचती है, और छोटा जिहा कस्बा लेकिन चारों पासे फाइव स्टार होटल भी ने, एयरपोर्ट भी है, खूब जांदे ने सैलानी, और सैकड़े एकड़ विच फैले हुए इन्हां मंदरां नूं देखण लई। की है इन्हां मंदरां विच, कोई कथा हो रही है, कीर्तन हो रहा है, किसे संत दी मूर्ति दे दर्शन करन जा रहे ने, किसे अवतार दे चित्र दे दर्शन करन जा रहे ने, कता ही नहीं। उत्थे जो मूर्तियां ने वो काम दिया मूर्तियां ने, वासना दिया मूर्तियां ने, मनुख वेखण जा रहे है, मनुख दे अंदर दी वासना इसनु मजबूर कर रही है, एक कोणार्क जांदा है, जगन्नाथ पुरी दियां बाहर दियां तस्वीरां देखदा है, और खजुराहे दे मंदिर देखदा है। इस तो स्पष्ट होंदा है कि मनुख दे इस वासना दे वेग ने मंदिर भी बनाए ते वासना दे बनाए, प्रार्थना दे नहीं, मंदिर भी बनाए ते काम दे बनाए, राम दे नहीं। हुन इस सदी विच इस युग विच ते दिल दिमाग दते ए काम ही छा गया, हर पासे इस दी विचार, इस दी प्रदर्शनी अखबारां विच, शायरी विच, फिल्मां विच, साहित्य विच, तरह तरह दियां तस्वीरां विच, और चारों पासे इतना काम दा प्रगटावा होवे, प्रचार होवे, तो कोई ध्यानी कोई साधक राम दा चिंतन करे इस युग विच कठिनाई है, अगर वो कर सके तो महान है। भगत रविदास जी महाराज नूं इत्थे ही दुख तो के कहना पिया, तुम कहियत हो जगत गुरु स्वामी, हम कहियत कल युग के कामी।
0: इसी काम दे हड़देच बह गया समुच्चा मगरिब यूरोप अमेरिका कनाडा और बदकिस्मती है ये भारत जो सदियों तक धार्मिक देश रहे है और धर्म दी महिमा थे बड़ी प्रगाढ़ रही है। अफसोस ए भी अज यूरोप दी नकल कर मगरब दी नकल कर पच्छम दी नकल कर काम दे वेग दिच बह गया काम दे दलदल दिच फस गया। और यही कारण है कि राम दा चिंतन घटदा गया घटदा गया। हुन मोची ते कदम कदम ते बैठे मिलदे ने जुतियां गंढण वाले किसे रविदास दे दर्शन नहीं आंदे। कपड़े बुनन वाले ते बहुत मिलदे ने कबीर दे दर्शन नहीं आंदे। नाई ते बहुते ने सैण किथे कपड़ियां नू रंगण वाले ते बहुते ने पर नामदेव किथे चेतने महाप्रभु ए किथे। हुन कोई मीरा एक तारा लेके भजन दिस डुबी होई नहीं दिखाई देंदी। हुन कोई माता भाग कौर सुरवीरता दी मूर्ति नहीं दिखाई देंदी। समो जगत इसे ही वैण देच वह तो रहा है इसे ही हड़ देच वह तो रहा है। और धन गुरु अर्जुन देव जी महाराज इस पावन पवित्र श्लोक देच इसी वेग दा जिक्र कर रहे ने। हे कामं नरक विश्रामं बहुजोनी भरमावणे चित हरणं त्रैलोक गमं जप तप सील बेदारणे। हे काम तू कीते हुए जप नू कीते हुए तप नू शील नू भंग करन वाला है। ना तू संजम रहन देना है ना तू शर्म रहन देना है ना तू जप रहन देना है ना तू तप रहन देना है। इतना चंचल कर देना है कि मनुख लई राम दा चिंतन कठिन हो जांदा है। नहचल नाल जुड़ना कठिन हो जांदा है। चंचल दा मतलब है चल चल चल। इतना चलाए मान कर देना है मन नू वो जो नहीं चल है नहीं चलदा टिकया होया है उस नाल टिकना उस नाल जुड़ना कठिन हो जांदा है। और जीवन चंचलता दे वैण देच बह तुरदा है। अगम्मी महान मिलिया ए जीवन काम दी भेंट हो जांदा है। जद के जीवन मिलिया सी राम नू भेंट करन लई हो गया काम दी भेंट। अगर काम प्रार्थना बन जाए तो राम प्रगट होंदा है। काम वासना बन जाए तो फिर जीवन काममई हो जांदा है। काम दा रूप बन जांदा है वासना दा रूप बन जांदा है।
1: हे कामं नरक विश्रामं बहुजोनी भरमावणे चित हरणं त्रैलोक गमं जप तप सील बिदारणे अलप सुख अवित चंचल

नानक नारायण। हार गया वो जीवन दी बाजी जो काम आश्रित हो गया, जीत गया वो जीवन दी बाजी जो राम आश्रित हो गया। कामना राम दी करिए मनुख सदाचारी बन जांदा है, कामना वासना दी करिए दुराचारी बन जांदा है। और वासना दी कोई सीमा नहीं, कामना दा वेग वासना नू वधांदा है, वासना दा वेग कामना नू वधांदा है। और इस तरह जीवन दर जीवन जिंदगी काम आश्रित हो जाती है। सतगुरुदेव जी महाराज कहते हैं त्रै लोक गवन, सिर्फ मनुखा तक ही ऐ वासना तेरी पहुंच नहीं, तू ते तीन लोकां दे छाई हुई है, पशुआं दे चैं, पंछियां दे चैं, मनुखां दे चैं, जिन्हां नूं असीं देवता कहिंदे आं, ये भी सही वासना करके भ्रष्ट होए। उन्हां दे अंदर भी कामना वासना दी ही चलदी रही। देवतियां दे सिरमौर देवते मने जांदे ने इंद्र, और ये असीम वासना करके काम करके भ्रष्ट होया। और वाकई काम वासना मनुख नु अंधा कर दे दिए, इतना अंधा हो गया कि भ्रष्ट होया है। एक वक्त दा सिरमौर संत गौतम ऋषि उसकी पत्नी अहिल्या थे, जो एक देवी दे समान सी, इसने उसनु वेसवा बनाया। जदके देवते दा कम है वेसवा नु देवी बना देना, पर एक ऐसा देवता वाकई काम देवते नु भी भ्रष्ट करके रख देंदा है, मनुखा नु भी भ्रष्ट कर देंदा है, पशु पक्षी ते इसी दलदल विच फसे हुए ने। बड़े बड़े जपीश्वर तपीश्वर लोभ दा ते त्याग कर गए, अहंकार नु भी सुट के परे भज गए, सता छोड़ देती, लेकिन रूप दा चिंतन अक्सर चलदा रहा, वासना मजबूर कर दी रही, रूप दा चिंतन चलदा रहा। कहानियां ने गाथावां ने इंद्र स्वर्ग तो अपछड़ा भेजदा है, किधरे मेनका किधरे उर्वशी किधरे तप भंग आउंदा है, विश्वामित्र दा किधरे भ्रष्ट आउंदे ने श्रृंगी ऋषि, किधरे वासना दे दलदल विच फसदे ने महान योगी राज मच्छंद्रनाथ। दरअसल कोई स्वर्ग तो किसे अपछड़ा नु नहीं भेजदा, वासना कल्पना दा स्वर्ग खड़ा कर देंदी है, कल्पनावां दियां हूरां खड़ियां कर देंदी है, कल्पना दियां अपछड़ावां खड़ियां कर देंदी है। बैठा सी राम दे चिंतन विच, चिंतन चल पिया हूरां दा, बैठा सी प्रभु सिमरन विच, सिमरन चल पिया अपछड़ां दा, कल्पना दा स्वर्ग। और जद कल्पना दे स्वर्ग विच अपछड़ा होवे हूरां आवन, तो वास्तविक जगत जो हकीकत दा जगत है इस दे इस ऋषि नु भ्रष्ट होंदे आ देर नहीं लगेगी, जो कल्पना सी साकार हो जांदी है, तो भ्रष्ट होए विश्वामित्र, भ्रष्ट होए श्रृंगी ऋषि, भ्रष्ट होए ऋषि महान योगी मच्छंद्रनाथ। ये आम साधारण मनुख नहीं ने,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਖਰਤਾ ਨੂੰ ਛੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਮਨਾ ਔਰ ਕਾਮਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸ਼ਨਾ ਔਰ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੀ ਹੀ ਕਾਮਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਰਿਸ਼ੀ, ਇਹ ਜੋਗੀ, ਇਹ ਬੜੇ ਬੜੇ ਜਪੀਸ਼ਵਰ, ਇਹ ਬੜੇ ਬੜੇ ਤਪੀਸ਼ਵਰ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਇਸੀ ਦਲਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਦੇ ਰਹੇ। ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਸਨ, ਜੀਵਨ ਨਿਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫੁਨੇ ਛੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਧਨ ਜਾਈਏ, ਸਦਕੇ ਜਾਈਏ, ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਈਏ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ, ਜੋ ਬੜੇ ਬੜੇ ਬਾਰੀਕ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਛੂੰਹਦੇ ਨੇ ਔਰ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵਾਕ, ਪੰਕਜ ਫਾਤੇ ਪੰ ਮਹਾਮਦ ਗੁੰਫਿਆ ਅੰਗ ਸੰਗ ਉਰਝਾਏ ਬਿਸਰਤੇ ਸੁੰਫਿਆ। ਪੰਕਜ, ਪੰਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਿੱਕੜ ਨੂੰ, ਪੰਕਜ ਪੰਕ ਤੋਂ ਜਮਿਆ, ਪੰਕਜ ਪੰਕ ਨੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਮਿਆ, ਕਮਲ ਪਦਮ ਚਿੱਕੜ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੈ। ਕਮਲ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਚ ਨੇ, ਦਲਦਲ ਦੇ ਚ ਨੇ, ਪਰ ਸੁਹੱਪਣ ਮਹਿਕ ਖੇੜਾ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਚਿੱਕੜ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ, ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ। ਕਈ ਦਫਾ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਾਣੀ ਘਟਦਾ ਹੈ, ਕਮਲ ਦੀ ਬੁਲੰਦੀ ਵੀ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਗਗਨ ਨੂੰ ਚੁੰਮ ਰਿਹਾ ਸੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਤਰਫ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਘਟ ਗਿਆ। ਪਾਣੀ ਪਦਾਰਥ, ਪਾਣੀ ਸੁੱਖ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਸੁੱਖ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਸੁੱਖ, ਧਨ ਦਾ ਸੁੱਖ। ਮਨੁੱਖ ਗਗਨ ਨੂੰ ਚੁੰਮਣ ਦੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਾਕਈ ਧਨ ਸੰਪਦਾ ਪਦਾਰਥ ਜਦ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਸੁੱਖ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਸੁੱਖ, ਧਨ ਸੰਪਦਾ ਦਾ ਸੁੱਖ, ਸਤਾ ਦਾ ਸੁੱਖ, ਤੇ ਜਦ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੁੱਖ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਨਾ ਰਵੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘਟ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਮਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਥੱਲੇ ਗਿਰਦਾ ਹੈ, ਉਚਾਈਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਰਾਜਘਰਾਨੇ ਤੋਂ ਨੇ, ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਨੇ ਧਨ ਸੰਪਦਾ ਦੀ ਬੁਲੰਦੀ ਦੇਖੀ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਪਦਾਰਥ ਬਹੁਤ ਸਨ, ਉਚਾਈਆਂ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਵਾਮੀ ਮਹਾਵੀਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਨੇ, ਰਾਮ ਰਾਜਾ ਨੇ, ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਰਾਜਾ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਗਤ ਸੰਤ, ਅਗਰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਜਲ ਭਾਵੇਂ ਥੋੜਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਆਸਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਇਆ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਬਲੇ ਪੁੰਨ ਸਨ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੀ ਪੁਰਬਲੇ ਪੁੰਨ ਦਾ, ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੋਇਆ। ਆਮ ਸਾਧਾਰਨ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੇ ਆਲਮਾਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ।
पानी कटे है, कमल थल्ले गया, अचानक किधरे जोर दी बारिश हुई और सरोवर देच हड़दा पानी आ गया, बहुत वेग नाल आया, बड़ी तेजी नाल सरोवर ऊपर उठे है। कमल संभाल नहीं सके अपने आप नु, डूब गया पानी च। सिर्फ पानी च ही नहीं डूबिया, जिस चिक्कड़ दे चिस्तियां जड़ा सन उसे चिक्कड़ दे च खुब के रह गया। मनुख पैदा होया काम तो चिक्कड़ तो, मनुखी जीवन दा कमल चिक्कड़ तो पैदा होया है, काम तो पैदा होया है। पंकजे फाते पंग महामद गुंफिया, ये जो इतना सुंदर कमल दा फुल है इते पंक दी देन है, चिकड़ दी देन है। ये मनुखी जन्म, ये मनुखी काया, इतनी सुंदर काया, इते काम वेग दी देन है, इते जमे है चिकड़ तो। पिता दा चिकड़, मां दा चिकड़, पिता दी वासना, मां दी वासना, इते उस तो जमे है, इतने चिक्कड़ तो पैदा होया है। पैदा तो चिक्कड़ तो होया, घर तेच सुख वधे, आराम वधे, प्रभु दा सिमरन चलिया, ऊपर उठिया, आसमाना नु छुवन दी लालसा, गगन नु सजदा करन दी लालसा, लेकिन पानी घटिया, थल्ले आया, दुख और पदार्थां दी कमी उलझना कुछ खेड़े च फर्क पांदियां ने, कुछ गिरांदियां ने। अचानक किधरे हड़ दा पानी, किधरे किसी दरिया चो वाड़ा निकले है, उसने रुख सरोवर दी तरफ कर लिया, लबालब अचानक अचनचेत सरोवर नु भर देता है। कई दफा अचानक धन संपदा दे अंबार मनुख दे घर दे च लग जांदे, हड़ दी तरह मानो किसी दरिया दा वेग सरोवर दी तरफ हो गया है, मानो बरखा दे हड़ दा जल सरोवर दी तरफ हो गया है। किसे किसे घर देच, किसे किसे मनुखी जिंदगी ते धन ते संपदा दी बारिश ही हो जाती है, जिवें सरोवर देच कोई दरिया पै गया है, इस तरह पदार्थ आ गए ने, इस तरह धन संपदा आ गई है। अचानक मिले हुए इस धन संपदा ते पदार्थां दे वेग नूं झल नहीं सकया, ठल नहीं सकया, डूब गया। पहले पदार्थां च डूबया, पहले कमल पानी च डूबया, फिर जिस चिक्कड़ दे चिस्तियां जड़ां सन, जिस चिक्कड़ चों पैदा होया उसी चिक्कड़ विच फस के रह गया। फिर ते अत्यंत कामी हो गया। जद सुनदे हां किसे नवाब दियां 500 बेगमां, किसे राजे दियां 400 राणियां, किसे शेख दियां 100 बेगमां, हैरानगी क्या जिंदगी इसे लई, चिक्कड़ तो जमया, चिक्कड़ विच फस के रह गया। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज कहने ने, पंकज फाते पंग महामद गुंफिया, अंग संग उरझाए बिसरते सुंफिया। ऐ कमल तू अपनी महक भूल गया, अपना स्वप्न भुल गया, अपना खेड़ा भुल गया, चिक्कड़ विच फस के रह गया।
बढ़िया बढ़िया जिंदगियां खिड़िया हुई गगनचुंबी इस चिक्कड़ विच गर्त होंदिया देखिया ने, फसिया हुई देखिया ने, इतिहास भरिया गया और हैरानगी क्या जीवन सिर्फ इसे लिए है, नहीं संभाल सकया इस हड़ नूं, जितना धन वधिया जितने पदार्थ वधे उतना ही काम ही हुंदा गया, जितने दुनियावी सुख वधे उतना ही काम ही हुंदा गया, इदी वाशना इदी काम वाशना इदी कामना बार बार जाके रुकी स्त्री ते। वैसे ते कामना एक सर्कल दिच दौड़ दी है, एक घेरे दिच एक वर्तुल दिच, पुत्र दी कामना मिल गया पुत्र कामना अगे गई, मित्रां दी कामना मिल गया मित्र कामना अगे गई, धन संपदा दी कामना कामना अगे गई, ये वक्ती तौर के आके रुक दी है स्त्री ते। तो साहित्यकारा ने साडे देश दे धार्मिक पुरुषां ने स्त्री नूं एक नाम दिता है कामनी, कामना दी मणि, जिथे मनुख दी कामना आके रुक जांदी है वक्ती तौर ते, घुमदी है फिर आके स्त्री ते रुकदी है, घुमदी है फिर आके स्त्री ते रुकदी है, स्त्री बन गई कामनी। स्त्री दी कामना घुमदी है रुकदी आके पुरुष ते, तो पुरुष बन गया कामदेव एक कामनी। स्त्री ते पुरुष दा ए मिलन कामना दी मणि ते कामदेव दा मिलन होके रह गया, जदके इते होना चाहिदा सी ज्ञान दा मिलन भक्ति दा मिला मिलन। स्त्री नू ज्ञान मिलदा पुरुष नू भक्ति मिलदी, पर नहीं, पुरुष नू मिली कामनी स्त्री नू मिलिया कामदेव, ज्ञान देव रह गया भक्ति देवी रह गई, भक्ति दी मणि रह गई, पुरुष दी चमक दमक मत्थे ते उस दिन प्रगट होवेगी जिस दिन भक्ति दी मणि इसते मस्तक दे चमके, और स्त्री दा मस्तक उस दिन चमकेगा जिस दिन ज्ञान दा प्रकाश ज्ञान दा सूरज उस दे मकसद मस्तक पे जो है चमके, और स्त्री पुरुष दा मेल ए ज्ञान ते भक्ति दा मेल ना होके इते कामना दी मणि ते कामदेव दा मेल होके रह गया। परिवारक रिश्ते ए ज्ञान ते भक्ति दे रिश्ते ना रह गए, इते काम देव ते कामना दी मणि। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ते ऐसा भी प्रमाण करदे ने, छले कनक कामनी, छले आ गया मनुख दे च, धोखा खा गया मनुख कामनी तो कनक तो, जिंदगी बर्बाद हो गई, जीवन भ्रष्ट होके जह रह गया, भक्ति दी मणि चमकनी चाहिदी सी, काम मणि चमक रही है कामनी, ज्ञान दा प्रकाश मस्तक ते होना चाहिदा सी कामदेव चमक रहा है, और ए मिलन अगर कामदेव ते कामनी दा होया और जीवन भर ऐसा होया तो इस तो जो औलाद पैदा होवेगी वो कोई ऋषि मुनि दार्शनिक संत भगत ज्ञानी नहीं होवेगी, वो औलाद कैसी होवेगी। धन गुरु नानक देव जी महाराज इन फरमान करते हैं, कली अंदर नानका

कर इस दौड़ दे इस कामी युग दे छम कैयत कल युग के कामी जो संतान पैदा हो रही है कली अंदर नान का जिन्ना दा अवतार जिन भूत पैदा हो रहे हैं पुत जनूरा धी जनूरी जोरू जिन्ना दा सिकदा पुत ते जिन भूत है तेवी जिन भूत है कोई मीरा नहीं पैदा हो रही माता भाग कोर नहीं लैला पैदा हो रही है कोई कबीर कोई रविदास कोई भाई मनी सिंह कोई भाई गुरदास नहीं पैदा हो रहे मजनू पैदा हो रहे क्यों मां बाप शरीरक तल तो उच्चे ही नहीं उठ सके दोहां दा मिलन पहले शरीरक होवे सहजे सहजे ए जद शरीरक तल तो उच्चे उठन उस समय ना दे घर औलाद आवे भगत आणगे दार्शनिक आणगे विज्ञानक आणगे संत आणगे पर जे जीवन भर शरीर तो उच्चे ही नहीं उठ सके वासना तो उच्चे ही नहीं उठ सके और इसे दल दल दे फसे रहे तो औलाद आएगी जिन ते भूत जिन्ना ते भूता नाल ए युग ए संसार भर गया जिन भूत जो अदृश्य रूप दे पहले कर्म करते सन दृश्यमान रूप दे ए मनुख आज कर रहे हैं जिन भूतां नू काबू करना औखा सी अजोकी औलाद नू काबू करना औखा है बहुत औखा है कठिन है ए कॉलेज स्कूलां दियां कुर्सियां तोड़ रहे ने उस्तादां नू मार रहे ने तरह तरह दे कुकर्म कर रहे ने और किधरे भी सील नहीं संजम नहीं उसका मूल कारण है मां बाप दा जीवन प्रार्थना नहीं बन सकया वासना ही बनिया रहा मां बाप दा जीवन राममय नहीं हो सकया सिर्फ काममय होके रह गया पातशाह कहंदे ने रन्ना होइयां बोधियां पुरख होए सयाद सील संजम सुच भन्नी खाना खाज अखाज रन्ना होइयां बोधियां स्त्रियां बहुत चंचल दिन रात अपने रूप दी प्रदर्शनी करनी और अपने रूप नु देखना यही उना दी जिंदगी दा लक्ष्य बन गया भगत कबीर भी कहंदे ने वेद पढ़े पढ़ पंडित मुए रूप देख देख नारी जिथे वेद पढ़दिया पढ़दिया पंडित इसे जी खप गए उथे अपना रूप वेखदी वेखदी ते विखांदी विखांदी बस नारी इसे जी खप के रह गई रूप पेख पेख नारी स्त्री प्रथम अपना रूप वेखदी है पर महसूस कर दी हां हूं ठीक है फिर विखाण लई निकलदी है रूप दी प्रदर्शनी शरीर दी प्रदर्शनी और यही चाव यही शौक वद्दा जाए तो जिस्म तो कपड़ा हटदा जाएगा मनुख एक सभ्य मनुख सोच भी नहीं सकदा कि स्त्री अर्ध नगन होके भी घूम सकती है बाजारां दे और नगन होके भी नच सकती है थिएटरां दे हां वासना चरम सीमा ते पहुंची हुई होवे रूप नु वेखना ते विखाना यही जिंदगी दा लक्ष्य होवे तो फिर शरीर तो कपड़ा हटदा जाएगा अर्ध नगन और फिर

तो फिर अर नदन शरीर जो फिल्मा दिचने तस्वीरां दिचने मूर्तियां दिचने ओ वेखो। यही कारण है कि नंगियां तस्वीरां खूब बिक रहीयां ने। फैश नावल जिनसियात नाल भरियां हुईयां कहानियां और जिनसी तस्वीरां नाल भरे हुए मैगजीन खूब बिक रहे हैं, खूब पढ़े जा रहे हैं, खूब पढ़ाए जा रहे हैं। मनुख मानो बीमार होके रह गया है, वासना दा बीमार, और इसने सहजे सहजे हर माहौल नू दूषित कीता है। इस वासना नू प्रार्थना किवें बनाइए? प्रार्थना तो मिलेगा सदीवी सुख, वासना तो मिलता है बिल्कुल मामूली सुख। निमक काम स्वाद कारण पानी, कोट जन्म दुख पावे कोट दिनस दुख पावे। महाराज इस श्लोक विच भी कहते ने, अल्प सुख अवित चंचल ऊंच नीच समावणे। बहुत थोड़ा जिहा सुख और तू ऐसा चंचल कर देना है, चाहे कोई महान मनुख है ते चाहे कोई तुच्छ, इसे ही अलप सुख दे फस के रह जांदा है। बचाओ, धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ढंग दसते ने।

रखा करो। विद्वाना ने क्रोध नू अग्न के है, बड़ी प्रचंड अग्न जो मन दिचो उठ के तन भी राख कर दिए। महान परबल अग्नि क्रोध ता थोड़ा बहुत पशु पक्षियां दिस भी देखने नु मिलता है, लेकिन क्रोध दी अग्न मनुख देच बड़ी प्रचंड है, बड़ी प्रबल है। क्रोध दैवी गुणानु साड़ के राख कर देंदा है, स्व कर देंदा है। क्रोध ही मनुख दे अंदर कोई गुण रह नहीं जांदा।

0: दरअसल क्रोध उत्पत्ति का कारण मनुख इति स्पष्ट है कि कामनावां दा वेग है, काम दा वेश है, कामना वासना दी, कामना धन दी, कामना सता दी, सता दी कामना ये कामना अहंकार दी कामना है, धन दी कामना ये कामना लोभ दी कामना है, वासना दी कामना ये कामना काम वासना है, जिस तो वासना दी तृप्ति हो जाए, जो लोभ पूर्ति दे सहायक होवे, मददगार होवे, जो अहंकार नु पठे पावे, ओ मेरा प्रतीत होंदा है, उसते मोह आण लग पैंदा है, चंगा लगदा है, पर जो वासना पूर्ति दे रोक खड़ी कर देवे, लोभ पूर्ति रिच दीवार बन जाए, अहंकार सदा प्राप्ति लई रस्ते दा रोड़ा बन जाए, तो फिर उस ते क्रोध आ जाता है। क्रोध उस वक्त पैदा होता है जब वासना अतृप्त रह जाए, लोभ अतृप्त रह जाए, अहंकार अतृप्त रह जाए, और जिस दे राही महसूस होवे कि वासना अतृप्त रह गई है, लोह अतृप्त रह गया है, अहंकार अतृप्त रह गया है, बस उसे ते प्रबल क्रोध आंदा है, उसे नु ही चबा जान नु जी करदा है, रेजा रेजा करन नु जी करता है। पर जो मददगार होवे, सहायक होवे, वासना पूर्ति देच, धन संपदा दी पूर्ति देच, सता दी पूर्ति देच, बहुत प्यारा लगता है, मोह आ जांदा है, उसते उनु सीने नाल लाण नु जी करता है। तो क्रोध की है अतृप्त वासना, क्रोध की है अतृप्त लोभ, क्रोध की है अतृप्त अहंकार। विद्वानों का कथन है, अगर क्रोध है तो किसी होर दुश्मन की लोड़ नहीं, दुश्मनी की खान है क्रोध, दया है प्रेम है तो कोई होर किसे मित्र दी लोड़ नहीं, सारी मित्रता दी खान है दया और प्रेम। क्रोधी ते देवतियां तक नु दुश्मन बना लेंदा है, प्रेमी गलियां दे कख नु भी मित्र बना लेंदा है, राक्षसां नु भी मित्र बना लेंदा है। क्रोधी महामूढ़ है, प्रेमी ज्ञानी है, स्याणा है, सूझवान है, सुचेत है। तदी ते कहने ने क्रोध पैदा ही अचेत अवस्था तो आंदा है। उर्दू दी कहावत, गुस्सा बेवकूफी से शुरू होकर पश्चाताप पे जाके खत्म हो जाता है। क्रोध अगर एक मेंबर देच, एक सदस्य देच, घर दे एक प्राणी देच पैदा हो जाए, तो सारा घर महाभारत दा अखाड़ा बन जाता है। घरेलू युद्ध, घर देच कलेश, पर यही परिवार जे पूरे दा पूरा किधरे क्रोधी हो जाए, ਸਾਰੇ ਮਹੱਲੇ ਨੂੰ ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਕਿਧਰੇ ਸਾਰਾ ਮਹੱਲਾ ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਅਗਨ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਚੰਡ ਅਗਨ ਵਿੱਚ ਜਲਣ ਲੱਗ ਪਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਚਾਹਿਆ ਹੈ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਹੱਲਾ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਜਲਾ ਕੇ ਖਾਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਪ੍ਰਤੀ ਜੰਗ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਕਰਕੇ ਜਦ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਯਕਜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਥਲ ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਕਬਰਾਂ ਹੀ ਕਬਰਾਂ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਹੀ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ। ਸਿਰਫ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕ੍ਰੋਧ ਤਾਂ ਐਸੀ ਅਗਨ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਜਲਾ ਕੇ ਖਾਕ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕ੍ਰੋਧ ਅਗਨ। ਵਿਦਵਾਨ ਐਸੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਿਖਾਈ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੂਬਸੂਰਤ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਬੀਜ ਅਤਿਅੰਤ ਕਰੂਪ ਤੇ ਕਠੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਕਠੋਰ ਔਰ ਕਰੂਪ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਧਰਤੀ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਮੌਸਮ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਠੋਰਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਮਲਤਾ ਝਲਕਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰੂਪਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁੰਦਰਤਾ ਡੁੱਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਨਿਰਗੰਧ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਸੁਗੰਧ ਫੈਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਠੋਰ ਸੇ ਬੀਜ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਮਲਤਾ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕ੍ਰੋਧ ਹੈ, ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦਇਆ ਹੈ, ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕ੍ਰੋਧ ਹੈ, ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਕ੍ਰੋਧ ਇੱਕ ਬੀਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਰੂਪ ਸਹੀ, ਕਠੋਰ ਸਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਬੀਜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਪੂਜਾ ਸਥਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਫੁੱਲ ਅਰਪਣ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੁਸ਼ਪ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਤਾਰਕਿਕ ਮਨੁੱਖ ਬਾਹਰੋਂ ਗੀਟੀਆਂ ਤੇ ਪੱਥਰ ਚੁੱਕ ਲਿਆਵੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਭੇਟ ਕਰੇ, ਕਿਸੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਚੜਾਵੇ, ਲੋਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਮੂੜ ਹੈ, ਨਾਦਾਨ ਹੈ, ਨਾ ਸਮਝ ਹੈ, ਪਾਗਲ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਤਾਰਕਿਕ ਤਰਕ ਖੜੀ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਅਗਰ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪੱਥਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭੇਟ ਹੋ ਸਕਦੇ? ਪੁਸ਼ਪ ਚੜਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਕਰ ਤੇ ਗੀਟੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ? ਉਸ ਦੀ ਤਰਕ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਇੰਜ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਪੱਥਰ ਕਰੂਪ ਹੈ, ਪੱਥਰ ਨਿਰਗੰਧ ਹੈ, ਪੱਥਰ ਕਠੋਰ ਹੈ, ਫੁੱਲ ਕੋਮਲ ਹੈ, ਫੁੱਲ ਸੁਗੰਧਿਤ ਹੈ, ਫੁੱਲ ਸੁੰਦਰ ਹੈ। ਸੁੰਦਰਤਾ ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਵਜੋਂ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਮਲਤਾ ਸੁਗੰਧ ਅਰਪਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਠੋਰਤਾ ਕਰੂਪਤਾ ਤੇ ਨਿਰਗੰਧ ਨਹੀਂ। ਫੁੱਲ ਧਰਮ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੋਭਾ ਬਣਦੇ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮੰਦਰਾਂ ਦੀ, ਪਰ ਜੋ स्वयं फुल दी तरह हो जाए, अपने मन नूं फुल दी तरह कर देवे, परमात्मा दे कंठ दा ओहार बन जांदा है, उस दी दुनिया महान हो जांदी है, उते शिंगार बन जांदा है धर्म दा, जो कोमल हो गया है, सुगंधित हो गया है, और कोमल हो गया है, सुंदर हो गया है, सुगंधित हो गया है। क्रोध ही कोमल हो सकता है, क्रोध सुगंधित हो सकता है, क्रोध बहुत वड्डी सुंदरता अपने विचों पैदा कर सकता है, बीज है। मूर्ख इस बीज नो अपने कोल रख लेंदा है, सेना इस बीज नो गोड़दा है, बोंदा है, और बोना बस यही है, अपने मन नो प्रभु नो समर्पित करना, नाम भी जोड़ना, क्रोध नाल भरया होया यही मन दया नाल भर जांदा है, रब्बी स्वपन नाल भर जांदा है, अत्यंत कोमलता नाल भर जांदा है। इस नूं खत्म करन दा यही इलाज है प्रभु चिंतन, प्रभु चिंतन, उस विच अपना मन जोड़ना। सार कितावली दा करता बहुत सुंदर कहिंदा है कि धर्म पैदा किवें आउंदा है, धर्म नष्ट किवें आउंदा है, आखिर धर्म धर्म देच दया आ जांदी है, धर्म देच संजम आ जांदा है, धर्म देच संतोख आ जांदा है, धर्म देच सारे दैवी गुण आ जांदे ने, शील संजम आ जांदा है। ये धर्म किस तरह पैदा होंदा है और ये धर्म किवें विनिष्ट होंदा है, नाश होंदा है, तो सार कितावली दा करता इंज लिखदा है,
1: उपजे धर्म वाक सत्य कर अत दया दान कर धर्म वधे नित।
0: रसना ते प्रभु दा नाम ले आईए, उस सच नूं सत नूं रटन करिए, उस विच मन जोड़िए, धर्म पैदा हो जांदा है। धर्म दा बूटा अंकुरित हो जांदा है और परोपकार कीतेयां दान पुन कीतेयां धर्म दा ए बूटा सहजे सहजे वधदा है, उठदा है।
1: स्थित धर्म खिमा के संगा,
0: धर्म दा बूटा क्षमा दे आसरे ते टिकिया रहिंदा है, कोमल बूटे गिर ना जान, ढह ना जान, तूफानी हवावां उन्हां दियां जड़ां ना पुट देन, तो सहारा देना पैंदा है कोमल बूटियां नूं, किसे सोटी दा किसे दीवार दा, तो क्षमा दी सोटी नाल, क्षमा दे सहारे, खिमा दे सहारे ए धर्म दा बूटा रोज रोज वधदा है, उच्चा होंदा है, उच्चा होंदा है।
1: इस्तिते धर्म खिमा के संगा, धर्म क्रोध कर होत विभंगा।
0: छिन्न मात्र क्रोध कर दिया धर्म दा बूटा जल के खाक हो जाता है, क्रोध ऐसी अगन पता नहीं कितने दिनों की तपस्या नूं जला के रख देंदी है, कितने दिनों की साधना, कितने दिनों का परोपकार। वाकई अगर एक बूटा छे महीने साल सिंच के वड्डा कीता है, बस एक चिंगारी उसनों भस्म कर सकती है। क्रोध दी छणक अगन छोटी जी अग्नि कीते किताए पैदा होए धर्म नो नष्ट करके रख देती। क्रोध वास्तविक मूर्खता दी बुनियाद ते खड़ा होंदा है। क्रोधी स्याणा नहीं हो सकता। क्रोध बारे कुछ होर जानकारियां इस तरह दियां ने। जर्मन दी गल है। एक मां बच्चा ले आई है डॉक्टर को, मुर्दा रोंदी हुई चीखती हुई। डॉक्टर भी हैरान है, जद मर ही चुके है ते मेरे को लियाण दा मतलब, जद खत्म ही हो गया है फिर ये रोंदी हुई इत्थे क्यों ले आई है। डॉक्टर कहिंदा इत्थे मुर्दा है, रोंदी हुई बिलखदी हुई ममता दी मारी मांग कह रही है। हां मर गए ये तो ठीक है, पर मैं इस वास्ते ले आई है, क्यों मरया है किवें मरया है मैनू कुछ कारण नहीं दिखाई देंदा। अच्छा तो इस वास्ते ले आई है। डॉक्टर उस बच्चे नू वेखदा है, अपनी सियाणप नाल जांच पड़ताल करता है, मां नू पुछदा है ए दस किवें गुजरिया कदों गुजरिया। बस मेरी गोद देसी मेरा दुध पींदियां ही पींदियां ए सिर सुट बैठा है, खत्म हो गया। तो मतलब होया तेरा दुध पींदियां पींदियां मर गया। क्या दसेंगी जिस वक्त तू इस बच्चे नू दुध पिला रही सी तेरी मनोदशा की सी, तेरी मानसिक हालत की सी। ये मां कहंदी है मेरा ते पति नाल झगड़ा चल रहा सी, बहुत उच्ची बोलचाल चल रही सी, ये बच्चा विचकार रोन लग पया मैं इस नू दुध पिलाण लग पई, पर गाली गलौज साडी चल रही सी, मैं क्रोध नाल उबली हुई सी। तो डॉक्टर ने कहा ऐ बीबी तू इस बच्चे नू दूध नहीं पिलाया जहर पिलाया है, जब तू क्रोध नाल उबली क्रोध करके तेरिया शरीर दियां ग्रंथियां ने जहर उगलनी शुरू की थी, उना गंडा चो जहर निकली वो खून विच पिवस्त होई वो दूध विच लीन होई, तो बच्चे नू जहरीला दूध पिलाया है, तेरे क्रोध करके जहरीला हो गया तेरा दूध। इसका मतलब है क्रोध जहर है और सारे शरीर नू जहरीला कर देंदा है, पर इस तो उल्ट भी हो सकता है। अगर शरीर जहर नाल भर सकता है, खून जहरीला हो सकता है, तो खून अमृतमय हो सकता है, शरीर अमृतमय हो सकता है। परम भगत श्री नामदेव जी महाराज दा फरमान, दस बैरागन मोहे बस कीनी पंचों का मिटना, सत्तर दोए भरे अमृत सरे

करों और चौतर की मत दूर निवारों। अंधा कर देंगा जिन्हों दियां निगाहां बड़ियां लंबियां ने, जो दूर तक वेखदे ने अपने पैरां नूं भी नहीं देख सकणगे कित्थे खड़े आ, मैनूं भेज के ते देखो। अंधा कर देंगा जो पारदर्शी ने, पार तक देखदे ने और आर भी नहीं दिखाई देगा। जो लंबियां निगाहां रखदे ने, लंबी नजर रखदे ने, दूर दृष्टा रखदे ने, ए भी नहीं देख सकणगे कित्थे खड़े आ, मैनूं भेज के देखो। अंध करो दृगवंतन को, श्रुतवंतन को बदरो कर डारो। जिहड़े विचारक ने, सूझवान ने, पागल करके रख देंगा, हिला देंगा उन्हां दी सोचनी नूं, हिला देंगा उन्हां दी विचार शक्ति नूं। धृतवंतन को सो अधीर करो और चातर की मत दूर निवारो। धीरजवान नूं, सबरवान नूं मैं बेसबरा करके रख देंगा, जल्दबाज बना देंगा। क्रोधी बहुत जल्दबाज होंदा है, जल्दबाज बहुत क्रोधी होंदा है। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे बड़े सुंदर वाक जफरनामे दे आपने औरंगजेब नूं इंज लिखे है, चे खुश गुफ्त फिर दोसीए खुशतर जवां के जूदी बवद कारे आहिर मना। ऐ औरंगजेब, कितना सुंदर लिखे है तेरे हमदीन जनाब फिरदौसी ने, ईरान दा मायानाज शायर, महान सूझवान, दूरदृष्ट। ऐ औरंगजेब, चल तू मेरे बोलां तो कुछ नहीं सिखिया, ना सिखना चाहना है, कम से कम फिरदौसी नूं पढ़ लेंदा, फिरदौसी दे बोल सुन लेंदा। चे खुश गुफ्त फिरदौसी है खुशतर जबां के जूदी बद कार आहिर मना। कितना सोना उसने लिखे है कि जल्दबाजी करना शैताना दा कम है। तू बहुत जल्दी की थी, क्रोधी बहुत जल्दबाज आंदा है, तू इसी जल्दबाजी दे प्यो नूं कैद कीता, ब्राह्मण नूं कतल कीता, भैण जहां आरा नूं भी जेल दे पाया। और ऐ औरंगजेब, तेरी इस जल्दबाजी ते इस क्रोध ने पता नहीं कितने मासूमां दी जान ली। सरमद जैसे सूफी फकीर फिर मेरे मासूम लड ले, फिर त्याग ते वैराग दी मूर्ति धन गुरु तेग बहादुर साहब जी दी शहादत सब तेरे क्रोध दा कारनामा, सब तेरी जल्दबाजी दा कारनामा। तू रंचक मात्र भी सोचिया नहीं। पंडित गुलाब सिंह जी ठीक रखते ने, क्रोध कह रहे है सोचेगा ही नहीं मनुख, उस दे धीरज ही नहीं रहेगा, दूरदृष्टा ही नहीं रहेगी। जितना सयाणा होवेगा मूर्ख हो जाएगा। धृतवंतन को सो अधीर करो और चातर की मत दूर निवारो। हित कारज नाए पिखे कबही, जिनके उर भीतर मैं पग धारूं।

प्रार्थना हे प्रभु तू सारेयां दी रक्षा कर सर्व जी रक्षा करो सारे जीवां दी पालना कर सारे जीवां दी क्रोध तो रक्षा कर सारे जीवां नूं सुख दे सारे जीव आनंदित होवन जद सारेयां दे प्रति ऐसी अरदास पैदा होवे ऐसी प्रार्थना पैदा होवे मनुख शांति दे सागर विच डुब्बीला ज्ञान विज्ञान आनंद खेड़े ते खुशियां दे सुचे मोती प्राप्त कर अपनी झोली भर लेंदा है। दरअसल ए जो सिख जगत विच सतगुर दे सामने अरदास तो अखीरले ए जो शब्द दोहराए जाने ने नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला दरअसल सरबत दे भले विच ही मेरा भला है सरबत दे बुरे मंगण विच ही मेरा बुरा है सरबत दे बुरा करन विच ही मेरा बुरा है और सरबत दे भले विच

0: अकर्णं अकर्णं करोत् अखादिं खादिं असाजं साज समज्जया त्राहे त्राहे शरण स्वामी विज्ञप्त नानक हर नर हरे।
1: धन गुरु अर्जुन देव जी महाराज दी दित्ती हुई तरतीब विच प्रथम मोह, फिर काम, फिर क्रोध ते फिर ए लोभ मनुख दियां बुनियादी कमजोरियां विच्चों एक परबल कमजोरी। लोभ दी उत्पत्ति होंदी है लैण दी भावना तो। हर वक्त लैण दी भावना अंदर चले, लैणा है लैणा है लैणा है। मैं माता कोलो लैणा है, पिता कोलो लैणा है, भरावां को लैणा है, पत्नी कोलो लैणा है, बच्चियां कोलो लैणा है, पड़ोसी कोलो लैणा है, संसार को लेना है, निरंकार को लेना है, धन लेना है, सुख लेना है, संपदा लेनी है, जस लेना है, प्रभुता लेनी है, मान लेना है, सम्मान लेना है। हर वक्त ए लैण दी बुक, ए लैण दी तरप और ए लैण दी अठे पैर बनी हुई बिरती, बस यही लोभ है। एक ऐसी गंड नु जन्म देंदी है, इसे दा नाम है लोभ। उम्र दे नाल नाल ए लोभ वद्दा है, लेण दी बिरती वद्दी है, बड़ी प्रबल वद्दी है। और मनुख प्रबल लोभी

0: है लोभ, हे लोभ, तैनु मित्र दिवी शर्म नहीं, तो मित्र नाल भी ठगी कर दें, तेनु इष्ट तो भी संकोच नहीं, तो इष्ट नाल भी ठगी कर दें, तू संबंधियां तो भी शर्म नहीं खांदा, तो उना नाल भी ठग गया कर दें, उना नु भी धोखा देना है। नच मात पिता तव लज्जया, तेनु मां बाप दी भी लज्जा नहीं, तू ते उना नाल भी ठगी करदा है, तू ते उना नाल भी धोखा करदा है। पातशाह दा फरमान, लोभी का वेसाना कीजे जे का पार वसाए। लोभी ते भरोसा औखा है, और आज दे युग दे चूंकि लोभ प्रबल है, प्रधान है, भरोसा उड़दा जा रहा है, उड़ गया है, या किधरे कोई भरोसा करदा है, विश्वासघात होंदा है, उस दे भरोसे नो बहुत वड्डी सट लगदी है। लोभी नू मेरे पातशाह ने कुत्ते नाल कूकर नाल तशबी दिती है,
1: ज्यों कूकर हर काया।

भख अभख सब खाए। लोभी ते कुत्ते दी तरह है, हर थां ते मुंह मारना, हर वक्त मुंह मारना, करंग देच मुंह मारना, हड्डी देच जो है मुंह मारना, और दूजे ने मुंह मारना देना, दूजे ते भौंकना, ये लोभी दी मनोबिरति है। इसका एक सुंदर चित्रण धन गुरु नानक देव जी महाराज ने श्री राग के एक शब्द विच बड़े सुंदर ढंग नाल कीता है। एक स्वान दोए स्वानी नाल भल

कृतार, हे कृतार, धाणक हो गया। धाणक जो शमशान घाट विच बैठ के उड़ीक कर देने कदों कोई लाश आवे, कफन मिले, भांडे मिलन, पैसे मिलन, कदों कोई लाश आवे, साडियां लकड़ियां बिकन, कदों लाश आवे, सानू मेहनताना मिले, साजो समग्री मिले, जिसदी उपजीविका, जिसदी रोजी, जिसदी उड़ीक किसी दी मौत ते खड़ी है, और जो सवेरे तो लेके शाम तक, रात तक इसे उड़ीक च रवे, कोई मुर्दा आवे, कोई मुर्दा आवे, कोई मुर्दा आवे, ऐसे मनुख दी रूह भी मुर्दा हो जाती है, ऐसे मनुख दा इखलाक भी मुर्दा हो जाता है, ऐसे मनुख दा आचरण भी मुर्दा हो जाता है। शेख सादी ने एक बड़ी सुंदर कविता, शायरी गुलिस्तान विच कीती है। फरमान है उन्हां दा, गर इंसाफ पुरसी बद अख्तर कस अस्त। मैथो इंसाफ दी गल पुछो, बद बख्त कौन है, बद किस्मत कौन है कि दर राह तश रंज दीगर कस अस्त। जिस दी राहत दूजियां दी रंज ते खड़ी है, जिस दियां खुशियां दूजियां दे रोने ते खड़ियां ने, जो दूजियां दी बर्बादी विचों आबादी लभदा है, जो दूजियां दी मौत विचों जिंदगी लभदा है, जो दूजियां दे नुकसान विचों नफा लभदा है, जो दूजियां दी बेइज्जती विचों इज्जत लभदा है, जो दूजियां दे रोने विचों हासे लभदा है, इते बड़ा बदबख्त, बड़ा बदबख्त। सारा दिन ए उड़ीक होवे, ए सोचनी होवे, मरे किसे घर विच कोई मनुख, मौत होवे किसे दी, खत्म होवे कोई, लाश आवे, मैनू कपड़े मिलन, मैनू साजो समिकरी मिले, मैनू धन मिले, इस तरह दी सोचनी इखलाक दा पतन कर देंदी है। ठीक है, अगर ये पेशा है, धंधा है किसे दा, पर सोचनी विच ना ले आवे, उपजीविका प्रभु ते सुटे, सेवा दे रूप विच करे, सोचे परमात्मा दी तरफों यही मेरी ड्यूटी लगी है, तो ये सारी सेवा करदे होया उदी उपजीविका ते चलेगी, पर उसका इखलाकी पतन नहीं आवेगा, उदी मनोवृत्ति थल्ले नहीं जाएगी। पर ओही सर्वधाणक नहीं जो शमशान घाट विच बैठ के सारा दिन मुर्दियां दी उड़ीक करदा है, ते किसे घर विच मौत होवे इस दी उड़ीक करदा है, नहीं, सारा संसार ही लोभियां ने शमशान घाट बना के रख दिता है, और खुद बैठा है धाणक दी तरह, कोई मरे मैनू कुछ मिले, कोई तबाह होवे मैनू कुछ मिले, मैनू कुछ मिलना चाहिदा है, हुंदा है दूजा तबाह ते होवे, मेरे पल्ले कुछ पैना चाहिदा है, खोया जांदा सब दा ते खोया जान दे। इस तरह हर मनुख धाणक बन गया, और हर मनुख ने संसार नू शमशान घाट बना के रख दिता। धन गुरु नानक देव जी महाराज ने इसनू इस ढंग नाल भी बयान किया है, एक स्वान दोए स्वानी नाल, भलके भौंके सदा बयान। एक कुत्ता, दो कुतियां, मनुख जैसे सवेरे उठता है, इहदे नाल उठ बैठदियां,
भौंकदा है कुत्ता, भौंकदियां ने ये कुतियां। रात नू जद सौं जांदा है वक्ती तौर ते ये कुत्ता ते कुतियां शांत होंदियां ने, पर होंदियां इस दे कोल ने। जैसे सवेरे उठदा है कुत्ता भी उठ बैठा, कुतियां भी उठ बैठियां, जोर दा भौंकना आरंभ कर दिता। इस भौंकण विच मनुख इतना बेजार होंदा है, मजा ले दी जबान तो वाहिगुरु निकले, राम निकले, अल्लाह निकले, मजा ले जपजी साहब पढ़े, ये मंदिर दी सुरत लवे गीता पढ़े, या नमाज पढ़े, ते कुरान दी तलावत करे, नहीं, मुश्किल है। कौन है कुत्ता? लोभ। कौन ने दो कुतियां? आसा ते तृष्णा। थोड़ा जिया लोभ कुत्ता चुप होंदा है, आसा ते तृष्णा, तृष्णा जो मिल गया उसकी तृप्ति नहीं, तृष्णा ते आसा, ये दोवें इतनिया जोर दियां भौंकदियां ने कि वक्ती तौर ते चुप कीते उस कुत्ते नू, उस लोभ नू नाल भौंकना पैंदा है, और पूरी उच्ची आवाज दे भौंकना पैंदा है। तो जब लोभ ऐसा भौंकना शुरू करे, आसा ते तृष्णा भी भौंकण, ये कल्ला मनुख की करे, ये फिर की करदा है? धन गुरु नानक देव जी महाराज दा फरमान, कूड़ छोरा मुठा मुरदार, झूठ दे छुरे नाल मुरदार नू जबा करदा है। मुरदार और झूठ दा छुरा, प्रथम ते समझांगे, जानना चाहांगे मुरदार की है। मुरदार गुरु नानक खुलासा कर देन, बाणी दी व्याख्या बाणी कर दी है,

अजित सूर संग्राम अत बल नाम बहुमर्दने गण गंधर्वे देव मानुखं पशुपंखी विमोहने हर करण हारं नमस्कारं शरण नानक जगदीश्वरे। ज्ञान दे अथा सागर धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, जिस विच परमात्मा दे गुण ते उस दियां शक्तियां दा बड़े सोहने ढंग नाल वर्णन है, लेकिन नाल नाल मनुख दियां कमजोरियां मनुख दे अवगुण इन्हां दा भी निखेड़ा कीता गया है, ताकि मनुख नूं अपनियां कमजोरियां दा पता चल सके। आखिर ऐसा की है जिस करके परमात्मा नहीं मिल रहा? वह गुणा का सागर है, मनुख अवगुणा का सागर है। परमात्मा के गुण नहीं गिने जाते, मनुख दे अवगुण भी गिनने औखे ही ने। जेता समुंद सागर नीर भरिया तेते अवगुण हमारे। उंज ते अनंत अवगुण ने, अनंत अवगुण ने, पर मूल कमजोरियां मूल अवगुण मनुख दे पंज ने, जिन्हां नूं इस तरह गणित दे लिया जांदा है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की बाणी संस्कृति श्लोक इन्हां पंज कमजोरियां नूं बड़े सोहने ढंग नाल उजागर करके मनुख नूं दर्शाउंदियां ने कि तुम इन्हां अवगुणां नूं गुणां विच बदलना है। सतगुरु मोह तो आरंभ करते ने, मोह मेरा, मोह मेरा, जो मेरा है उस नाल पकड़ हो जाती है, उसे पकड़ नूं कहिंदे ने मोह। जो मेरा नहीं उस नाल मोह भी नहीं, उस नाल पकड़ भी नहीं। जो मेरा है उसनू थोड़ी जी भी चोट लग जाए, खराश लग जाए, टूट भज जाए, तड़प उठती है आत्मा, चीख उठता है मनुख। लेकिन जो मेरा नहीं, जिस विच पकड़ नहीं, जिसका मोह नहीं, चाहे कल बर्बाद होंदा अज हो जाए, कल मिटदा अज मिट जाए, कोई दुख नहीं, कोई संताप नहीं। घर विच एक बच्चा, मासूम बच्चा बीमार पै गया है, सारा घर उदास हो गया है। मोह है, पकड़ है, मेरा है, लेकिन किसी देश विच किसी शहर विच महामारी करके सारा शहर बीमार पिया है, कोई आ नहीं निकलती। क्यों? उस नाल मोह नहीं, वो मेरा नहीं, उस विच पकड़ नहीं। व्यक्ति जी वस्तु टूट भज जाए, नुकसान हो जाए, आह निकल जाती है, लेकिन बहुत बड़िया किधरे बर्बादियां हो जान अगर उस विच मोह नहीं, वो मेरा नहीं, तो कोई आह नहीं निकलती, कोई चीख नहीं निकलती।

ਕਰਨ ਹਾਰ ਕਰਤਾਰ ਹੈ, ਸਮੂਹ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਝ ਕਿ ਮੋਹ ਦਾ ਕਰਤਾ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੂੰ ਮੋਹ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਨਾ ਕਰ, ਕ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਨਾ ਕਰ, ਕਰਤੇ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰ। ਹਰ ਕਰਨ ਹਾਰ ਨਮਸਕਾਰ, ਸਜਦਾ ਕਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੋਂ, ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਔਰ ਆਖ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ, ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ, ਸ਼ਰਨ ਨਾਨਕ ਜਗਦੀਸ਼ਵਰ। ਇਹ ਜਗਦੀਸ਼, ਇਹ ਜਗਤ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ, ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ, ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ, ਬਚਣ ਦਾ ਕੇਵਲ ਇਹੀ ਉਪਾਅ ਹੈ। ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਠਿਨ ਹੈ, ਔਖਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਵਿਸਾਖ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੋਹ ਮੇਰਾ, ਮੋਹ ਮੇਰਾ, ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਰੂਹੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਦੁਨੀਆ ਚ ਐਸੇ ਫੁੱਲ ਖਿੜਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮੋਹ ਦੀ ਸੁਗੰਧ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੋਹ ਦੀ ਬਦਬੋ ਨਹੀਂ, ਨਿਰਮੋਹ ਦੀ ਮਹਿਕ, ਮੋਹ ਦਾ ਅੰਧਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਨਿਰਮੋਹ ਦਾ ਚਾਨਣ। ਮੋਹ ਦੀ ਕਠੋਰਤਾ ਨਹੀਂ, ਨਿਰਮੋਹ ਦੀ ਦਇਆ। ਨਿਰਮੋਹੀ ਦੀ ਦਇਆ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਮੋਹ ਗ੍ਰਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਦਇਆ ਸੀਮਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਇਆ ਪੜੋਸੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਮੋਹ ਗ੍ਰਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਔਗੁਣ ਵੀ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਪੜੋਸੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਗੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ। ਆਪਣਾ ਕਰੋੜ ਬੱਚਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪੜੋਸੀ ਦਾ ਸੁੰਦਰ ਬਾਲਕ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਮੋਹ ਗ੍ਰਸੇ ਦੀ ਦਇਆ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ, ਮੋਹ ਗ੍ਰਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਬੜਾ ਸੀਮਤ, ਮੋਹ ਗ੍ਰਸੇ ਦੀ ਸਮਝ ਬੜੀ ਸੀਮਤ। ਮੋਹ ਗ੍ਰਸਾ ਸੀਮਾ ਦੇ ਜੀਂਦਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਅਸੀਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਮਹਾਬਲੀ ਕਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਸ ਮੋਹ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੀ ਕੈਦ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਮੁਗਲ ਸਮਰਾਟ, ਮੁਗਲ ਆਜ਼ਮ ਜਨਾਬ ਜਲਾਲਉਦੀਨ ਅਕਬਰ ਅਧਕੜ ਜਿਹੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਘਰ ਔਲਾਦ ਹੋਈ, ਸ਼ਾਹਜ਼ਾਦਾ ਸਲੀਮ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੇ ਪੀਰ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਾਰਾਂ ਤੇ ਚੜਾਵੇ ਚਾੜਦਾ ਰਿਹਾ, ਚਦਰਾਂ ਚਾੜਦਾ ਰਿਹਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਆਇਆ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨਾ ਸੀ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ, ਭਾਗ ਲੱਗੇ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਅਧਕੜ ਜਿਹੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁਗਲ ਸਮਰਾਟ ਦੇ ਘਰ ਸੁੰਦਰ ਬਾਲਕ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਜਿਸਦਾ ਨਾਂ ਸਲੀਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਅਕਬਰ ਦਾ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਮੋਹ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੰਗ ਉੱਠਿਆ। ਹੁਣ ਰਾਜਪਾਠ ਵਿੱਚ ਇਤਨਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ ਖਿਡਾਉਣਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਡੁੱਲ ਡੁੱਲ ਕੇ ਅਕਬਰ ਦੀ ਮਮਤਾ ਸਲੀਮ ਤੇ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ, ਚੁੰਮਦਾ ਹੈ, ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਖੁਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਲੀਮ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਖਾਦਮਾ ਨੌਕਰਾਣੀ ਮਹਿਲਾਂ ਦਾ ਫਰਸ਼ ਸਾਫ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੋਚਾ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਕਬਰ ਖਾਦਮਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਖਾਦਮਾ ਸਲੀਮ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਹੈ। ਵਿਚਾਰੀ ਖਾਦਮਾ ਨੌਕਰਾਣੀ ਕੀ ਆਖੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਜਹਾਂ ਭਲਾ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਹੈ,
सब तो सुंदर है। खादमा मैं ऐसा सोच रहे हैं, खुदा ने सलीम तो ज्यादा खूबसूरत किसी ने भी नहीं बनाया। हाथ जोड़ के खादमा कहन लगी, जहां पना ये हो ही नहीं सकता कि सलीम तो ज्यादा कोई खूबसूरत होवे, वो किस तरह हो सकता है। खुश होके प्रसन्न होके पंज मोरां खादमा दी हथेली ते टिकाइया। आखे खादमा तू ये काम छोड़, जा आगरे दे, जा आगरे शहर दे, लब कोई ऐसा बच्चा जो सलीम नालों ज्यादा खूबसूरत हो गया। मैं तेनों भी माला माल कर देंगा, बच्चे दे मां बाप नू भी माला माल कर देंगा, दोहां दियां झोलियां भर देंगा। और मैं जानना चाहना कोई सलीम तो भी ज्यादा खूबसूरत है। अगर मोहदा मारिया ये अकबर अपनी खादमा दे नाल इस तरह दियां गल्लां कर रहे हैं और कह रहे हैं, जा लग के लिया हुक्म मन खादमा चल पई। सवेर दी गई, दिन ढलदिया वापस आ रही है दबे हुए पैरां नाल, तरह तरह दी विचारां दी डुबी हुई गोद विच एक बच्चा ले आया। सिद्धी अकबर दे पास आई, देख के अकबर खुश होया है, कोई बच्चा ले आई है इसकी गोद विच है। खादमा तू ले आई है ऐसा कोई बच्चा जो सलीम तो भी ज्यादा खूबसूरत है? हां जहां पना मैं ले आई हूं। अकबर ने चद्दर एक पासे की थी, चीथड़िया दे लिपटिया होया एक करूप और महिला बच्चा खादमा दी गोद विच है। हैरान होके अकबर कहिंदा है, ए बच्चा किसका बच्चा है? जहां पना ये मेरा ही बच्चा है, मैं सारा आगरा शहर गांव आ रहा है, जहां पना इस बच्चे तो मैनु ज्यादा कोई खूबसूरत नहीं दिसया। सच पूछें और मेरे जान की बख्शी करें, ऐ जहां पना तेरा सलीम भी इसके सामने पिक कर है। कहिंदे ने नौकराणी दे इना बोला ने अकबर दियां अखां खोलियां। ख्याल आया मैं मोह दी नजर नाल सलीम नू वेख रहा, ये मोह दी नजर नाल अपने बच्चे नू वेख रही है। मोह करके सारे जहान नालों इस नौकराणी नू अपना बच्चा खूबसूरत दिखाई दे रहा है, और मोह करके मैनू सलीम सब नालों सुंदर दिखाई दे रहा है। सियाणा सी आलम फाजला नू अपनी सभा विच रखदा सी, एकदम गल समझ दे चाह गई, पकड़ दे चाह गई। और ए असी रोजमर्रा दी जिंदगी विच देखदे आ, मनुख नू अपने औगणा नाल भी मोह हो जांदा है, किसी दे गुण भी उसनू चंगे नहीं लगते। अपना करोड़ बच्चा भी महान है, यूसुफ है, लेकिन पड़ोसी का सुंदर बच्चा भी क्रूप है, बेमैनी है। तो स्वप्न उजागर करता है मोह, और ये स्वप्न बनावटी होता है, वक्ती होता है, आरजी होता है, और मनुख इसी चीज फसया रहता है। कदी कदाई
कोई मनुख प्रभुदी शरण प्रकट प्रभु दा चिंतन कर रहे नाम दे गीत गांदिया गांदिया मऊ दे पर्दे नूं परे सुटदा है निर्मोह हो जांदा है निर्मोह ही लई सारा संसार उसका अपना है मोह ग्रसे लई केवल उसका परिवार और उसके चों भी कुछ सदस्य उसके अपने ने बाकी सारे का सारा पराया इतना वड्डा जगत ते वो परा होवे पराया होवे तो फिर ते मनुख भय विच जीवेगा डर विच जीवेगा दुख विच जीवेगा इस वास्ते मोह ग्रसिया दुख विच ते भय विच जीवदा है सारा जगत अपना है प्रेमी लई सारा संसार अपना है तो निर्भय होके विचरदा है आनंद नाल विचरदा है सुख नाल रमण करदा है सब जो अपने ने मोह दी सीमा होंदी है निर्मोही असीम होंदा है निर्मोही लई सारा संसार उसका अपना है मोह ग्रसे लई केवल परिवार ही उसका जो है अपना है बहुत छोटी दुनिया होंदी है मोह ग्रसे दी जिसकी दुनिया छोटी उदी अकल छोटी उदी सोचनी छोटी उदी समझ छोटी उदा सब कुछ छोटा बहुत छोटे तल ते जीवदा है मोह ग्रसिया मनुख और असीम तल ते जीवदा है निर्मोही कोई सीमा नहीं परमात्मा की कोई सीमा नहीं निर्मोही की कोई सीमा नहीं साडे देश देच एक ऐसा भी पुरश होया है राजा सी स्वभाव किधरे मां बाप ने जन्म समय उसका ना रखे सी निर्मोह और वड्डा होके भी यही नाम पर चलत रहा निर्मोह राजा निर्मोह इतिहासक वार्ता है एक ऋषि ने जद ए ना सुनिया राजा निर्मोह हो नहीं सकता कठिन है औखी गल है तो परीक्षा लई चल पिया निर्मोह दे महलां दी तरफ जैसे महलां विच दाखल होया है राजे निर्मोह दी पटराणी मिली और इस ऋषि ने पूरा तौर तरीका पहले बनाया हुआ सी कि मैं स्पष्ट करना है तू मोह ग्रसे है निर्मोही नहीं राजे निर्मोह दा लड़का इधरे ऋषि की कुटिया च आया सी और ऋषि ने उस बच्चे नु बिठा दिता आखे जिन्ने चिर तक मैं ना आवा तू बैठी मैं थोड़ी देर दे चावना राणी नु ऋषि कहिंदा है राणी तुमको अति विभक्त सुत खायो मृगराज हमने भोजन ना कियो तिस मित्र के काज हे राजमाता थोड़ा सुत थोड़ा लड़का राजकुमार शेर ने खा लिया मैं ते भोजन छड़ के दौड़े हां थानू ए खबर सुनाण वास्ते पर ए राणी राजे निर्मोह दी राणी उस असीम मनुख दी संगत च रह रह के उस असीम मनुख दी पत्नी भी निर्मोही हो गई सी मौत उच्ची हो गई सी ऋषि नु कहन लगी पेड़ एक साखा घनी पंखी बैठे आए ओ फुटी चीरी पई उड़ उड़ देश देश जाए पेड़ एक साखा घनी पंखी बैठे आए ओ फुटी चीरी पई उड़ उड़ दे दिस जाए संसार एक वृक्ष दी तरह है कई इस दियां शाखा ने कई मुल्क ने कई इलाके ने
और संस्कारा वे प्रालब्ध वश होके संजोग वश होके इना परिवारां दियां टहणियां ते आके पंछी बैठते ने। मन दा सूरज चढ़दा है, दरगाह तो चीरी पाटदी है, ये पंछी वारी वारी उड़ उड़ के अपनी दिशा नूं चले जांदे ने। ऋषि ये कोई नवी खबर ते तू नहीं लेके आया, ये रोज हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा निजाम है, ऐसी बनतर है, ऐसी प्रभु दी लीला है। ऋषि दंग रह गया है। तप साधना करदिया करदिया थक गया, परिवार दे मोह दी दीवार अजे भी नहीं तोड़ सके, धन दे मोह दा पर्दा अजे भी बाकी है, जीवन दे मोह दी पकड़ अजे भी बाकी है। पर सोचता है चलो उस नाल ते गल करिए जिसका ना ही राजा निर्मोह है, उन्हों तो वेखिए गया है। राजसभा ऋषि दाखल होया, आहो भगत की थी, दंडौत की थी, राजे ने सम्मान दिता, बिठाया, आने का कारण पूछया, ऋषि राज किस तरह पधारे, साढ़े इस घर नू किस तरह भाग लाए, इस राजसभा नू आके पवित्र कीता, आहो भाग साढ़े, कोई सेवा होवे ते दसो। ऋषि कहिंदा राजन बहुत दुख, बहुत संताप, बहुत माड़ी खबर राजन दसन लगे हैं, मेरी जबान लड़खड़ांदी है, पर मजबूर हां दसन देवी। मुस्कुरांदे हुए चेहरे नाल राजा निर्मोह कहिंदा दसोरा राज ऋषि, संत जन दसो। खड़ा होया ऋषि ते कहिंदा है राजन तुमको अति विपत पल पल घड़ी घड़ी सुत

थड़े पुत्र दी मड़ी लाश मेरे कोल है। शेर ने हमला करके उसनु जख्मी कीता है, मार दिता है, उदी लाश मेरे कोल पई है। बस यही संदेशा देने वास्ते मैं थड़े कोल आया, थानू दसन लई आया। राजा निर्मल प्रसन्न चित होके प्रसन्न मुद्रा विच हसदिया होया कहिंदा है, तपिया तप क्यों छाड़ियो,

जितने भी कर्म करता है अहंकार आशत, चाहे वो कर्म धार्मिक ने, चाहे वो कर्म सामाजिक ने, चाहे वो कर्म राजनैतिक ने, अहं मूल है, अहं मिश्रित हो जाता है हर कर्म विच। और वो कर्म जो अहं आश्रित है जन्म का कारण बनता है, जन्म मरण का कारण बनता है, और वो अहं का बंधन फिर जन्म फिर मरण फिर जन्म फिर मरण, इस तरह अहं जन्म ते मरण की बहुत ही लंबी यात्रा विच पा देता है, बहुत लंबे गेट विच पा देता है। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमान कर रहे ने, हे जन्म मरण मूलं अहंकारं पापात्मा, हे पाप आत्मा अहंकार, तू जन्म ते मरण दा मूल है। वक् वक् जीवां विच अपने अपने दोष पाए जाते हैं। जैसे असी वेखदे हां हाथी विच काम रोग प्रधान है, और पतंगे विच दृष्टि रोग, मच्छी विच रसना दा रोग, और इसे तरीके नाल भौरे विच नासका दा रोग, होमे रोग मानुख को दीना, काम रोग मैं गल बस कीना, दृष्ट रोग पच मुए पतंगा, नाद रोग खप गहे कुरंगा, हिरन्नो नाद दा कन्ना दा रोग, जो जो दीसे सो सो रोगी, रोग रहत मेरा सतगुरु जोगी। ए रोग बंधन दा कारण बनदे ने, ए रोग दुख दा कारण बनदे ने, और मनुख दे सारे दुखां दा मूल कारण अहंकार। अहंकार किधरे अस्थूल रूप धारण करदा है, किधरे सूक्ष्म रूप, किधरे पदार्थां दा अहंकार, किधरे धार्मिक कर्म जो परमात्मा दे प्रति कीते गए ने उसका अहंकार, किधरे इस जीवन का अहंकार, किधरे उस परम जीवन की प्राप्ति दे जो साधन ने उन्हां दा अहंकार। मूल रूप विच ए अस्थूल अहंकार धन आश्रित हुंदा है, जोवन जवानी स्वप्न दे आधार ते खड़ा हुंदा है, और शक्ति सता ताकत इस दे आधार ते खड़ा हुंदा है। जोवन धन प्रभ ताकै मद में, अहनिश रहे दीवाना, दिन रात पागल दी तरह घूम रहा है। जोबन दी मस्ती विच, धन दी मस्ती विच, और सता दी मस्ती विच, धन जेब दे चोवे या मन दी सोचनी दे चोवे, जोबन वंत होवे या जोबन दी चाह मन दे चोवे, सताधारी होवे या सता दा चिंतन अंदर चलदा होवे, दोहां हालतां च पागल हो जांदा है। सता पागल कर देंदी है, सता दा चिंतन भी पगला देंदा है। जोबन पागल पन दी सीमा तक लै जांदा है, पर जोबन दा चिंतन भी पागलों वाली हालत बनाई रखता है। इसे तरीके नाल धन, धन जेब विच है, धन घर विच है, या धन

ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਚ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਚ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਪਾਗਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾਗਲਪਨ ਧਨ ਆਸ਼ਰਿਤ ਹੈ, ਜੋਬਨ ਆਸ਼ਰਿਤ ਹੈ ਔਰ ਸਤਾ ਆਸ਼ਰਿਤ ਹੈ। ਤਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋਬਨ ਧਨ ਪ੍ਰਭਤਾ ਕੈ ਮਦ ਮੇ ਅਹਿਨਿਸ ਰਹੇ ਦੀਵਾਨਾ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਪਾਗਲ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਅਹੰਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਆਪਸ ਕੋ ਦੀ ਰਗ ਕਰ ਮਾਨੇ ਔਰਨ ਕੋ ਲਗ ਮਾਤ ਮਨਸਾ ਬਾਚਾ ਕਰਮਨਾ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਦੋਜ਼ਕ ਜਾਤ। ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਅਗਲਾ ਮਹਾਨ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਸਵੈਮ ਤੁੱਛ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਉੱਚਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਇਰਾਨੀ ਸੂਫੀ ਸੰਤ ਹਾਫਿਜ਼ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦਰ ਮਹਿਫਿਲੇ ਕੇ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਮਾਰ ਜ਼ਰਰਾਸਤ। ਜਿਸ ਦੀ ਮਹਿਫਿਲ ਵਿੱਚ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਇਹ ਸੂਰਜ ਇੱਕ ਜ਼ਰਰਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਰੇਤ ਦਾ ਜ਼ਰਰਾ ਹੈ। ਦਰ ਮਹਿਫਿਲੇ ਕੇ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਮਾਰ ਜ਼ਰਰਾਸਤ ਖੁਦ ਰਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀਨਮ ਸ਼ਰਤੇ ਅਦਬ ਨਵਾਸ਼ਦ। ਉਸ ਮਹਿਫਿਲ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਖੇ ਮੈਂ ਵੱਡਾ, ਮੈਂ ਵੱਡਾ, ਮੈਂ ਮਹਾਨ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਸੂਰਜ ਵੀ ਇੱਕ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹਾ ਜ਼ਰਰੇ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਭੁੱਲ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਅਗਿਆਨ, ਔਰ ਜਿਤਨਾ ਪ੍ਰਬਲ ਅਗਿਆਨੀ ਹੋਵੇਗਾ ਉਤਨਾ ਅਹੰਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਉਰਦੂ ਦਾ ਮਹਾਨ ਸ਼ਾਇਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਲਮ ਕੇ ਜਹੂਲ ਸੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਜਹੂਲ ਕਾ ਇਲਮ, ਮੈਨੇ ਯੇ ਦਰਸ ਪਾਇਆ ਆਪਣੀ ਬਸੀਰਤ ਸੇ। ਗਿਆਨ ਦੀ ਮੂਰਖਤਾ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਮੂਰਖਤਾ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਇਲਮ ਦੀ ਜਹਾਲਤ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਜਹਾਲਤ ਦਾ ਇਲਮ। ਅਗਰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਸਮਝਿਆ, ਆਲਮ ਹੋਇਆ, ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਇਆ ਔਰ ਕਈ ਗੁਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਅਹੰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਜੋ ਇਲਮ ਹੈ ਉਹ ਅਮਲ ਦੇ ਚ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਇਹ ਅਹੰਕਾਰ ਮੂਰਖਤਾ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਇਲਮ ਕੇ ਜਹੂਲ ਸੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਜਹੂਲ ਕਾ ਇਲਮ, ਗਿਆਨ ਦੀ ਮੂਰਖਤਾ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਮੂਰਖਤਾ ਦਾ ਗਿਆਨ। ਅਹੰਕਾਰ ਅਗਿਆਨ ਤੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗਿਆਨੀ ਵੀ ਅਗਿਆਨੀ ਸਮਝੋ ਅਗਰ ਅਹੰਕਾਰੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਸਿਰਮੌਰ ਸ੍ਰੀ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਫਰਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਮ ਬੜੇ ਕਉ ਕੁਲੀਨ ਹਮ ਪੰਡਿਤ ਹਮ ਜੋਗੀ ਸੰਨਿਆਸੀ ਗਿਆਨੀ ਗੁਣੀ ਸੂਰ ਹਮ ਦਾਤੇ ਏ ਬੁੱਧ ਕਭੈ ਨਨਾਸੀ ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਸਭੈ ਨਹੀਂ ਸਮਝਸੇ ਭੂਲ ਪਰੇ ਜੈਸੇ ਬੋਰੇ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਭੁੱਲ ਕੇ ਪਾਗਲ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਕੌਣ ਹਮ ਬਡ ਕਵ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਵੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਵੀ, ਮੇਰੀ ਕਵਿਤਾ ਮਹਾਨ, ਬਸ ਇਹੀ ਜਹਾਲਤ ਲਈ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਕੁਲੀਨ ਹਮ ਪੰਡਤ,
मेरी कुल बहुत उच्ची तो मैं उच्चा, मैं पंडित इस वास्ते मैं महान। हम बड कव कुलीन हम पंडित हम जोगी सन्यासी, मैं बहुत वड्डा जोगी इस वास्ते मैं बहुत वड्डा, मैं बहुत वड्डा सन्यासी इस वास्ते मैं बहुत वड्डा, मैं बहुत वड्डा ज्ञानी इस वास्ते मैं बहुत वड्डा, ज्ञानी गुणी सूर हम दाते ए बुद्ध कवे नानासी, मैं बहुत वड्डा सूरवीर मैं बहुत वड्डा दानी। कहिंदे ने अहंकार अक्सर गुणा ते ही खड़ा हुंदा है और गुणवान ही ज्यादा अहंकारी हुंदा है, क्योंकि अवगुणा दे आसरे ते अहंकार नूं अस्थूल रूप धारण दा मौका नहीं मिलदा। एक गल वखरी है कि मूरख गुण ना होंदे आया भी अहंकार विच जलदा है, पर उसका अहंकार इतना बोझल नहीं आता, उसनूं इतना बोझल नहीं करता। एक गल वखरी है कि वह अहंकार मूर्खता ते खड़ा है, अवगुणा ते खड़ा है। नानक ते नर असल खर जो बिन गुण गर्व करंद, इक ना नाद ना वेद। इक अद नू न किसी प्रकार दी विद्या, न संगीत दा ज्ञान, गे रस रस कस ना जानंद। इक ना सुरत ना सिद्ध, अकल सिर अखर का भयो ना लहंत। अक्षर दा कोई बोध नहीं, अकल दे तल ते जी नहीं रहा। संगीत दा कोई बोध नहीं, किसे धर्म ग्रंथ दा कोई ज्ञान नहीं, लेकिन फिर भी अहंकार नानक ते नर असल खर जो बिन गुण गर्व करंद, असली खोते ने अहंकार भी पंड चुकी फिर देने। पर बड़ा प्रबल अस्थूल अहंकार प्रगट अहंकार ते गुणा ते ही खड़ा हुंदा है, और अहंकारी दियां अखां, अहंकारी दा मस्तक, अहंकारी दी चाल स्पष्ट रूप विच अहंकार दी प्रदर्शनी कर दी है। भगत कबीर कहंदे ने चलत कत टेडे टेडे, अहंकारी सीधा चल ही नहीं सकता। अगर सीधा चले तो उसकी चाल का पता नहीं चलता, टेढ़ा चलता है ताकि लोगों दियां निगाहां मेरे ते आवन। निर्माण मनुख चाहता है मैं परमात्मा की निगाह थले आ जावा, अहंकारी चाहता है सारियां दियां निगाहां मेरे ते आवन, सब मैनू ही देखन। चलत कत टेढ़े टेढ़े, अस्त चरम बिस्टा के मूंदे, दुर्गंध ही के बेडे, तू है कि हड्डियां हड्डियां दे चढ़े होया मांस, मांस दे चढ़ी हुई चर्बी, और चर्बी दे लिपटी हुई खलड़ी, और की है तू। हड्डियां दा माण, जोबन जवानी दा माण, हड्डियां दा माण, मांस दा माण, मिंज दा माण, और खलड़ी दा माण, इस तो इलावा और है कि एक आया ते इतनी नापाक है, कोई भी पवित्र चीज इस नल छू जाए मैली हो जाती है। और इस काया दा अहंकार धन गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमान कर देने, कर्पूर पहुप सुगंधा परस मानक देहं मलीन, मजा रुदर दुर्गंधा नानक अथ गर्वेण अज्ञान नड़ो। कपूर ते चंदन जैसिया फुल्ला जैसिया पवित्र वस्तुआ मनुखी तन नाल छूंदिया स्पर्श करदिया मैलिया हो जांदियां ने, मजा रुदर दुर्गंधा नानक अथ गर्वेण अज्ञान नड़ो, है कि दुर्गंध खून मिंज मांस खलड़ी। अज्ञानी एवें ही तन दा अहंकार करदा है, जो बंदा अहंकार करता है।
फिर धन दा अहंकार, धनवंता होए क्या को गर्वे, जहां सब किछ तिसका दिया दरबे। पुरखा ईश्वर वसीला ना बने, धन किथे उस दे वसाहिल नाली सब कुछ प्राप्त होंदा है, और सब तो वड्डा वसीला है ए तन, और तन उस दी देन है, ये दिमाग उस दी देन है, और ये तन ते मन दे आसरे ते तू धन कठा कर लिया, तो वसीला ते प्रभु है, वसीला ते परमात्मा है। पर धन दा अहंकार सता प्रभता, इसदा अहंकार अगां चलिए ता अहंकार नू बैठन वास्ते कोई गुणा दा सिंघासन चाहिदा है। दान दा अहंकार, ज्ञान दा अहंकार, सेवा दा अहंकार, बड़े नवे तो नवे सिंघासन अहंकार अपने बैठन लई बनाईदा है, बनाई जांदा है, बनाई जांदा है, बनाई जांदा है। और गुणा दे आसरे ते बैठ के ये प्रसन्न बड़ा होंदा है, क्योंकि जगत तो जस मिलदा है, जगत तो मान मिलदा है, वो मान इस दे अहंकार नू होर वधांदा है, होर वधांदा है। देखने दे चाया है धन है तो धन ते अहंकार बैठ गया है, फिर धन दा त्याग है तो त्याग ते अहंकार खड़ा हो गया है, उन त्याग दा अहंकार। सता कोल है सता दा अहंकार, सता दा त्याग कर देता है उन त्याग दा अहंकार। ऐसा अक्सर देखण नु मिलता है, पहले जो कोल है उसका अहंकार, फिर जो कोल है उसका त्याग कीता है, उस त्याग दा अहंकार। अहंकार नवे तो नवे रस्ते लगता है, और अहंकार तो बचना औखा। जेड़ा सिंघासन भी असी निरंकार नू बिठाण लई बनाने हां, अहंकार बैठ जांदा है। दान दा सिंघासन बड़ा सोहना बनाया सी, भगवान आके बैठे, निरंकार आके बैठे, अहंकार आके बैठ जांदा है। सेवा कर रहे सी ताकि सेवा दे सिंघासन ते प्रभु आके बैठे, नहीं अहंकार आके बैठ गया। सिमरन माला दे राही, रसना दे नाल जप दे राही आरंभ कीता, ताकि ए जप ए माला दा फिरना प्रभु प्राप्ति दा साधन बन जाए, पर इससे भी अहंकार खड़ा हो गया। अहंकारी नूं दूसरे तुच्छ प्रतीत आउंदे ने, अहंकारी अपने आप नूं महान समझदा है, और कई दफा अहंकार इतनी चरम सीमा ते पहुंचदा है उहदी दृष्टि च निरंकार भी कुछ नहीं, वो स्वयं दावा कर उठता है मैं ही निरंकार, मैं ही निरंकार। दावा कीता सी हरनाकश ने मैं परमात्मा, कौन होंदा है परमात्मा। दावा कीता सी नमरूद ने मैं हां खुदा, कौन होंदा है खुदा। अहंकारी अपने तो वड्डा किसे नु भी मनन नु तैयार नहीं। इस वास्ते अहंकारी दा सिर झुकदा ही नहीं, झुकदा ही नहीं, आकड़िया रहिंदा सिर, और उसके सामने माता छोटी है, पिता छोटा है, गुरु छोटा है, प्रभु छोटा है, कोई भी वड्डा नहीं, सिर्फ वो खुद वड्डा बनता है और वड्डा होके दिखाण दी कोशिश करता है। सारी भज दौड़ अहंकार लई है, निरंकार लई नहीं। किस तरह मैं सारे लोगों दियां निगाहां दा मरकज बन जावां, केंद्र बन जावां, हर एक दी निगाह मेरे ते टिके,
اور ہر ایک دا مان میں ہو جاواں، میرے تے مان کرن، اور اس طرح میرا ہنکار شکھر تے پہنچے۔ ساری بھج دوڑ اہنکار دیئے، انج کہہ لئیے یاتراواں تے دو ہی نے، اہنکار دی یاترا، نرنکار دی یاترا۔ نرنکار دی یاترا آرمب ہوندی ہے تو ہیں، اہنکار دی یاترا آرمب ہوندی ہے میں ہاں، یہ جنم مرن دا کارن بن جاندی ہے تو ہیں، یہ جنم مرن نو مٹا کے پربھو دا روپ بنا دیندی ہے، بوند ساگر دے چلین ہو جاندی ہے، ایشور دا روپ ہو جاندہ ہے منک۔ بھگت کبیر کہندے نے

जब आपा पर का मिट गया, जत देखा तत तू। तू है, तू है, तू है। इस वृत्ति ने, इस जप ने तेरा ही रूप बना देता। अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले हैं सारंग पानी, राम कबीरा एक भय हैं, कोई न सके पछानी। तू है, तू है, तू है, इसने भगवान का रूप बना देता। मैं हां, मैं हां, मैं हां, ये शैतान का रूप बना देता है। शैतान ही है वो जिसका सब कुछ अहंकार आश्रित खड़ा है। भगवान का रूप है जिसते रोम रोम देच, जिदियां सारियां क्रियावां देच भगवती प्रदर्शित, भगवती नुमाइश हो रही है, परमात्मा ही प्रकट हो रहे है। श्री रविदास सही कह रहे ने, जब हम होते तब तू ना ही, अब तू ही, मैं ना ही। जब मैं सी तू नहीं सी, हुण तू है मैं नहीं। ये तू ते मैं दोवें इकों सिंघासन ते नहीं बैठ सकते। महाराज दी बाणी दा फरमान, हौमें नावें नाल विरोध है, दोए न वसे इक ठाए। ये मैं ते तू दोवें कठे नहीं रह सकते, या तू है या मैं हां। अहंकारी दी सारी साधना है मैं हां, मैं हां, उदी सारी भज दौड़, उदी सारी क्रिया, उदी सारी तपस्या, उदी सारी मेहनत, ये किस कारण हो रही है? मैं पर विनम्र मनुख दा, संत दा सब कुछ तू हासिलत है, तू ही है, तू ही है, तू ही है। उथे मैं दी कोई चिंगारी नहीं रहिंदी जिस विच गुण भस्म हो जांदे ने। बस तू ही, तू ही, तू ही। एक आलम दा कहना है, अज राह चनार, अज राह चुनार, कि सलामत न कुनत। इस ढंग नाल चल रस्ते देच कि किसे दा सिर मजबूरन ना झुके, इतना आकड़ के ना चल। बा खलक चुना जी के कयामत न कुनत, खलकत देच इस ढंग नाल रह कि तेरे रहन दे नाल कयामत ना होवे। दर मस्जिद गर रवि के चुना जाओ के तोरा, दर पेश ना खुआनंद ओ इमामद न कुनत। जे किधरे इबादत करनू तेरा जी करे तो निमाजियां दे पिछे होके नमाज पढ़ी, किधरे अग्गे होके नहीं। ऐसा ना होवे कि तेरे अंदर इमाम बनन दा चाव पैदा हो जाए और नमाज पढ़दिया मस्जिद दे च भी तू कह उठे कि मैं ही सब तो वड्डा, मैं ही सब तो वड्डा। अक्सर धार्मिक मंदिरां दे च भी लोकी प्रधानगी लभदे ने, ते प्रधान ते परमात्मा है। या फिर जिस दा मिट गया है सारा अहंकार, वो प्रधान हो सकता है। सगल पुरख में पुरख प्रधान, साध संग जांका मिटे अभमान। जो संगत दे चरणा दी खाक हो गया है, मस्तक दा तिलक ते फिर ओही बनता है। पर जो पहले ही मस्तक दे ते असवार होके बैठा है, शायद उसनु मखलूक दे कदमा दे च भी जो है थां ना मिले। पर अहंकारी ते सिर ते बैठण दी कोशिश करदा है। अहंकारियां दे आसन सिंघासन लोगां दे सिर दे उत्ते ही हुंदे ने। सारी राजनीति, सारी सता अहंकार आश्रित ते है, और अहंकारी सिरां ते ही ते बैठदा है। कई दफा सिर हिल जांदे ने ते थल्ले गिरदा है। इस वास्ते कहंदे ने, गरूर का सर नीचा। आखिर जो लोगां दे सिर झुकाना चाहुंदा है, एक दिन इसका सिर नीवा होके रह जाता है। अहंकारी शर्मसार होके रह जाता है। इस वास्ते अहंकार परमात्मा दे विचकार
एक बहुत वड्डी दीवार है, एक बहुत वड्डी दीवार है। सारी धार्मिक साधना इस दीवार नू तोड़न वास्ते है। पर अहंकार बड़ा चलाक है, ये धार्मिक साधना नू भी अपना सिंघासन बना देंदा है। बैठना सी उसते प्रभु ने, आप बैठ जांदा है।

ते ज्यों कुंचर इसनान। सारी धार्मिक साधना हाथी दा इशनान बन के रह जांदी है। हे जनम मरण मूलं अहंकारं पापात्मा मित्रं तजन्त सतरं दृणन्त अनेक माया विस्थिरने। एह अहंकार तेनू दुश्मन बनाने ही आंदे ने, मित्र बनाने दी तेनू जाच नहीं। अहंकारी दे मुंहों ना निकलदा है, अहंकारी हां नहीं कर सकदा। जित सारा माहौल ही ऐसा होवे और हां कहण दी सहूलियत भी होवे, कुछ बिगड़दा भी ना होवे, तां भी हां नहीं कहेगा, ना ना। जितनी ताकत ज्यादा होवे उतना ही जबान ते आ जांदा है, ना नहीं ना नहीं। कोई कम है और अक्सर कम कार लई लोकी सरकारी दफ्तरां दे जांदे ने। जितनी जिस कोल समर्था है ताकत है उस हिसाब नाल ही वो ना करता है, ना करके दसना चाहता है मैं तैनू रोक सकदा, मैं तेरे कम नू रोक सकदा। अहंकार इस महीने विच ते भारत बहुत अहंकारी देश हो गया है। ना ना ना, हां कहना ही भुल गए। हां कहने विच इनू अपना छोटापन प्रतीत होंदा है। जायज गल भी नौकर ने कह दित्ती है, जायज मंग भी एक नौकर ने मंगी है, तां भी मालक कहिंदा है ना। नौकर दी हां च हां मिला दईए, ना। अहंकारी ना करदा है, सब नू ना करदा है, और जिथे तक इसकी सता है उथे तक ना करदा है, और जितना ना ना करी जांदा है उतनी दुश्मनी बढ़ती है। तो पातशाह ठीक कह रहे ने, मित्रं तजंत सतरं दृणंत अनेक माया विस्थिर ने। अहंकार दी माया दा इस तरीके नाल विस्थार होंदा है, इसदे दुश्मन ही वधदे ने। ईरानी सूफी संत जनाब हाफिज कहंदे ने, दरख्ते दोस्ती बानिशां के कामे दिल बबारा रद निहाले दुश्मनी बरकुन के रंजो बेशुमारा रद। दोस्ती दा बूटा ला, मिलाप दा बूटा ला, जितो खुदा दा मिलाप चाहना है। जे किधरे भुलेखे नाल तो दुश्मनी दा बूटा ला भी बैठा है, इसनों आज ही जड़ों पुट दे। सिवाय दुखां दे सोल तो इस बूटे नूं होर कुछ भी नहीं लगता। अमृत फल खाना चाहना है, दोस्ती दा बूटा ला। भगत आत्मदर्शी मनुख ते सारे जहान नूं मित्र बना लैंदा है। सबको मीत हम आपन की ना, हम सब ना के साजन। किस तरह सारी कायनात नूं उसने मित्र बना लिया, पशु पक्षियां तक नूं, जड़ चेतन सब नूं अपना मित्र बना लिया। जिंदगी ते बड़ी छोटी है, दुनिया बड़ी वड्डी है, सारियां नूं मित्र बनाया आखिर किस तरीके नाल? गुरबाणी ढंग दसदी है, इक सज्जन सब सज्जना, इक वैरी सब बात। जद उस एक नू सज्जन बना लैंदा है ते एक नाल सज्जनता दा जद रिश्ता जुड़दा है तो सारी अनेकता
ਉਸ ਇੱਕ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਅਨੇਕਤਾ ਵੀ ਸਾਰੀ ਸੱਜਣ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਧਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਵਣਾ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਜੀਵਣਾ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਣਾ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਜੀਵਣਾ ਹੈ। ਨਰਕ ਹੀ ਭੋਗ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ, ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਕੱਖ ਵੀ ਵੈਰੀ ਨੇ, ਪਰ ਸਵਰਗ ਦੇ ਚੋ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਸਭ ਮਿੱਤਰ ਸਭ ਕੋ ਮੀਤ ਹਮ ਆਪਨ ਕੀਨਾ, ਪਰ ਇਹ ਯੁਗਤ ਅਹੰਕਾਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਅਹੰਕਾਰੀ ਜੇ ਅਸਥੂਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਖਸਮ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੋਟ ਪਹੁੰਚਾਵੇਗਾ। ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਇੱਕ ਗਾਥਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੰਤ ਬੈਰਾਗੀ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਕੁਟੀਆ ਬਣਾ, ਸਾਧਨਾ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਧਨਾ ਸਾਰੀ ਸਿਰਫ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਹੰਕਾਰ ਮਰਦਾ ਹੈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਹੰਕਾਰ ਜਿਤਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਹੈ ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜੈਸੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਾ ਸਾਧਨਾ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਇਹ ਯੋਗੀ ਇਹ ਸੰਤ। ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਆਇਆ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ, ਤਪੱਸਿਆ ਸਾਧਨਾ ਦੀ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਧੁੰਮ ਪਈ। ਬਹੁਤ ਤਪੀਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜਪੀਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਬੜਾ ਸੰਜਮੀ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਆਇਆ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ। ਰਾਜਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ, ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਮੋਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੜਤ ਪੁਸ਼ਾਕ ਚੋਲਾ ਭੇਟ ਕੀਤਾ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਧੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੋਲੇ ਪਹਿਨਣਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਤਨ ਦਿੱਤੇ ਸਿਰਫ ਕਮਲੀ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਉਹ ਰਾਜਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਆਖਿਰ ਮੈਂ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਹੈ ਆਪਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਭੇਟ ਹੈ, ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਆਪ ਰੱਖ ਲਓ, ਦੇ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਰਾਜਾ ਇਹ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਿਆਗੀ ਵੈਰਾਗੀ ਸਾਧੂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਿੱਤਰ, ਗੂੜਾ ਮਿੱਤਰ, ਬਚਪਨ ਦਾ ਦੋਸਤ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਸਾਧੂ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮਿਲਣ ਲਈ ਆਇਆ। ਗਾਲਬਨ 10 ਮੀਲ ਦੀ ਵਾਟ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਦੀ ਕੁਟੀਆ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਦੂਰੋਂ ਵੇਖ ਇਸ ਸੰਤ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਸਤਿਕਾਰ ਮਾਣ ਨਾਲ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ। ਰਸਮੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਭਿਕਸ਼ਾ ਤੋਂ ਭੋਜਨ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਛਕਾਇਆ। ਰਾਤ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਬਤੀਤ ਹੋਈ। ਸਵੇਰੇ ਇਸ ਬੈਰਾਗੀ ਸਾਧੂ ਨੇ ਕੋਈ 3 ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਬੈਰਾਗੀ ਸਾਧੂ ਆਏ ਹੋਏ ਮਹਿਮਾਨ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਬੈਠਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਤੰਗ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਆਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਲੋ, ਮੈਂ 3 ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਲੋ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਬੈਰਾਗੀ ਸਾਧੂ ਨੇ ਉਹ ਜੋ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕੀਮਤੀ ਚੋਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮੋਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੜਤ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਆਖੇ ਇਹ ਪਾ ਲਓ, ਕਸਬੇ ਦੇ ਚਲੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਲਓ। ਉਹ ਸਾਧੂ ਕੁਝ ਬੇਨਿਆਸ
ये मेहमान साधु और ये मित्र साधु जो आया है रमजी मनुख हरक सोग तो उच्चा मनुख पहन लिया उसने वो चोला कीमती चोला जैसे दोवें कस्बे दे अंदर दाखल होंदे ने सारियां दी निगाह उस चोले ते और चोला जिस साधु ने पहने है उस ते दुखी हो गया है बैरागी साधु है कल तक मैं जब इस कस्बे दे चाउंदा सी सारियां दिया निगाह मेरे ते आज ये निगाह फिर गई ने आज ते मेरे मित्र ते चोला दिता है लेकिन अंदर ख्याल आया है हैं इते मेरे नालों महान प्रतीत होंदा है सारे इसनों पे वेख देने खैर जिस घर दे जाना सी गए आओ भगत होई सन्मान नाल बिठाए गए और घर वालियां ने सुभावक पूछे उस बैरागी साधु तो ए जो नाल आए ने ए कौन ने क्योंकि सारे घर वाले अखां फाड़ फाड़ के उसनु वेख रहे ने सोना चोला पहने होया है मुखड़े ते शांति झलक दी है निर्माणता बिखर दी है रहस बिस्माद अखां दे इच है तो सारे घर वाले उस तो प्रभावित ने पूछदे ने संत जी ये नाल फड़े कौन आए ने दुखत होके कहिंदा है मेरे मित्र ने कल आए सन मेरे बचपन दे दोस्त ने साधु ने साधना करदे ने बड़े ज्ञानी ने जपीश्वर ने तपीश्वर ने पर ये जड़ा चोला है ना ये मेरा है हुण इस ढंग नाल ते तारफ नहीं कराईदा लेकिन अहंकार उबल पिया बुलवा दिता अहंकार ने मेरा है चोला मेरा है खैर जद उस घर तो रुखसत होए उस मेहमान साधु ने कहा मित्र तू कपड़े पवा के भी मैनू नंगा कीता चोला पवा के भी तू मेरे कपड़े उतारे कोई इस तरह तारुफ कराई दे खैर माफी मंगन लग पया कहन लगा नहीं अचानक मेरे मुंह में बोल निकल गए तुसी बुरा ना मनाओ बुरा ना मनाओ दूसरे घर गए दूसरे घर वालियां दी भी निगाह इस साधु ते अखां विच रमज है बिस्मात है चेहरे ते शांति है और सब तो वड्डी गल जिस तो ये घर वाले प्रभावित हो रहे ने इतना कीमती चोला इतना सुंदर चोला तो दूसरे घर वालियां ने भी यही पूछे संत जी ये नाल कौन महात्मा आए ने ये कौन ने तो एकदम बोल पे मेरे बचपन दे दोस्त ने बाल सखा ने और साधु ने तपस्या कर देने ज्ञानी ने रह गई इस चोले दी गल ये चोला मेरा नहीं है मेरा नहीं है इस दे विच ही वो कह गया है मेरा है मेरा है मेरा खैर उस घर तो ज्यों निकले ये बैरागी साधु फिर माफी मंगदा है मित्रा मैनु इस तरह भी नहीं कहना चाहिदा सी पर निकल गई है गल तू सहन कर ले बर्दाश्त कर ले हुण मैं नहीं कहांगा तीसरे घर गए आओ भगत होई बिठाए गए पर वो चोला
तीसरे घर दे भी सारे मनुखां नूं प्रभावित कर रहे हैं। नर नारी बच्चे सब प्रभावित उसे साधु नूं देख रहे हैं। सवावक पूछ रहे हैं, संत जी ये नाल कौन आए ने, ये केड़े संत ने? तो हुण तारुफ करांदा है, मेरे बाल सखा मित्र ने, जपीश्वर ने, तपीश्वर ने, ज्ञानी पुरुष ने, पर रह गई इना कपड़ियां दी गल, इस चोले दी, मैं इस दी गल नहीं करनी। ना गल करके भी कर गया। जद उस तीसरे घर तो रुखसत होए, कुटिया च पहुंचे, इस मेहमान साधु ने, इस दोस्त साधु ने चोला उतार के अग्गे रख दिता, आखिया तीन दफा तू नंगा कीता है, ऐ ले अपना चोला, हुण चौथी दफा मैं आप ही उतार देना, तीन दफा तू उतरवाया है, तीन दफा तू नगन कीता है। अहंकारी अपने मित्र दा भी मान सम्मान बर्दाश्त नहीं कर सकता। अहंकारी अपने गुरु दी महानता भी बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। वो मित्र नु छुपाएगा, मां बाप गुणवान ने ते उनां नु पिछे सुटेगा। विद्या गुरु है या अध्यात्म गुरु है, उसनु भी अहंकारी छुपाण दी कोशिश करेगा, पिछे सुटेगा। महाराज दी बाणी बड़ा सुंदर फरमान कर दिए, जो गुरु गोपे आपना ते नर बुरे आरी। ये बड़े बुरे पुरुष आंदे ने अहंकारी, गुरु नूं भी छुपांदे ने। क्यों? फिर मेरी मैं, मेरा वडपना फिर किथे? तो ये मित्र नूं छुपांदे ने, पुत्र नूं छुपांदे ने, अगर गुणवान है मां बाप नूं पिछे सुटदे ने। सिर्फ अपने आप नूं ही अग्गे करना इन्हां दी जिंदगी दा लक्ष्य है। और यतन कोशिश ए भी आउंदी है, रब नूं भी पिछे सुटीए, परमात्मा नूं भी पिछे सुटीए। और नाकश ने पिछे सुटण दी कोशिश कीती सी, नमरूद ने कह दिता सी कौन हुंदा है खुदा, मैं खुद खुदा। तो अहंकार अपने तो वड्डा किसे नूं भी नहीं मन सकदा। अहंकार जीवदा है मैं आश्रित, तू तो बिल्कुल भूल जाता है। एक उर्दू शायर ने बड़ी सुंदर नजम लिखी है, बकरे दे बोल नू अग्गे करके, ते बकरे दा बोल है मैं मैं मैं। इसे नू आधार बना के इस शायर ने बड़ी सुंदर कल्पना की थी है। फखर बकरे ने किया

पर छुरी कसा बने। कसाई दे छुरे हेठ आ गया, ने जबा कर दिता, सिर वट दिता। गोश्त हड्डी और चमड़ा जो था जिसमें जार में, कुछ लूटा कुछ पिस गया कुछ बिक गया बाजार में। रह गई तांते फिकते

ये बड़ा असाध रोग है। अहंकारी उस दे हालात ऐसे बन जाते ने जैसे भयानक जंगल उद्यान देच कोई रमण कर रहा हुए भ्रमण कर रहा हुए, क्योंकि अहंकारी दे गूढ़े मित्र नहीं रह जाते, उस तो सब दूर हो जाते ने और अहंकारी कल्ला रह जाता है। और ऐसा रह जाता है जैसे उद्यान देच भयानक जंगल देच मनुख तनहा रह गया हुए। असाध रोग है, किसे वैद को इसकी दवाई नहीं है, कोई इलाज नहीं है। तो इस श्लोक दी अखीरली पंक्ति देच धन गुरु अर्जन देव जी महाराज इन फरमान कर देने, वैदं पारब्रह्म परमेश्वर आराधनानक हर हर हरे। है वेद, है हकीम, कौन परमात्मा, केड़ी दवाई है उसके कोल, बस परमात्मा का नाम ही दवाई है। और ये दवाई किधरों बारों नहीं लानी, किधरों बारों नहीं लबनी, ये दवाई भी अंदर पई है। इस तरह जैसे के अहंकार रोग अंदर पे है, हमें दीर्घ रोग है, दारू भी इसे मां है। पर इसका यह मतलब नहीं दारू नहीं है, अहंकार अंदर है, औषधि भी अंदरों है। मैं अंदरों निकल रहे है, हूं जे किधरे अंदरों निकले तू इत औषधि हो गई। मैं इत रोग हो गया। ये रोग ते औषधि दोवें मनुख दे अंदर ने, इसकी मर्जी है रोग नु वधाना है कि औषधि नाल इस रोग नु घटाना है ते मिटाना है। मैं अंदरों निकलेगा, मेरा धन, मेरी कुल, मेरा रूप, मेरी प्रभुता, मेरी जात, मेरा कुल अंदरों ही निकलेगा। तू है कुछ भी नहीं मेरा, मैं ना ही, प्रभ सब किछ तेरा। ईघे निर्गुण उगे सरगुण केल करत विच स्वामी मेरा। इह जो तेरा तेरा है ये भी अंदरों निकलेगा, और ये जो मेरा मेरा है ये भी अंदरों निकलेगा। इस वास्ते रोग भी अंदर है, दवाई भी अंदर है। सत्संग इस वास्ते है, और गुरु अर्जन देव जी महाराज दा ए फरमान ए वाक प्रेरणा दे रहा है, जे रोग अंदर है तो वैद भी अंदर बैठा है, औषधि भी अंदर है, तो उस औषधि दा सेवन कर

सतनाम कर्ता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। काल जाल जम जोहो न साके सच का पंथा थाटेओ। सतगुरु दी बाणी दा फरमान हुण काल दा जाल सानू वेख नहीं सकदा। काल दी फाई साडे ते पै नहीं सकदी। क्यों? असी सच दे मार्ग ते चल पए, असी सच दा पंथ बना लिया, असी सच दे राही बन गए। काल जाल जम जोहो न साखे सच का पंथा थाट्यो। काल समा अकाल समय तो रहत, फाई समय दी है, जाल समय दा है। मनुख वक्त दी गिरफ्त दे च है, मनुख समय दे बंधन दे च है, और समय दे प्रभाव हेठ जी रहे। वक्त समा काल मनुख तो जो चाहता है कराही जा रहा है, कराही जा रहा है, कराही जा रहा है, और इस सब कुछ मनुख काल दे जाल दे च फस के ही कर रहा है। इंज कह लो बंधन दे च है। समय दा बोध होंदा है दिन करके रात करके। ठहर जाए दिन तो समय नु नापना औखा होवेगा, ठहर जाए रात तां वी समय नु नापना बड़ा औखा होवेगा। दिन ते रात दी ए गर्दिश समय नु नापण दा जरिया बनी, समय नु समझण दी एक प्रेरणा मिली। दिन तो

बहुत लंबा है, भविष्य नु बहुत लमकाया जा सकता है, बहुत लमकाया जा सकता है। मनुख दियां इच्छावां, मनुख दियां वासनावां, मनुख दियां कामनावां नु नापिए तोलिए, इना कामनावां विच ते सैकड़े नहीं लखां जिंदगियां जीवियां जा सकदियां ने। इतनी कामना, इतनी इच्छा, इतनी प्रबल वासना, इतनियां ख्वाहिशां, इस छोटी जी जिंदगी लई बोझ ने, बहुत ज्यादा ने, बहुत ज्यादा ने। जिंदगी छोटी, ख्वाहिश बहुत लंबी, बहुत लंबी, बहुत लंबी। जीवन सीमित है, कामनावां सीमित नहीं ने, वासनावां सीमित नहीं ने, असीम ने। जीवन सीमा विच कामना असीम, वासना असीम, इच्छावां असीम। इस वास्ते मनुख नो समा चाहिदा है, स्थान चाहिदा है। तो भविष्य बहुत लंबा है, बहुत लंबा है, बहुत लंबा है। भूतकाल बहुत लंबा है, बहुत लंबा है, बहुत लंबा है। एक तीसरा समय जिसनु कहंदे ने वर्तमान, वर्तमान कितना होवेगा, वर्तमान नु किस तरह नापिए। असीम है भूतकाल, असीम है भविष्य, और मनुख इना दोहां विच जीवंदा है। जैसे पंजाबी दे संत कवि भाई साहब भाई वीर सिंह जी कहंदे ने, बीत गई दी याद पई हड्डां नू खावे, आउण वाले दा सहम पिया मन नू तड़फावे। जो समा लंघे उस दियां यादां मेरियां हड्डियां खा रही ने, खा रही ने। जो समा आण वाला है उदी चिंता मैनू जला रही है, जला रही है। भविष्य दी चिंता जला रही है, भूतकाल दियां यादां खा रही ने, खा रही ने। इंज मनुख कदी भविष्य विच जल रहा हुंदा है, कदी भूतकाल विच खाया जा रहा हुंदा है, मिटदा जा रहा है। वर्तमान एक इन्ना क है, वर्तमान बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। वर्तमान दी सीमा है। इस वास्ते वर्तमान विच कोई जीवदा नहीं, और वर्तमान दे जो टिक गया उसे नु योगी कहंदे आ, उसे नु असी संत कहंदे आ, उसे नु असी भगत कहंदे आ, उसे नु ही आत्मदर्शी कहंदे आ। पर फिर भी नापिए वर्तमान किन्ना क है। धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज दे अनन भगत भाई साहब भाई नंद लाल इस नु नापते ने, वर्तमान किन्ना क है। यकदम बखेशरा न बुरदम के कीसतम, ऐ वाय नकदे जिंदगी रायगा गुजस्त। वर्तमान ते एक दम है, एक दम, एक क्षण, एक सेकंड, एक दम। इह एक दम जो मुंह दे च है नकद है, कोल है, नकद है। भविष्य दे दम उधार ने, पता नहीं आवने ने के नहीं, मिलने ने के नहीं। भूतकाल दम खर्च हो गया, दम ते लंग गए, उते वर्त ले, उते खर्च हो गए। भविष्य दे दम उधार ने, पता नहीं आवने ने के नहीं, नकद ते है। ओही दम जो मुंह देच है। यकदम बहेशरा न बुरदम के कीसतम, एक दम दी मैं विचार ना कीती, एक ही है। दम दम करके मेरी जिंदगी रायगां चली गई, व्यर्थ चली गई।
یکدم بخیش را نبردم که کیستم ایوائی نکد زندگی رائے گاں گجست. ایک دم جو نقد سی انو میں خرچ کیتا گزرے ہوئے دما دی یاد دچ خرچ ہوئے دما دی یاد دچ. ایک دم جو میرے منہ دچ سی ورتمان نقد انو میں بتیت کیتا آن والے دما دی چنتا. تو اس طرح یاداں بھوت کال دیاں چنتاواں بھوش دیاں ورتمان وچ تے کوئی جیوندا ہی نہیں, ورتمان ہے ایک دم. شاید اس واسطے دنیا بھر دے مہاپرشاں نے کہا پرماتما جد ملدا ہے ایک چھن وچ ملدا ہے, ایک چھن ورتمان, ایک سیکنڈ, ایک چت جے ایک چھن دھیایو کال فاس کے بیچ نہ آیا. ٹک دم قراری جو کرے حاضر حضور خدا ہے, اس دم دے چی اپنے آپ نو روک لوے. او ایک دم جو نقد ہے اس دے وچ ہی منک بیٹھ جائے, حاضر حضور خدا ہے. اسے نو مہان صوفی سنت بابا فرید نے انج بیان کیتا ہے, آج ملاوا شیخ فرید تاکم کونجنیاں منو مچندنیاں, جس نال من مچھردا ہے جے تو کدرے روک سکیں, جے کدرے بھوت کال دیاں یاداں نو مٹا سکیں, جے کدرے بھوش دی چنتاواں نو تو جلا سکیں, ہنے ہی خدا تے پرگٹ پربھو تے پرگٹ. پر ورتمان وچ پہنچن لئی تے بڑی سادھنا بڑی تپسیا, ورتمان وچ ہی بھگوان پرگٹ ہوندا ہے, ورتمان وچ ہی پربھو دی جھلک ملدی ہے. شاید اسے واسطے مہان دارشنک اور گرمت دے مہان گیاتا تتویتا برہم گیانی بھائی صاحب بھائی گرداس جی انہاں دا فرمان, ورتمان وچ ورت دا ہوونہار سوئی پروانا. گرمکھ تے ورتمان وچ جیوندا ہے ایک چھن وچ, اور اس وچ جو کچھ ہو جائے ہو گیا ہے قبول پروان, اور جو ہو گیا قبول ہے پروان ہے. سمجھ لو یہ جو ہو گیا اس تو اچا اٹھ گیا, یہ تے سنسار تو اچا اٹھ گیا, کیونکہ سنسار وچ دکھ ہے سکھ ہے ہاسے نے رونے نے, جنم ہے مرن ہے نفع ہے نقصان ہے. سنسار وچ عزت ہے بےزتی ہے تندرستی ہے بیماریاں نے, سوپن ہے کروپتا ہے. اچھا اٹھ گیا ایک دم وچ جد ٹکیا تو ایک پرگٹ ہویا دو مٹ گئے, دو مٹ گئے سنسار مٹ گیا, ایک پرگٹ ہو گیا نرنکار پرگٹ ہو گیا. تو ایک دم وچ ہی پرگٹ ہو گئے گا. بہتے دم جو خرچ ہو گئے نے انہاں دی یاد وچ پرماتما کتھے, انہاں دماں دی یاد وچ تے کچھ دکھ ہون گے کچھ سکھ ہون گے. بیٹھا ہوندا ہے منکھ یاداں وچ کدی دکھ دیاں یاداں کدی سکھ دیاں یاداں, کدی ملاپ دیاں یاداں کدی وچھوڑے دیاں یاداں, کدی سنتاپ دیاں یاداں کدی ملاپ دیاں یاداں. اس وچ جی رہا ہوندا ہے یا پھر بھوش دی چنتاواں دے جی رہا ہوندا ہے, یہ ملنا بھی ہے کہ نہیں, کامیاب بھی ہوواں گا کہ نہیں,
ਨਫਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਭਵਿਸ਼ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਬਦਾ ਵਿੱਚ ਡੁਬੋਈ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਭਵਿਸ਼ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦੁਫਾੜ ਹੋਇਆ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕਦਮ ਵਿੱਚ ਤੇ ਭਵਿਸ਼ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕਦਮ ਵਿੱਚ ਤੇ ਭੂਤਕਾਲ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕਦਮ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ, ਉਹ ਇੱਕ ਆਨੰਦਮਈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਭਵਿਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਭੂਤਕਾਲ ਨੂੰ ਜਾਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਭੂਤਕਾਲ ਤੇ ਭਵਿਸ਼, ਇੱਕ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹੋਏ ਦਿਨ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਔਰ ਦਿਨ ਦਿਨ ਕਰਕੇ ਦਿਨ ਭੂਤਕਾਲ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਿਨ ਭਵਿਸ਼ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਨਾਪਣ ਦਾ ਢੰਗ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਇੱਕ ਜਾਲ ਬਣ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਫਸਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਾਲੀ ਰਹਿਣ ਜਾਲ ਦਿਨ ਹੋਆ, ਜੇਤੀ ਘੜੀ ਫਾਈ ਤੇਤੀ, ਰਸ ਰਸ ਚੋਗ ਚੁਗੇ ਨਿਤ ਫਾਸੇ, ਛੂਟ ਸਮੂੜੇ ਕਵਨ ਗੁਣੇ। ਦੱਸ ਤੇ ਸਹੀ ਕਿਵੇਂ ਛੁੱਟੇਗਾ ਇਸ ਜਾਲ ਤੋਂ। ਤੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਡੰਗ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਕਾਲ ਜਾਲ ਜਮ ਜੋਹੋ ਨਾ ਸਾਕੇ, ਸੱਚ ਕਾ ਪੰਥਾ ਫਾਟਿਓ। ਸੱਚ ਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਹੈ, ਸੱਚ ਤੇ ਇੱਕ ਛਣ ਦੇ ਚ ਹੈ, ਸੱਚ ਤੇ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਚ ਹੈ, ਔਰ ਉਹੀ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ, ਉਹੀ ਇੱਕ ਛਣ, ਉਹੀ ਇੱਕਦਮ ਸੱਚ ਹੈ। ਲੰਘ ਗਏ ਦਮ ਝੂਠ ਨੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਮ ਝੂਠ ਨੇ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗਾਥਾ ਹੈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਗੰਮੀ ਮੌਜ ਦੇ ਚ ਬੈਠੇ ਤੇ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਰਦਾਨਿਆ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਕਿਤਨਾ ਤੱਕ ਤੂੰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਮੀਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਾਲ ਮਿਟਿਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾਨੇ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਚ, ਅਜੇ ਕਾਲ ਛੋਟਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਮਾਂ ਮਿਟਿਆ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਂ ਛੋਟਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸੌ ਕਦਮ ਤੱਕ ਚਲਾਂ, ਅੱਗੇ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ, ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਮੈਂ ਉੱਠ ਸਕਾਂਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ 200-300 ਦਮਾਂ ਦਾ ਤੇ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਇਤਨੇ ਦਮ ਤੇ ਮੈਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਬਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਬਾਲਿਆ ਤੂੰ ਦੱਸ। ਤਾਂ ਬਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਸੌ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਦਮ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਜੀ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਕਦਮ ਜੋ ਪੁੱਟਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੂਸਰਾ ਕਦਮ ਪੁੱਟ ਸਕਾਂਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤੋ 3-4 ਦਮਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ, ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਾਲ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, 3-4 ਦਮ। ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਬੋਧ ਵਧੇ, ਸਾਡਾ ਗਿਆਨ ਵਧੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਦੱਸੋ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਮ ਆਦਮੀ ਹਾਂ ਇੱਕਦਮੀ, ਮੋਹਲਤ ਮੌਤ ਨਾ ਜਾਣ। ਇੱਕਦਮ ਜੋ ਮੂੰਹ ਦੇ ਚ ਹੈ, ਬਸ ਇਸੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਇੱਕਦਮ ਦਾ, ਬਾਕੀ ਦਾ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ।
जिथे सुरत एकदम डिग गई उथे एक प्रगट हो गया। जिथे मन एकदम डिग गया, मन मिट गया, विचार खो गए, उथे एक नो प्रगट होण लई स्थान मिल गया, जगह मिल गई। जद भविष्य दी चिंता बहुत लंबी होवे, भूतकाल दियां यादां असीम आवन, सच नूं प्रगट होण लई थां नहीं मिलदी। सच ते वर्तमान विच प्रगट आउंदा है, और जैसे सच प्रगट आउंदा है, सुरत एकदम विच टिकदी है, काल खो जांदा है, अकाल प्रगट हो जांदा है। काल मिट जांदा है, अकाल प्रगट हो जांदा है। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ते कहंदे ने, सब समय दा तमाशा, सब काल दा तमाशा, क्या छोटे क्या वड्डे, क्या आम साधारण क्या देवी देवते, सब काल विच जी रहना। काल पाए ब्रह्मा बप दरा, काल पाए शूजू अवतरा, काल पाए कर बिसन प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। सब समय दा तमाशा, सब इस काल विच जी रहे ने। ब्रह्मे जैसा महान दार्शनिक, विष्णु जैसा महान सतोगुणी, शिव जी जैसा महान तपेश्वर जपेश्वर, पर काल विच जी रहे, समय विच जी रहे। अजे समा मिटिया नहीं, अजे काल मिटिया नहीं, अजे काल मौजूद है, काल विच जीविया जा रहे। इस वास्ते गुरबाणी ने परमात्मा दा नाम रखा है अकाल। वो मूर्ति मान है, पर ऐसी मूर्ति जो वर्तमान विच प्रगट होंदी है, अकाल मूरत। भविष्य दी चिंतावां विच नहीं, माजी दियां यादां विच नहीं। इसनू मैं पंजाबी रूप विच इस तरह बयान कीता है, माजी दियां यादां बस सागर दियां छल्लां, भविष्य दी चिंता बस गल्लां ही गल्लां, जीवन में सिखिया अज दे कोलों अज नूं मिलां ते अजे ही मिलां। इसने उर्दू रूप भी दिता है, कुछ माजी की खाक हूं, कुछ मुस्तकबिल का नूर हूं, जीना अभी नहीं आया क्योंकि हाल से अभी दूर हूं। हाल वर्तमान, और जो हाल विच नहीं जी रहा उन्हों कहने ने ते बेहाल है, इते वर्तमान विच नहीं, इते एकदम विच नहीं, इते बेहाल है, इते भविष्य दी चिंतावां दे जी रहे, मुस्तकबिल दी फिकर दे जी रहे, इते भूतकाल दियां यादां दे जी रहे, इते माजी दियां यादां दे जी रहे। ये वर्तमान दिच नहीं, ये हाल दिच नहीं, और जो हाल दिच नहीं, परिश्यन च कहिंदे ने बेहाल बेहाल बेहाल। इस वास्ते आम पद्धर ते भारत दिच, ईरान अफगानिस्तान दिच पुछिया जांदा है, तेरा की हाल है, तेरा की हाल है, भाव वर्तमान दिच है कि नहीं, एक प्रभु दिच है कि नहीं, कि दो दिच जी रहे हैं। सपना है जिन्ने देर तक चल रहे है, पर नहीं है अचेत अवस्था दे सपन, जागृत अवस्था दे मिट गया। है नहीं है, नहीं है है, स्वप्न है, स्वप्न देच मनुख कतल करे, शरीर ते मन ते ओही प्रभाव पैंदा है जो जागृत अवस्था देच मनुख करे। स्वप्न देच दुराचार करे, शरीर दी ओही हालत बनदी है, मन दी ओही हालत बनती है जो जागृत देच। स्वप्न देच चोट लग जाए, जरब लग जाए,
ਸਰੀਰ ਦੀ ਹਾਲਤ, ਮਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਉਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੋ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਸੁਪਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਮਿਲਿਆ, ਉਤਨੀ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਮਨ ਚਾਹਾ ਮਿੱਤਰ ਮਿਲਿਆ, ਕੋਈ ਮਨ ਚਾਹੀ ਵਸਤੂ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਸੁਪਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਮਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ, ਤਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ। ਸਵਪਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੈ, ਪਰ ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਗ੍ਰਿਤ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਉਹ ਨਿੰਦਰਾ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਵਪਨ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਸਵਪਨ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਉਹ ਜਾਗ੍ਰਿਤ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਾਗ੍ਰਿਤ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਜੋ ਸਾਡਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਉਹ ਸਵਪਨ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵਿਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਜੋ ਸਵਪਨ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਉਹ ਜਾਗ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸੱਤ ਕਹੀਏ ਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿੱਤ ਕਹੀਏ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਰੂਪ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ, ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਹੈ, ਹੈ ਸਵਪਨ ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਲਈ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮਿਟ ਗਿਆ ਸਵਪਨ, ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਮਿਟ ਗਿਆ, ਹੈ ਜਾਗ੍ਰਤ ਔਰ ਜਾਗ੍ਰਤ ਦਾ ਸੰਸਾਰ। ਪਰ ਜੈਸੇ ਜਾਗ੍ਰਤ ਅਵਸਥਾ ਖਤਮ ਹੋਈ, ਨਿੰਦਰਾ ਅਵਸਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਸਵਪਨ ਅਵਸਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਜਾਗ੍ਰਤ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਜੀਵਨ ਭਰ ਐਸਾ ਚੱਲਦਾ, ਜੋ ਜਾਗ੍ਰਿਤ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਵਪਨ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਸਵਪਨ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਜਾਗ੍ਰਿਤ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਛੜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਾਗ੍ਰਿਤ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਵਿਛੜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਵਪਨ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੀਵਨ ਭਰ ਐਸਾ ਚੱਲਦਾ, ਰੋਜ਼ ਵਿਛੜਦੇ ਹਾਂ, ਰੋਜ਼ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਰੋਜ਼ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਰੋਜ਼ ਵਿਛੜਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਗ੍ਰਿਤ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜੀਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਵਪਨ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜੀਵਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਚੂੰਕਿ ਜੀਵਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੈ, ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਹੈ, ਉਤਨੇ ਤੱਕ ਤੇ ਹੈ ਜਿਤਨੇ ਤੱਕ ਜਾਗ੍ਰਿਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਤਨੇ ਤੱਕ ਸਵਪਨ ਅਵਸਥਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਜਗਤ ਸਵਪਨ ਹੈ, ਜਾਗ੍ਰਿਤ ਵੀ ਸਵਪਨ ਹੈ, ਸਵਪਨ ਵੀ ਸਵਪਨ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਭੇਦ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਝ ਬਿਆਨ ਕਰੀਏ, ਜੋ ਰਾਤ ਦਾ ਸਵਪਨ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਜਾਗ੍ਰਿਤ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਹੈ। ਜਾਗ੍ਰਿਤ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਸਵਪਨ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ। ਕਲਪਨਾ ਜਾਗ੍ਰਿਤ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਜੋ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਸੁਪਨਾ ਹੈ, ਨਿੰਦਰਾ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਜੋ ਸਵਪਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਲਪਨਾ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਕਲਪਨਾ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵਪਨ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਗੱਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਕਲਪਨਾ ਹੈ।
स्वप्न है, पर असी नहीं कह सकते कि स्वप्न नहीं है। शरीर ते प्रभावित होया है, मन ते प्रभावित होया है। रात नूं कोई दफीना मिल गया, धन मिल गया, औदा मिल गया, मित्र मिल गया, पुत्र मिल गया, कोई विछड़िया साथी मिल गया, खुशी ते होई है मन नूं, तन दे रोंगटे ते खड़े होए ने, पर कोई मित्र अजीज अकारब चलाना कर गया, नुकसान हो गया, किसी दुश्मन ने घातक हमला कर देता है, या स्वप्न विच मनुख ने दुराचार कीता है, कत्ल कीता है, मन ते उतना ही प्रभावित हो रहा है, तन ते उतना ही प्रभावित होया है। महापुरुषां ने इस वास्ते संसार नू सिर्फ मिथ नहीं आख्या, मिथ्या नहीं किया, है शायद नहीं है, नहीं है शायद है, काल है शायद नहीं है, नहीं है शायद है। काल का प्रभाव तो मौजूद है, समय का प्रभाव तो मौजूद है, उस प्रभाव हेत मनुख जी रहे है, किस तरह कह देवे कि नहीं है। जिस तरह जागृत अवस्था विच कदी असी सुखी आउंदे आ, कदी दुखी आउंदे आ, कदी हसदे आ, कदी रोंदे आ, कदी कोई मिलदा है, कदी कोई विछड़दा है, कदी नफा है, कदी नुकसान है, स्वप्न अवस्था विच भी ऐसा हुंदा है, कुछ सुख भरे सुपने, कुछ दुख भरे सुपने। किसे सुपन विच असी बिस्माद भरी अवस्था विच आउंदे आ, किसे सुपने च असी रो रहे आउंदे आ, दुखी होंदे हैं। किसी सुपने विच कोई मिलिया होंदा है, बड़े प्रसन्न, बड़े प्रसन्न, पर किसी सुपने च कोई विछड़दा है, बड़े दुखी, बड़े दुखी। जागृत अवस्था विच असी कदी पाठ कर रहे होंदे हैं, सुरत जुड़ जाती है, रस बन जाता है, ऐसा स्वप्न अवस्था विच भी होंदा है, जुड़ जाता है मन, रस बन जाता है, आनंद बन जाता है। जिस संसारिक रस स्वप्न विच माणिया जा सकता है, तो निरंकार का आनंद भी स्वप्न विच माणिया जा सकता है। जे जागृत अवस्था विच पदार्थां का रस माणिया जा सकता है, तो परमात्मा का रस भी माणिया जा सकता है। शायद इस वास्ते ही धन गुरु नानक देव जी महाराज ने फरमान किया है, सुपने आया भी गया, मैं जल भरिया रोए, आए न सका तुझ कन प्यारे, भेज न सका खोए। ऐ सुपने विच आण वाले हो, तुसी चले गए, क्यों? स्वप्ना चला गया, स्वप्न चलता है निंद्रा देच, जागृत देच कल्पना चलती है, निंद्रा देच स्वप्न चलता है। निंद्रा अवस्था खत्म हुई, स्वप्न खत्म हो गया, जागृत अवस्था शुरू हुई, कल्पनावां दा जगत शुरू होया। तो सतगुरु ते मंग करदे ने, आओ सुभागी नींदड़िए मत सो देखा सोए, ऐ भागा भरी नींद आ तू आ। शायद फिर सुपने च झलक मिले, शायद फिर सुपने च आनंद मिले, पर हां मिलाप भरिया सुपन, सुख भरा सुपन इस तरह प्रतीत होंदा जिवें एक क्षण विच बतीत हो गया, पर दुख भरा स्वप्न जिस विच असी कुरला रही हो, तड़प रही हो, लंबा हो जाता है, लंबा हो जाता है। जागृत अवस्था विच भी ऐसा हो जाता है, दुख विच काल लंबा हो जाता है, समा लंबा हो जाता है,
ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਛੋਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਰੀਦਾ ਰਾਤੀ ਵੱਡੀਆਂ ਦੁੱਖ ਦੁੱਖ ਉੱਠਣ ਉਪਾਸ, ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੋ ਗਈ ਇਹ ਰਾਤ, ਹੋਕੇ ਨੇ ਤੋ ਹੋਕੇ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਹੋਕੇ ਵਿਛੋੜੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਸਮਾਂ ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੂਫੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਫਰਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ ਰਾਤ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਹੇ ਖੁਦਾ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੋ ਗਈ, ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਤਨਾ ਮਹਾਨ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਹੋਵੇ ਉਤਨਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਤਨਾ ਤੁਛ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਹੋਵੇ ਦੁੱਖ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੰਬਾ ਹੁੰਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮਨ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਰਸ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚਾਰ ਪਹਿਰ ਚੌ ਜੋਗੇ ਸਮਾਨੇ, ਰਹਿਣ ਭਈ ਤਬ ਅੰਤ ਨ ਜਾਣੇ। ਦਿਨ ਦੇ ਚਾਰ ਪਹਿਰ ਚਾਰ ਯੁਗਾਂ ਵਰਗੇ ਹੋ ਗਏ, ਨਹੀਂ ਲੰਘਦੇ, ਨਹੀਂ ਲੰਘਦੇ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਯੁੱਗ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਵਰਗਾ, ਲੱਖਾਂ ਸਾਲ ਵਰਗਾ, ਨਹੀਂ ਲੰਘਦੇ। ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਚਾਰ ਪਹਿਰ ਚੌ ਜੁਗੇ ਸਮਾਨੇ, ਰਹਿਣ ਭਈ ਤਬ ਅੰਤ ਨ ਜਾਣੇ। ਆਈ ਹੈ ਰਾਤ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੇ ਯੁਗਾਂ ਵਰਗੀ ਹੈ, ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਦੁੱਖ ਦੇ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਰਕ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਈਸਾਈ ਜਗਤ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਰਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਹੈ, ਸਦੀਵੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨੀਤੀਸ਼ੇ ਜੈਸੇ ਵਿਚਾਰਕ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਧਾਰਮਿਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਮੈਂ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜੋ ਮੈਂ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਨਾਹਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਸੇ ਗੁਨਾਹ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਨਰਕ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ। ਔਰ ਐਸਾ ਨਰਕ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ੰਬੂਰਾਂ ਨਾਲ ਮਾਸ ਨੋਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਦਲਦਲ ਦੇ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਬਲਦੇ ਤੇਲ ਵਿੱਚ ਤਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਕੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੰਦ ਬੰਦ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਰਕ ਦਾ ਇਹ ਨਕਸ਼ਾ, ਇਹ ਵਿਚਾਰਕ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਉਸ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਰਹੀਮ ਕਹਿਣ ਦੀ, ਰਹਿਮਾਨ ਕਹਿਣ ਦੀ, ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਹਿਣ ਦੀ, ਦਿਆਲੂ ਕਹਿਣ ਦੀ, ਕਰੁਣਾਕਰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਾਲਮ। ਦਰਅਸਲ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨੀ ਨਾ ਆਈ, ਨਰਕ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਸਵਰਗ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਸੁੱਖ ਦੇ ਸਮਾਂ ਛੋਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਦੇ ਸਮਾਂ ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਘੜੀ ਦਿਨਸ ਮੁੱਖ ਬਹੁਤ ਦਿਹਾੜੇ, ਮਨ ਨਾ ਰਹੇ ਕੈਸੇ ਮਿਲੋ ਪਿਆਰੇ। ਇੱਕ ਪਲ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਔਰ ਉਸਦਾ ਦੁੱਖ, ਇਹ ਇੱਕ ਪਲ ਤੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਲੰਘਦਾ, ਨਹੀਂ ਲੰਘਦਾ। ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਲ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਛੋਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਛਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਦਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੂਤ ਖੋ ਗਿਆ, ਭਵਿਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਕਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਾਲ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ।
लेकिन बहुगिणती मनुखी दुनिया दी काल विच जी रही है। मनुख दे कोल सिमरति है, इस सिमरति कदी अगे जांदी है कदी पिछे जांदी है। जदे भूतकाल दी तरफ जांदी है तो भूतकाल दा चिंतन बन जांदी है, जद भविष्य दी तरफ जांदी है तो चिंता बन जांदी है। तो चिंतन चलदा है भूतकाल दा, चिंता चलदी है भविष्य दी। ये किस तरह मिटे? धन गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमान करदे ने, मैं जिथे तक देखदा मनुख चिंता विच जी रहा है। भविष्य बहुत लंबा हर एक ने बनाया है, बहुत लंबा बहुत लंबा। चिंतत ही दी से सब को है, सारी चिंता दिस दिखाई दे रहे हैं। सारिया ने बड़ा लंबा भविष्य बना रखे और चिंता भविष्य दी। यही कारण है कि कदम कदम ते बाजारां च बैठे ज्योतिषी मिलणगे, उन्हां नूं भी पता है हर मनुख जी रहा है भविष्य दी चिंता दिच। जरूर पूछेगा भविष्य कैसा है, भविष्य कैसा है, भविष्य कैसा है, भूतकाल कैसा है, कुछ इस नुचेते है। गुजरिया या कल कैसे सी, गुजरिया या साल कैसे सी, गुजरे 50 साल कैसे सन, चेते ने। आन वाला कल किस तरह होवेगा कुछ भी नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। ये तो ठीक है कि 50-60 साल तो कोई पिछे जाए, 5 साल दी जद जिंदगी होवे उस तो पिछे मनुख दियां यादां नहीं जांदियां, भुल गया है। हां किसी किसी दी सिमरती ये शक्ति ज्यादा होंदी है, उस जन्म दी दीवार नु तोड़ के अगले जन्मां च भी पहुंच जांदी है। पिछोकड़ बहुत कुछ दिसदा है, बहुत कुछ दिसदा है, और भविष्य भी वह देख लेंदे ने और सही देखदे ने। मनुख दा भविष्य है परमात्मा होना, भावे अज हो जाए भावे कल होवे, परमात्मा होए बिना ये चिंता मिटनी नहीं, ये भविष्य मिटना नहीं। पर यादां मासी दियां भूतकाल दियां यही बोझ मनुख ढो रहा है। इसी बोझ दे थले मनुख दबे होया है, यही भार चुकी फिरदा है। कहिंदे ने भाई साहब भाई नंद लाल अद्धी रात नू बैठे ने, मुंह लंबे लंबे होके निकल रहे ने। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दी चहल कदमे आप दे कन्ना विच होकियां दी आवाज पई, जिधरों होके आ रहे सन गए देखे आए ते नंद लाल नू भी महसूस होया मेरे कोल कोई खड़ा है। गौर नाल देखिया ते सतगुरु कदमां ते डिग गए। पातशाह कहिंदे ने नंद लाल रात बड़ी स्याह है काली है। हां महाराज बड़ी काली है, सब कुछ काला दिखाई दे रहा है। हां महाराज काला दिखाई दे रहा है, सारा आसमान काला दिखाई दे रहा है। हां महाराज सारा आसमान काला दिखाई दे रहा है। दस क्यों काला दिखाई दे रहा है, ये क्यों काला है? तो नंद लाल सोचदे च पै गए, हाथ जोड़ के कहने पातशाह मैं शायर हां कवि हां आपदा अदना सेवक हां सिख हां, मैं विज्ञानक नहीं, मैं की जाना आसमान काला क्यों है। पर सतगुरु कहने तू तस्लीम कीता है शायर है कवि है, तो कवि दी अपनी कल्पना दी परवाज भी होंदी है, शायर दे अपनी तखयल दी परवाज भी होंदी है, उडारी होंदी है।
चल तू अपने तखयल दे आधार ते, कल्पना दे आधार ते दस आसमान दा रंग काला क्यों है। रंगश कबूद कर दिले अज पुरुष और आर साख्त, अज बस के दूदे आहे मन अज आसमान गुजस्त। हे मेरे बादशाह, मेरे तड़पे हिरदे चो जड़े होके निकले ने ओ जद आसमान तक पहुंचे ने, उन्होंने ही साड़ के काला कीता है। बादशाह ने गलवकड़ी च लै लिया, इतने काल दे भार थले तू जी रहे हैं। अकाल पुरख रहमत करन बख्शिश करन, काल खत्म हो गए अकाल प्रकट हो गए। अकाल महा आनंद है, अकाल वर्तमान है, काल भूतकाल है, काल भविष्य है, और काल भविष्य की चिंता है। काल भूतकाल दियां यादां ने, पर अकाल ना भूतकाल दियां यादां ना भविष्य दियां चिंतावां, परम आनंद प्रगट हो गया, अकाल प्रगट हो गया। भगत कबीर कहंदे ने, दिन सुरैन वेद नहीं शास्त्र, तहां बसे निरंकारा, कहत कबीर नर तिसे ध्यावो बावरिया संसारा। ऐ पागल संसारे हो, वाकई जो भूतकाल दियां यादां च बैठा है उन्हों किस तरह सियाणा आख्या जा सकता है, जो भविष्य दियां चिंतावां दे डुबिया होया है उसनों किवें सियाणा आख्या जा सकता है। सियाणा ते ओ जो वर्तमान दे जी रहा है, अकाल दे जी रहा है, काल दे च नहीं। अकाल दे जीण वाला काल दियां सारियां फाइयां नूं तोड़ के रख देंदा है, काल दे जाल नूं तोड़ के रख देंदा है। तदी के सतगुरां दी बाणी फरमान कर दिए, काल जाल जम जो हो न साके, सच का पंथा ठाठे हो। इसे नूं धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज फरमान कर देने, अकाल है अजाल है, हे प्रभु तू अकाल है, तेरे उते काल दा जाल नहीं है। और मिट जांदा है समाधि दे समा, खो जांदा है काल, समस्यावां ते भविष्य दियां ने, समस्यावां ते माजी दियां सन, तो यादां समस्या समस्यावां दी यादां कुछ भूतकाल नाल संबंधित है, कुछ भविष्य नाल संबंधित ने। मिट गईया सारिया समस्यावां क्योंकि वर्तमान एक क्षण समाधि। या मनुख समस्या च जीवदा है या समाधि, समाधि अकाल है, समस्या भूत है, समस्या भविष्य है, समाधि अकाल है। अकाल दा चिंतन समाधि लीन कर दें, अकाल दी याद काल नु मिटा के रख देंदी है। अकाल दा चिंतन सच दे मार्ग ते चलना है और सच तक पहुंचना है। काल जाल जम जो हो न साके, सच का पंथा ठाठे हो।

शराब जुड़ गई, शराब नाल कबाब जुड़ गया। ऐसा क्यों? शराब और हलवा इंज नहीं कहंदे, शराब और मिठाई ऐसा नहीं कहंदे, शराब और रोटी ऐसा नहीं कहंदे, शराब और अंब ऐसा नहीं कहंदे, शराब और कबाब। लगदा है कुछ जरूर चोली दामन दा साथ है, अगर साथ ना होंदा तो इस तरह भी कहा जा सकदे शराब और दुध, शराब और दही, शराब और घी ऐसा नहीं कहंदे, जबकि सारिया चीजा खाने वाली हैं। शराब और कबाब, कबाब नो शराब चाहिदी है, शराबी नो कबाब चाहिदा है। इना दोहां दा चोली दामन दा साथ है। और धन गुरु नानक देव जी महाराज ऐसे रैवरी पुरुष ने शराब दी गल कर रहे ने, कबाब दी गल कर रहे ने। खाने कबाब जरूर खा, पर जिस तरह दा ढंग मैं तेनू बनाने दा दसदा कबाब ओ खा। शराब पीनी है जरूर पी, पर जेड़ी मैं बनाने दा ढंग तेनू दसदा ओ पी। बन शराबी, बन कबाबी, ऐसा शराबी ऐसा कबाबी कि परमात्मा भी तेनू सीने नाल लाण ते मजबूर हो जाए। किसे वक्त सतसंग नू मैखाना कहा जांदा सी, अज ते खेड ही कुछ होर होगी, सिलसिला कुछ होर हो गया। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहंदे ने ए युग कलाल है, अगर ए कलाल है तो इसदे कोल शराब केड़ी है। कल कल वाली काम मद, इसदे कोल काम दी शराब है। तुम कहियत हो जगत गुरु स्वामी, हम कहियत कल युग के कामी। धन भगत रविदास जी महाराज, हे प्रभु तू जगत दा स्वामी, असी इस युग दे कामी, तो तालमेल किस तरह बैठे। एक दौर ऐसा भी लंघे है, हर पासे धर्म दी प्रदर्शनी सी, धर्म दी नुमाइश सी, बाहरों भी डुल डुल के धर्म पैंदा सी, गल दे च माल है, हत्थां च माल है, घर दे च मालां लटकियां हुई ने, ग्रंथ पए ने, तमाम धार्मिक साजो समान नाल घर सजे हुए ने, और घर विच भी जाके ऐसा पता चलदा सी जैसे मंदिर है, धर्मशाला है। दौर बदलिया, घर विच बार बन गई, घर विच बोतलां आ गई, घर विच वैश्याले बन गए। हैरानगी दी गल, पहले घर मंदर सन, घरम धर्मशाल सन, हुण ते बहुते धर्मशाले भी किसे हद तक मैखाने ने, भ्रष्टाचार दे अड्डे ने, दुराचार दे अड्डे ने। दौर बदले है, समय दा प्रभाव, महाराज कहंदे ने कलाल है ए युग, और ये बना रहा है काम दी शराब। ज्यादा चर्चा इसे दी है, ज्यादा यही देखिया जा रहा है टीवी ते, अखबारां विच, इश्तहारां विच, तरह तरह के मैगजीन, तरह तरह के गंदे नावल, जिनसियात नाल भरिया हुई कहानियां, हर पासों उजागर काम दी प्रदर्शनी, काम दी नुमाइश। आखिर मनुख कोल जो कुछ होवेगा उसे दी प्रदर्शनी करेगा, आखिर मनुख कोल जो कुछ है वही बार प्रगट करेगा। कामी काम जीवन दी एक वक्ती लोड़ हो सकता है, काम जीवन नहीं हो सकता, लोड़ कतई जीवन नहीं आती। इसनों जिस आलमाना ढंग नाल धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ने बयान किया है, आप दे सामने रखा। पंकज फाते पंक महामद गुंथिया,
अंग संग उरझाए बिसरते सुंफिया। पंकज, पंक कहंदे ने चिक्कड़ नूं, पंकज पंक दे चो जमया, चिक्कड़ दे चो पैदा होया पंकज। पंक ने जन्म दिता है, चिक्कड़ ने जन्म दिता है पंकज। तो चिक्कड़ किसनों जन्म देंदा है? चिक्कड़ एक चोटी दे फुल नू जन्म देंदा है, जिसनों कमल कहंदे ने, जिसनों सौरभ कहंदे ने, जिसनों कंज कहंदे ने, जिनू पदम कहंदे ने, जिनू सारंग कहंदे ने, जिसनों बारिज कहंदे ने। धर्म ग्रंथां दे गालमन इसके 18 नाम ने और ये धर्म का प्रतीक है। अगर कोई धार्मिक मनुख है तो कह दिता जाता है तो कमल की तरह। भारत के मंदिरों के गुंबद कमल ने। बोध भिक्षु जब सवेरे सवेरे भिक्षा ले चलते ने हद च कमल की पंखड़ी लेके, ताकि एहसास रहे विचर रहे हैं बाजार दे गलिया दे कमल की तरह रहना है। डुबना भी नहीं, भिजना भी नहीं। महाराज कहने पंकज फाते पंक, जो पंक तो जमया सी चिक्कड़ तो जमया सी, महाराज कहने चिक्कड़ी ची फस के रह गया। पंकज फाते पंक, पंकज पंक दे फस के रह गया। कदी ऐसा होंदा है सरोवर दा पानी सुकन लग पैंदा है, ते बाहर दे जल झरने जो इस विच आ रहे सन वो अवरुद्ध हो जांदे ने, रुक जांदे ने, पानी नीवा होण लग पैंदा है। और इतना नीवा कि चिक्कड़ दिखाई देण लग पैंदा है, और वो कमल जो बहुत उपर उठाया होया सी चिक्कड़ दे नेड़े चला गया, पानी दे आसरे थे, बहुत उच्चा उठिया सी, बहुत उच्चा उठिया सी, नीवा चला गया, थल्ले चला गया। लेकिन अचानक जोर दी बारिश हो गई, चारों पासे दा जल झरना झरनिया दा रूप धारण कर सरोवर दी तरफ आया, और सरोवर बड़ी तेजी नाल भरन लग पया। जितनी तेजी नाल पानी उच्चा हो रहा है, इतनी तेजी नाल कमल उठ ना सकया। जितनी गति नाल पानी ऊपर उठ रहा है, ये गति कमल अपनी बना ना सकया। होया कि पानी ऊपर चला गया, कमल थल्ले चला गया। चिक्कड़ तो जमया, फिर चिक्कड़ दे फस गया। पंकज फाते पंक, महामद गुंफिया, अंग संग उरझाए बिसरते सुंफिया। ऐसा चिक्कड़ विच उलझे है, अपनी सुगंध ही भुल गया, अपना स्वप्न ही भुल गया। चिक्कड़ तो जमया सी, हुण अपने आप नूं चिक्कड़ ही समझ बैठा। जन्म काम तो है, अगर जीवन भी काम बन जाए तो चिक्कड़ तो जमया ये कमल चिक्कड़ विच लीन हो गया। चिक्कड़ चिक्कड़ ही बन के रह गया, चिक्कड़ कमल नहीं हो सकया। काम राम हो जाए तो चिक्कड़ कमल बन गया, काम सिर्फ काम ही रह जाए तो कमल चिक्कड़ विच फस के रह गया। ये उदाहरण बड़ा सुंदर धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ने दिता है। काम तो जमया ए जीव काम दे च ही फस के रह गया। चारों पासे अज नाटक, फिल्मा, मैगजीन, इश्तियारी दुनिया, अखबारी दुनिया, टीवी दी दुनिया, रेडियो दी दुनिया, समाजिक दुनिया, राजनैतिक दुनिया, हता कि धार्मिक दुनिया भी काम दी नुमाइश तो बिना होर कुछ रह नहीं गई। चारों पासे इस दी प्रदर्शनी। कारण ए जड़ा युग है, एक कलाल है ही दे कोल शराब, यही शराब है। मनुखां नूं किसे होर सरूर दा पता ही नहीं, किसे होर नशे दा पता ही नहीं। दुनिया दे सारे नशे भी काम दे आले दुआले मंडला रहे ने,
اور کام پربل نشہ، جس منک بے سرت، منک بے ہوش۔ یہ گل وکھری ہے کہ اتنا کھل کے اس وشے تے اتنا بولیا نہیں گیا، لکھیا نہیں گیا، اور جد کسی نے کچھ لکھیا ہے تے اس گرنتھ نو دھرم گرنتھ نہیں آکھیا گیا، جد کوئی بولیا ہے تو انہ بولاں نو دھارمک بول نہیں آکھیا گیا۔ حد ہوگی، جس تو جیون جمے ہے اس من دے بول، یہ ایک پاسے رکھ دئیے دھرم دا حصہ نہ مانیے تو پھر یہ تے انج ہوئی جی کہہ دئیے جنم ہی نہیں ہویا، یا جتھوں جنم ہویا اسی اس نو منتے ہی نہیں۔ جیون ادھوں سفل ہو جاندا ہے کہ جمے کام دے چاں تے لین ہووے رام دے چ، یاترا سفل ہو جاندی ہے۔ چکڑ تو جمے ہے پر چکڑ تے پانی دوہاں تو اچا اٹھے، کام تو جمے ہے پر اے کام تے پدارتھاں دوہاں تو اچا اٹھے، پانی تو بھی اچا اٹھے۔ کئی دفعہ زور نال ودیا ہویا پانی بھی ڈپو کے رکھ دیندا ہے، اوپر نہیں اٹھن دیندا، اچانک دھنوان ہو گیا ہے، اچانک ستا مل گئی ہے، پربھتا مل گئی ہے، بڑی تیزی دے نال دھن سمپدا آئی ہے، نہیں سنبھال سکیا، غرق ہو گیا، ڈب گیا۔ آہستہ آہستہ جد سروور دے پانی پیندا ہے، آہستہ آہستہ پھل بھی اوپر اٹھتا رہندا ہے، پر ورلے کوئی پھل نے ایسے جو تیبر گتی دے اپنے آپ نو تیبر گتی چ اٹھا سکن۔ پانی دا ویک بڑا تیبر ہوئے، بڑے تیبرتا دے نال پانی ودا جا رہا ہے، اچا ہو رہا ہے، اور اسی تیبرتا دے نال او اپنے آپ نو اچا کر سکے، کٹھن ہو جاندا ہے، اوکھا ہو جاندا ہے۔ کام ہی ایک شراب ہے جو ایک کلال اپنی دکان تے سجا کے بیٹھا ہے، ویچ رہا ہے، پی رہا ہے، پلا رہا ہے۔ کل کل والی کام مد منوا پی منو ہار، क्रोध कटोरी मोह भरी पिलावा अहंकार। ए समा ए युग ते कलाल है, काम दियां बोतलां, काम दी शराब सजा के बैठा है, पर ए किस प्याले विच पीती जांदी है اور ساکی کون ہے، پلان والا کون ہے؟ کہندے کلال ہووے، شراب ہووے، پیالہ نہیں، ساکی نہیں، تو میں خانے دا رنگ نہیں جمدا۔ اس کلال دا جو میں خانہ ہے، رنگ جمے آیا ہے۔ کام مد کل کل والی، کام مد منوا پیون ہار، کروب کٹوری مو بھری پلاوا اہنکار۔ پیالہ ہے کرود دا، ساکی ہے اہنکار، اور شرابی شراب دے پین والا ہے منک دا اے من۔ تن بھاویں ساریاں دے پانی پین والے ہون، من تے ساریاں دے شراب پین والے۔ تن بھاویں دودھ پین والے ہون، من تے ساریاں دی شرابی نے۔ یہ گل وکھری ہے، دس پیندا ہے یہ منہ نال دودھ پی رہے ہے، من نال شراب پی رہے ہے، منہ نال بھوجن چھک رہے ہے، پر من نال تے شراب ہی پی رہے ہے، شراب ہی۔ کام دی شراب، شراب دا کم کی ہے؟ بے ہوش کرنا۔ کام واشنا ایک ایسی بے ہوشی ہے جس وچ منک نو اپنا نام دھام کچھ بھی چیتے نہیں رہندا۔ کہنن جنم دا کارن بھی بے ہوشی ہے، مرن دا سادن بھی بے ہوشی ہے۔ بے ہوشی چ جمدا ہے، بے ہوشی چ مردا ہے،
बेहोशी विच मरण की क्रिया चल रही है और बेहोशी विच ही जन्म की क्रिया चल रही है। बेहोशी हावी है, जब काम विच होश हो गया है तो फिर मरण विच भी होश होवेगा, और जिसका मरण विच होश हो गया है ना फिर जन्म ना फिर मरण, फिर तो अगम्मी दुनिया का वासी हो जाता है। बहुत वड्डे अपराध करने अवन तो कई दफा मनुख अपने आप नूं थोड़ा बेहोश करता है, शराब पींदा है। ते जे काम दी शराब दा नशा मनुख दे मन नूं हर वक्त चढ़िया होवे तो इस दीआं अखां ते हर वक्त मैलियां रहणगीआं, इस दा तन ते हर वक्त मैला रहेगा। तो धन गुरु नानक देव जी महाराज कहिंदे ने, क्रोध कटोरी, क्रोध दा एक कटोरा है, प्याला है, मोह भरी, मुंह दे च क्रोध भरया, मुंह कटोरा बनया होया है, इहदे च की है, काम दी शराब और क्रोध कटोरा बनया है, क्योंकि क्रोध ते मुंह दे राही ज्यादा प्रगट आउंदा है, भावें क्रोध अखां च भी प्रगट आउंदा है, भावें क्रोध हत्थां च भी प्रगट आउंदा है, भावें क्रोध चेहरे ते भी प्रगट आउंदा है, पर क्रोध दी अस्थूल क्रिया बहुती जबान तो प्रगट आउंदी है। और जब जबान चो क्रोध निकलन लग पवे तो जबान सख्त आउंदी है। कहिंदे ने जबान दी सख्ती परमात्मा नूं पसंद नहीं, खुदा को न मंजूर थी सख्ती जुबान में, इसीलिए न हड्डी रखी जुबान में। जबान दे च उसने हड्डी नहीं रखी, सख्ती नहीं चाहिए जबान दे, और जो जबान दे सख्ती ले आया है समझ लो जबान दे हड्डी आ गई है, इदे हलक दे हड्डी आ गई है, इसकी जबान सख्त हो गई है। घरेलू बहुते कलेश जबान दी सख्ती तो पैदा होते हैं, बहुत सारे संघर्ष ते लड़ाइयां दा कारण मनुख दियां अखां नहीं ने, मनुख दे कन नहीं ने, मनुख दी नासका नहीं है, मनुख दे हाथ पैर भी नहीं, मनुख दी जबान है। अगर कल कलेश दा मूल केंद्र लभांगे किस कारण करके होया है तो जबान ही मिलेगी। क्रोध कटोरी मोह भरी पिलावा अहंकार, पिलावा कौन है, साकी कौन है, अहंकार पेश करने वाला, अहंकार मैं हां। जितना अहंकारी मनुख होवेगा उतना क्रोधी होवेगा, जितना अहंकारी मनुख होवेगा उतना ही कामी होवेगा। ताई ये दोवां दा कट्ठा जिक्र किया मेरे पातशाह दी बाणी ने, काम क्रोध काया को गाले ज्यों कंचन सोहागा डाले। जिवें सोने नूं सुहागा डाल के रख देंदा है, काम ते क्रोध मनुख दी काया नूं गाल के रख देंदा है। काया दे बहुत सारे क्रोध, काया दे बहुत सारे रोगां दा मूल कारण असीम क्रोध असीम काम। अगर काम सीमा दे चाहे ते क्रोध खत्म हो गया, इस मनुख दी काया कंचन वर्गी हो सकती है, कंचन वर्गी काया। जे प्रसाद अरोग कंचन देही लिव लावो तिस राम स्नेही। सोना की सोना होवेगा काया ही सोना है, काया ही कंचन है, पर काया नू कंचन बनाना किसे किसे नू आंदा है, काया नू लोहा बना के और जंगाल ला देना इस सब नू आंदा है। और गुरु नानक ने इसका बड़ा जिक्र किया, कल कल वाली काम मद मनवा पीवन हार, क्रोध कटोरी मोह भरी पिलावा अहंकार। मजलिस भी चाहिए है, शराब कली के में पी है, कोई महफिल कोई साथी, यही कारण है शराबी साथी लभ देना है, साथ लभ देना है। तो मजलिस वास्तविक केड़ी है, महाराज कहते मजलस कूड़े लब दी पी पी होए खुआर, झूठे लोभ दी महफिल।
جھوٹ کیوں کہہ دیتا؟ لوبھی جھوٹا ہی ہوندا ہے. جھوٹ کیوں کہہ دیتا؟ جیون سیما وچ ہے، لوب اسیم ہے. کتنا جیوے گا؟ 100 سال. چلو 150 سال تک جی رہے گا. جیون دی سیما ہے، منک دے لوب دی سیما نہیں ہے. اج تک کسی بھی پیمانے نال منک دا لوب ناپیا نہیں گیا. یہ گل وکھری ہے. ہمالیہ دی بلندی ناپ لئی گئی ہے، پرشانت مہا ساگر دی گہرائی ناپ لئی گئی ہے، سورج چند تاریاں دی بلندی ناپ لئی گئی ہے. یہ لوب کتھے ختم ہوندا ہے؟ سیما اجے بھی پکڑ چ نہیں آئی. کتھے ختم ہوئے گا؟ کتھے گل مکے گی؟ یہ تے سیس کھٹے لکھ کو اٹھ دھاوے، ترپت نہ آوے مایا پاچھے پاوے. کہندے نے ایک راجے نے ایک بھکشو نو، بودھ بھکشو نو بینتی کی تھی، بڑا آنند دکھائی دیندا ہے تھوڑے کول، بڑا سرور، بڑا رس، ساڈی جھولی چ بھی پاؤ. یہ بھکشو کہن لگا، اچھا میں کل جد تھوڑے دوار تے بھکشا منگن آواں گا تو کچھ بھکشا میں تھوڑی جھولی چ بھی پا دیاں گا. تسی پدارت میرے پاتر وچ پانا، پرماتما دی کچھ گلاں میں تھوڑے پاتر وچ پاؤن دی کوشش کراں گا. اور اکثر سنت تے سنساری پدارت تے پرماتما دا وٹا سٹا کر دے ہی رہے نے. او پدارت چولی چ پا دین دے رہے نے، او پرماتما دی گل سنا دین دا رہے. آد کال تو ایسا چلدا رہے. راجا خوش ہویا اور کہن لگا، اے بھکشو پھر کل سب تو پہلے ساڈے گھر ہی آنا، اتھے ہی آنا، اسی بھکشا لے کے کھڑے ہواں گے. اکثر بودھ بھکشواں نو بھکشا دین لئی بھکشا داتے باہر کھڑے ہوندے نے اور دیندے نے. جتھے جتھے بودھ دھرم ہے یہ درش بہت دیکھن نو ملدے نے. راجا بھکشا لے کے پکے ہوئے پکوان طرح طرح دے باہر لے کے کھڑا ہے. بھکشو پاتر لے آیا اور آکھیا، راجن پاؤ. وہ کھیر پائی، راجے نے تھلے ڈل گئی. بھکشو نے کیا، ہور پدارت پاؤ. راجے نے سوچا شاید کوئی کراماتی گل ہوئے، پاتر آپے ٹھیک ہو جائے. تو پھر حلوہ پایا، پوڑیاں پائیاں، تھلے ڈگ گئیاں. اور پدارت پاؤ، طرح طرح دے بنے ہوئے اور پکوان اس پاتر دے پائے. پکوان تھلے بکھر دے گئے، گر دے گئے. بھکشو دا پاتر اگے ہے. راجا کہندا ہے، اے بھکشو تسی بھکشا منگن تے آ گئے اور راج دوار تے آئے، پر کم سے کم اپنا بھکشا پاتر تے ویکھ لیندے. یہ تے ٹوٹیا ہویا ہے، یہ دا تھلے پیندا ہی نہیں ہے. راجن پھر میں یہی گل تینوں آکھاں، تو رب دی گل میتھوں سننا چاہنا ہے، پرماتما دا گیان میتھوں لینا چاہنا ہے، تینوں اپنا چھلنی من نہیں دکھائی دیندا. تیرے دتے ہوئے پدارت میرے پاتر تو ڈل گئے، میرا دتا ہویا پرماتما دا گیان بھی تیرے پاتر تو ڈل جائے گا. پہلے اپنا پاتر ٹھیک کر، بھکشا مل جائے گی. پہلے اپنا من ٹھیک کر، بھگوان مل جائے گا. مجلس کوڑے لب دی، پی پی ہوئے خوار. اس شراب نو پی پی کے دنیا خوار ہو رہی ہے اور اپنا جیون اجائیں گوا رہی ہے. لیکن شراب نال کباب جڑے ہویا ہے، اور اکثر جد شراب دی گل چلے شراب و کباب، کباب دی گل چلے شراب و کباب، کباب و شراب، شراب کباب کھاندے ہو. حالانکہ ایک پینے والا ہے، ایک کھان والا ہے، پر شراب نال کباب جڑ گیا.
धन गुरु नानक देव जी महाराज कहिंदे ने कबाब खाने ने, तो जिस ढंग नाल मैं तेनू जबा करन नू दसदा, बकरे नू इस ढंग नाल जबा कर। और जब तू उस छुरे नाल जबा करेगा और मेरे दसे ढंग दे मुताबिक करेगा, तो जब उस बकरे च खून निकल जाएगा, जान निकल जाएगी, वो जड़ा मांस होवेगा जे किधरे तू खा लवे, कदी जिंदगी तेनू भुखी नहीं लगेगी। हर वक्त रजिया रहेगा, हर वक्त त्रिपत रहेगा। तो जे हुण पुछिए बाबा किड़ा छुराया, गुरु नानक दे बोल बड़े कीमती, सच की काती सच सबसार, छुरा होवे सच दा। सच नू छुरा क्यों कह दिता? सच ऐसा छुरा है कि दो धारा खंडा है और दो नोका खंडा है। सच बोलांगे दूजे नू भी चुभदा है, अपने नू भी चुभदा है। ये दूजे नू भी घायल करेगा, अपने नू भी करेगा। इस वास्ते सच बोलना कठिन है, कठिन है। ये दूजे नू चुभेगा पर अपने नू भी चुभेगा, और जद चुभेगा कटेगा, तो छुरे दा एक कम है, जद किसे दी गर्दन कटे, किसे दे अंग नू कटे, किसे नू चुभे, तो खून ते निकलेगा। अगर सच दे छुरे नाल जबा करिए और सच दा छुरा ए चुभे दो धारा, तो झूठ ते निकलेगा। झूठ दा ही खून मनुख दे अंदर है, खून नहीं है, झूठ है मनुख दे अंदर। बाहर दे छुरे नाल शरीर चो खून निकलदा है, सच दे छुरे नाल कोई जबा होवे अंदरों झूठ निकलदा है। सच की काती सच सब सार, घाड़ तिसकी अपर अपार। ये जो सच दा छुरा है, इदा लोहा सच है, इसकी जो धारा है घाड़त है वो भी सच है। किसका कुठा होवे सेख, लहू लब निकथा वेख। अगर इस छुरे नाल जे किधरे कुठा करें, दो तरीके ने, कुठा झटका। एक झटके नाल गर्दन अलग की थी, झटका आहिस्ता आहिस्ता रेत के गर्दन अलग की थी, इनू कुठा कहंदे ने, कोहना आहिस्ता आहिस्ता। जे तू इस ढंग नाल आहिस्ता आहिस्ता कोवे, सच नू सहजे उचारण करना पैंदा है। और सच की है परमात्मा दा नाम, ये पहले जबान ते आवे तो जबान दे चों हड्डी निकलेगी, जबान दे चों सख्ती निकलेगी। ये हो नहीं सकदा, जिस जबान ते राम है उस जबान दे सख्ती होए, जिस जबान ते वाहिगुरु है उस जबान ते क्रोध होवे, ये हो ही नहीं सकदा। जहर इस गल दा सबूत है, अजे जबान ने अमृत दा रस नहीं माने। सख्ती इस गल दा सबूत है, ये जबान जबान नहीं रह गई, क्योंकि जबान दे हड्डी नहीं आउंदी, जबान दे सख्ती नहीं आउंदी। जबान दे हड्डी आ गई है, ये मांस दा टुकड़ा ते बन के रह गई, जबान नहीं है। किसका कुठा होवे सेख, लहू लब निखत्था वेख। परमात्मा दे नाम नु छुरा कह देता है गुरु नानक ने, ऐसा छुरा है को के रख देगा। छुरे ने कोना है तो निकलेगा की, निकलेगा काम, निकलेगा लोभ। एक कसाई छुरा फेरदा बकरे थे, निकलदा खून। बाद देच आंदरा ओजरी कड़ के परे सुटदा, पर सच दे छुरे नाल जद किसे दा मन जबा आउंदा है, लोभ निकल जांदा है, वासना निकल जांदी है।
ਸ਼ੁੱਧ ਮਾਸ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ੁੱਧ ਮਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਨ ਪਾਵਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੱਚ ਕੀ ਕਾਥੀ ਸੱਚ ਸਭ ਸਾਰ, ਗਾੜਤ ਤਿਸਕੀ ਅਪਰ ਅਪਾਰ, ਤਿਸਕਾ ਕੁੱਠਾ ਹੋਵੇ ਸੇਖ, ਲਹੂ ਲਬ ਨਿਖੱਤਾ ਵੇਖ। ਐ ਸ਼ੇਖ, ਜੇ ਇਸ ਛੁਰੇ ਦਾ ਕਿਧਰੇ ਤੂੰ ਜ਼ਬਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਮਾਸ ਖਾ ਲਵੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਈਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਖਾ ਮਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾ, ਪੀ ਸ਼ਰਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਪੀ, ਪਰ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਬ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਨਾਮ ਖੁਮਾਰੀ ਨਾਨਕਾ ਚੜੀ ਰਹੇ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਨਾਮ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ। ਤੋ ਨਾਮ ਸ਼ਰਾਬ ਹੈ, ਹਾਂ ਨਾਮ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਹੈ, ਔਰ ਐਸਾ ਸਰੂਰ ਤਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਹਰ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਜਿਤਨੇ ਜਿਤਨੇ ਘੁੱਟ ਅੰਦਰ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਹੀ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ, ਵਿਕਾਰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼ਰਾਬੀ ਕਾਮੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਸ਼ਰਾਬੀ ਕ੍ਰੋਧੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਸ਼ਰਾਬੀ ਭੋਗੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਾਰਾ ਅਨਰਥ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਬੇਸ਼ਤਰ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੁਰਾਚਾਰ ਆਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲੋ ਦੁਰਾਚਾਰ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੀ ਦੁਰਾਚਾਰ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਏ। ਵਿਕਦੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨਸਾਂ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ, ਕੱਪੜਾ ਵਿਕਦਾ ਸੀ, ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਵਿਕਦਾ ਸੀ, ਫਲ ਫੁੱਲ ਵਿਕਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅੱਜ ਮਾਮੂਲੀ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਅਸਮਤ ਵਿਕਦੀ ਹੈ, ਇੱਜ਼ਤ ਵਿਕਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਨਾਮ ਮਾਤਰ ਕਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਲੱਬ, ਇਹ ਥੀਏਟਰ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਯਾਸ਼ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ, ਵੈਸ਼ਿਆਲੇ, ਸਭ ਅਸਮਤ ਫਿਰੋਸ਼ੀ ਦੇ ਅੱਡੇ। ਵਿਕਦੀ ਹੈ ਅਸਮਤ ਇਸਤਰੀ ਦੀ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦੁਰਾਚਾਰ ਵਿਕਦਾ ਹੈ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵਸਤੂਆਂ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਨਾਮ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਲਵੇ, ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇਗੀ? ਗੁੜ ਕਰ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਰ ਮਊਆ, ਭਾਉ ਭਾਟੀ ਤਨ ਧਾਰਾ, ਰੱਬੀ ਭੈ ਦੀ ਭੱਠੀ ਬਣਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਰੱਬੀ ਗਿਆਨ ਦਾ ਗੁੜ ਪਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਰੱਬੀ ਧਿਆਨ ਦਾ ਮਊਆ ਪਾ, ਮਊਆ ਇੱਕ ਫੁੱਲ, ਤੇ ਭੈ ਦੀ ਭੱਠੀ, ਮਨੁੱਖ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਡਰਦਾ, ਮਨੁੱਖ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਡਰਦਾ, ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ। ਸੰਕੋਚਮਈ ਬਿਰਤੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਭੈ, ਸਮਾਜ ਦਾ ਭੈ, ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਹੀਂ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੁਨਾਹ ਕਰਾਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਾਪ ਕਰਾਂ। ਹੈ ਤੇ ਪਾਪੀ, ਪਰ ਪਾਪ ਉੱਥੇ ਕਰੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ। ਹੈ ਤੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ, ਪਰ ਗੁਨਾਹ ਉੱਥੇ ਕਰੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਰੱਬ ਦਾ ਭੈ ਅਗਰ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਨਾਹ ਹੋਵੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਾਪ ਹੋਵੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਰੱਬੀ ਭੈ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਭੈ ਦੀ ਤੂੰ ਭੱਠੀ ਬਣਾ, ਇਹਦੇ ਚ ਪਾ ਗਿਆਨ ਦਾ ਗੁੜ, ਇਹਦੇ ਚ ਪਾ ਧਿਆਨ ਦਾ ਮਊਆ। ਅੱਗ ਕਿਹੜੀ ਇਸ ਭੱਠੀ ਦੇ ਤੱਲੇ ਬਾਲਣੀ ਹੈ? ਦੋ ਪੁਰ ਜੋਰ ਰਸਾਈ ਪਾਠੀ, ਪੀਓ ਮਹਾਰਸ ਭਾਰੀ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਦੋਇ ਕੀਏ ਜਲੇਤਾ, ਛੂਟ ਗਈ ਸੰਸਾਰੀ। ਦੋ ਪੁਰ ਜੋੜ, ਸੁਰਤ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਜੋੜ, ਇਹ ਦੋ ਪੁੜਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਬਣਾ ਚੁੱਲਾ, ਦੋ ਪੁੜਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਚੁੱਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸੁਰਤ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰੇ, ਬਣਾ ਚੁੱਲਾ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਭੈ ਦੀ ਭੱਠੀ, ਪਾ ਗਿਆਨ ਦਾ ਗੁੜ, ਧਿਆਨ ਦਾ ਮਊਆ। ਥੱਲੇ ਬਾਲਣ ਕਿਹੜਾ ਡਾਣਾ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਦੋਏ ਕੀਏ ਜਲੇਤਾ, ਛੂਟ ਗਈ ਸੰਸਾਰੀ। ਕਾਮ ਦਾ ਈਂਧਨ, ਕ੍ਰੋਧ ਦਾ ਈਂਧਨ, ਇਹ ਥੱਲੇ ਬਾਲ,
जैसे जैसे तू ज्ञान दा गुड़ पांदा जाएगा, ध्यान दा महुआ पांदा जाएगा, और जैसे जैसे ते तू सिर ते शब्द नो इक करदा जाएगा, काम सड़दा जाएगा, क्रोध सड़दा जाएगा, आखिर ईंधन ही ते जलदा है। तो काम ईंधन है, जलेगा, क्रोध ईंधन है, जलेगा। काम क्रोध करके जिंदगी चल दिए, ईंधन करके जिंदगी चल दिए, अग करके ये अग खत्म होवेगी, क्योंकि ईंधन उतने चिर तक ईंधन है जो कारामद होवे। ईंधन उदो बर्बादी बन जाता है जब अग मकान नू लग जाए, दुकान नू लग जाए, साड़ के राख कर देवे। काम क्रोध दो किए जले ता, छूट गई संसारी, सड़ गया क्रोध, सड़ गया काम। वो जो ज्ञान दा गुड़ सी, वो जो ध्यान दा महुआ सी, वो ऐसा पकया, उदे चो निकली शराब नाम दी, उदे चो निकली शराब प्रभु दे सिमरन दी। तो पुछिए कबीर, ये शराब बनानी किस तो सीखी, कौन सिखांदा है? इस तरह दे शब्द धन गुरु नानक देव जी महाराज, गुरु अर्जन देव जी महाराज ते भगत कबीर दे, गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे बहुत सारे ने। प्रगट प्रगास ज्ञान गुर गम्मत, सतगुर ते सुद पाई, दास कबीर तास मद माता, उचक न कब हो जाई। ए समझ गुरु तो लई है, और जिस दिन दी ये शराब पीती है, और बाकी शराब पीण नू जी नहीं करदा, राम दा रस आउंदिया ही काम दा रस मिट जांदा है, राम दा रस आउंदिया ही क्रोध खत्म हो जांदा है, राम दा रस आउंदिया रोम रोम दे चों लोभ निकल जांदा है, जीवन अमृतमयी हो जांदा है। और जिंदगी जद अमृतमयी हो गई है तो पहचान के बोल अमृतमयी हो जांदे ने, दृष्टि अमृतमयी हो जांदी है, जहरीले बोल दसदे ने जीवन जहर है। ये फिक्की दृष्टि दसती है, ये जहरीली निगाहां दसदियां ने जिंदगी जहर है। जहर नू अमृत बनाण दी जाच जे आ जाए भगत है, पर जे अमृत नू जहर बनाई जा रहे है तो फिर ये संसारी है, मूड है, नादान है। कुदरत ने एक ऐसा नियम बनाया है, अमृत जहर बन सकती है और जहर भी अमृत बन सकता है। शायद इसे वास्ते डॉक्टर मोहम्मद इकबाल ने कह देता, जो जहर हला हल है, जो जहर हला हल है वही अमृत है नादां, मालूम नहीं तुझको अंदाज है पीने के। जे किधरे तेनु पीण दा ढंग आ जाए तो काम रस भी राम रस हो सकता है, ते जे तेनु पीण दा ढंग नहीं आया तो राम रस भी काम रस दे बदल सकता है, जहर भी अमृत हो सकती है, अमृत भी जहर हो सकता है अगर तेनू पीण दा ढंग नहीं आया। संखिया जहर है पर हकीम मार के उसनू कुश्ता बना देंदा है। अमृत अंगूरां दा रस अमृत है, गन्ने दा रस अमृत है, पर एक कलाल तरका के उसनू शराब बना देंदा है, कौड़ा बना देंदा है। मिठे नू कौड़ा कीता जा सकदा है, कौड़े नू मिठा कीता जा सकदा है, अमृत नू जहर बनाया जा सकदा है, जहर नू अमृत बनाया जा सकदा है। जिसने जहर नू अमृत बना लिया संत, और जिन्हें अमृत नू जहर बना लिया दुष्ट संसारी। तो ये दो तरह की जिंदगी मिलती है जगत दे, जहरमई अमृतमई। पर अमृत बहुत थोड़ा, बहुत थोड़ा, बहुत ज्यादा विरले ने जिन्हां ने संखिए दा कुश्ता बनाया होवे, बहुते ने जिन्हां ने अंगूर दी शराब बना ली, संतरे दी शराब बना ली, मिठे गन्ने दे रस दी शराब बना ली, थोड़े ने जिन्हां ने जिंदगी नूं मिठास नाल भर दिता, बहुते ने जिन्हां ने कुड़त्तन दे नाल अपने जीवन नूं गर्क कर लिया, बहुत कौड़ा कर लिया, बहुत कौड़ा कर लिया। तो धन गुरु नानक देव जी महाराज कहिंदे ने, युग दे प्रभाव तो बचण वास्ते, क्योंकि युग ते कलाल है, शराब सजा के बैठा है, तो युग दे प्रभाव तो बचण लई ए पुरख तू सत्संग कर, सत दी विचार कर,
ਸਤ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਯੁੱਗ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਤੂੰ ਬਚ ਸਕੇ, ਇਸ ਕਲਾਲੀ ਤੋਂ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਛਿੜ ਸਕੇ, ਔਰ ਤੂੰ ਉਹ ਰਸ ਪੀਵੇਂ ਕਿ ਜਗਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਸ ਫਿੱਕੇ ਪੈ ਜਾਣ, ਵਿਅਰਥ ਹੋ ਜਾਣ। ਔਰ ਇਸੇ ਪ੍ਰਥਾਈ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਪੰਕਤੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਿਖੇ ਬਨ ਫੀਕਾ ਤਿਆਗ ਰੀਰ ਸਖੀਏ ਨਾਮ ਮਹਾਰਸ ਪੀਓ। ਇਹ ਕੀ ਜ਼ਹਿਰ ਤੂੰ ਪੀ ਰਹੀ ਹੈ? ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀ। ਨਾਮ ਰਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਖੂਬੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਪੀਂਦਿਆਂ ਹੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਹਿਰ ਸਰੀਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਫਿੱਕੇ ਰਸ ਸਰੀਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਬਣਾਵੇ।

वासना पदार्थ ही मंगती है, काम वासना रूप मंगती है, केड़ा रूप मंगती है, केड़े पदार्थ मंगती है, केड़ी प्रभुता मंगती है, जो कोल नहीं है, नहीं है, जो है उनु वासना देखती ही नहीं, देखती नहीं। इस संबंध च एक होर नुक्ता सुन लो। जद मनुख जमीन नु वेखे इंज झुके आसमान नहीं वेख सकता, ते जद इंज आसमान नु वेखे तो फिर जमीन नहीं वेख सकता। एको ही समय जमीन ते आसमान दोवें नहीं देख सकेगा, नहीं देख सकेगा। दूसरा उदाहरण, जद झुक के किसी के पैरों नु वेखिए गौर नाल उदा मुखड़ा नहीं वेख सकांगे, उदे मुखड़े नु देखिए सीधा तो फिर उदे चरण नहीं देख सकांगे, है ना। एक इक्को ही समय इक्को ही नजर दे च उदे पैर भी दिखाई देन उदा मुखड़ा भी दिखाई देवे नहीं। कुदरत ने यह तौफीक अखा नु दित्ती नहीं, नहीं दित्ती। या झुक के जमीन वेख ले या सिर उच्चा करके आसमान वेख ले, या नजरां किसे दे पैरां ते टिका दे या नजरां किसे दे मुखड़े ते टिका दे, तो तजर्बा करके वेख लेना, दोवें कट्ठे नहीं वेख सकोगे। मुखड़ा ते चरण, आसमान ते जमीन, जो जमीन नु वेखोगे आसमान नहीं दिखाई दे। जितने चिर तक वासना पदार्थ दी चल रही है उतने चिर तक परमात्मा भी एक वासना का विषय होगा। परमात्मा परमात्मा नहीं है, नहीं है, और हृदय की शुद्धि भी नहीं होगी अगर वासना करके मैं पाठ कर रहा, वासना करके मैं दान कर रहा, वासना करके मैं पुण्य कर रहा। इस पुण्य नाल हिरदा पावन भी नहीं होवेगा, पवित्र नहीं होवेगा, क्योंकि वासना। इस पुण नाल हिरदा प्रभु नाल जुड़ेगा ही नहीं, कारण वासना ते उदा केंद्र हंकार है, लोभ है, काम है। मैं फिर दोहरावा, अहंकार आश्रित, लोभ आश्रित, काम आश्रित मनुख दे अंदर वासना चलती है। हंकार आशत चलती है फिर वो केंद्र बदल लेंदी है, कुर्सी बदल लेंदी है, फिर लोभ आशत चलन लग पैंदी है, फिर वो सिंघासन बस बदल लेंदी है, काम आशत चलन लग। कामना मनुख दे अंदर हर वक्त है, वासना हर वक्त है। अहंकार वासना, लोभ वासना, काम वासना, ये वासना जो है उन्हू नहीं देखते, जो नहीं है उन्हू देखते, जिड़ी कुर्सी है उन्हू नहीं देखती, उत्ते ते बैठे ही है, जिड़ी नहीं है उन्हू देखती है। जिड़ा पदार्थ है उन्हू नहीं देखती, उत्ते जेब दे च है, जो नहीं है उन्हू देखती। ये वासना का स्वभाव है। इसनों इस ढंग नाल मैं बयान करदा हुंदा, जद नजरां किसे दे पैरां नूं वेखन ते मुखड़ा नहीं देख सकदी, ते जे मुखड़े नूं देखन ते पैर नहीं देख सकदी, जे नजरां जमीन नूं वेखन ते आसमान नहीं वेख सकदी, ते जे नजरां आसमान नूं वेखन फिर जमीन नहीं वेख सकदी। इक्को ही समय दोहां नाल संबंध नहीं जुड़ता। अंदर वासना भी रख लईए ते आखिए धार्मिक, वासना ग्रसया मनुख अधार्मिक है, चाहे कुछ भी करे, कुछ भी करे। मैं अर्ज कर दिया, मजबूरी है ये, ठीक है। संगत देच एक क्लास दे सत्संगी नहीं आते, जिवें एक सकूल है, हुण सकूल तो एको ही है,
ਉਹਦੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ।

सन्मान योग गुरु रूप साध संग जीओ फतेह प्रवान करनी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धर्म दे अनंत पहलू ने अनंत रूप ने और हर पहलू दी अपनी अपनी विचार है। धर्म दी दुनिया विच

शुरू हुई और मां जान के बंदगी परिक्रमा इबादत ये सब कुछ अर्चा बंधन चल पिया। एक तबके ने इस ढंग नाल परमात्मा नु मने। अगाह चलिए सूफी संत जड़े ने परिपूर्ण परमात्मा नाल जो रिश्ता स्थापन करदे ने ओ है महबूब ते महबूबा दा। इस वास्ते सबे मुसलमान सूफी कलाम नु पसंद नहीं करदे। मुतसबी मुसलमाना ने ते सूफिया नु किसे हद तक कतल भी कीता। औरंगजेब ने सरमद नु कतल कीता। मुल्तान दे मुस्लिम हुक्मरान ने शमस तबरेज दी पुठी खल लवा दिती। करीबन करीबन जितने भी सूफी पैदा होए मुतसबी मुसलमाना दे मार दी शिकार होंदे रहे। जैसे कि सरमद दी कबर असी जामा मस्जिद दे कोल वेखदे आं, इस नु औरंगजेब ने कतल कर दिता सी। एक खुले ख्यालां दा मालिक सूफी कलाम दे अंदर जो रिश्ता परमात्मा दा मिलदा है ओ है महबूब ते महबूबा दा। किसे थां ओ परमात्मा नु महबूब बनांदे ने खुद महबूबा बनदे ने, किसे थां परमात्मा नु महबूबा समझदे ने खुद महबूब बनदे ने। इस रिश्ते दे आले दुआले उन्हां दी बंदगी उन्हां दी इबादत घूमदी है। थोड़ा जिहा होर अगां चलिए कुछ होर भी संबंध मिलदे ने। भगत कबीर जी महाराज ने परिपूर्ण परमात्मा नाल जो संबंध जोड़े है ओ है ए कि मैं दास हां तू मालिक है। भगत लोग जिन्ने भी होए ने साडे देश दे च करीबन करीबन अपने आप नू दास कहिंदे रहे ने, परमात्मा नू मालिक कहिंदे रहे ने। असी तेरे जर खरीद गुलाम हां। कहो कबीर गुलाम घर का जीवाए पावे मार। जितने भी भगत होए ने सब अपने आप नू गुलाम आखदे रहे ने, दास आखदे रहे ने, तू मालिक है असी तेरे गुलाम। गरज के इना रिश्तियां दे आले दुआले परिपूर्ण परमात्मा दा संबंध चलदा रहे। कुछ ऐसे भी भगत होए जिन्होंने कह दिता तू राजा है असी तेरी परजा। हे परमात्मा तू राजा है। राजा जान के उसकी पूजा होई और निष्कलंक राजा करके आख्या तू निष्कलंक राजा है, तेरे ते कोई कलंक नहीं। तू राजा है असी तेरी रईयत हां असी तेरी परजा हां। तो बंदगी करदे ने इबादत करदे ने इस ढंग नाल जैसे कोई परजा राजा दे अगों सजदा कर रही होवे बंदगी कर रही होवे। कुछ ऐसे भी महापुरुष होए ने जिन्होंने रिश्ता जोड़िया बई तू गुरु है असी तेरे शिष्य। तू गुरु है समग्र संसार नू चानना देन वाला है प्रकाश देन वाला है असी तेरे शिष्य। तो शिष्य जान के ते उनू गुरु समझ के ए संबंध जोड़िया गया बंदगी द्वारा प्रस्तिश द्वारा। कुछ ऐसे भी ने जिन्हां ने संबंध जोड़िया उस परिपूर्ण परमात्मा दे नाल मित्रता दा। तू भाई साडा मित्र है तू साडा दोस्त है। वख-वख रिश्तियां दे ते समुचे संसार दे च वख-वख मजहब ते संप्रदावां मौजूद ने। जैसे कि मैं अर्ज कर चुके हां कि इस्लाम ते ईसाईयत दा रिश्ता प्यो पुत्र दे रिश्ते ते खड़ा है। सनातन मत दे एक धड़े दा परमात्मा नाल रिश्ता मां ते पुत्र दा रिश्ता है। सूफियां दा रिश्ता महबूब ते महबूबा दा रिश्ता है। और भगतां दा जो बहुत तादाद दे साडे देश दे च पैदा होए दास ते मालिक दा रिश्ता है। तू मालिक है असी तेरे गुलाम हां असी तेरे दास। इन्हां दे चों मीरां भी है जो थां थां ते अपने आप नू दासी कहिंदी है गुलाम कहिंदी है। तू मालिक है माने चाकर राखो जी। ए गीत मीरां दा बड़ा प्रचलित है। हे प्रभु मैनू चाकर रख ले गुलाम रख ले दास रख ले। तू मालिक है मैं तेरी चाकर हूं। गरज के समुच्चा भक्ति जीवन दास ते मालिक दे रिश्ते दे आले दुआले घूमदा। कुछ ऐसे भी ने जो कहिंदे तू साडा मित्र है। चीन दा प्रसिद्ध संत लाओत्से

0: খোড়ে পাখর সোয়নে সাখতে বুঝন তেরি বাট তরকস তীর কমান সাঙ্গ তেগ বন্দ গুণ ধাত वाजा नेजा पतसों परगट करम तेरा मेरी जात बाबा और चढ़ना खुशी खुआर जित चढ़िए तन पीड़िए मन में चले विकार। एक ऐसा पावन पवित्र गुरु नानक देव जी महाराज का महावाक है जिस विच जीवन नू बुलंदियां ते किवें लै जाइए और जीवन दे विचकार रुकावटां केड़ियां केड़ियां ने इहदी पूर्ण तौर ते सूझ समझ वक्त दे अवतारी पुरुष धन गुरु नानक देव जी महाराज ने कराई है। इतनी गल ते स्पष्ट है प्रथम शरीर है फिर मन है फिर आत्मा है। सारे दा सारा पशु जगत शरीरक तल ते जी रहा है लोड़ां दे तल ते जी रहा है पर मनुख लोड़ां दे नाल नाल शरीर दे नाल नाल मानसिक तल ते जी रहा है ते मन दियां अपनियां कुछ कामनावां ने मन दियां अपनियां कुछ इच्छावां ने और इना कामनावां ने बहुत वड्डे पसारे नू जन्म दिता है। इतना जीवन वड्डा ने जितना पसारा वड्डा हो जांदा है और इस नाल मानसिक तनाव वध जांदा है। इस वास्ते मनुख सिर्फ शरीरक तल ते ही रोगी नहीं मानसिक तल ते रोगी है। शरीरक तल ते ते शायद कोई कोई रोगी होवे पर मानसिक तल ते ते सतगुरु कहिंदे ने जो जो दिसे सो सो रोगी रोग रहत मेरा सतगुरु जोगी। तो प्रथम शरीर दे तल ते मनुख सावधान होवे सतगुरदेव जी महाराज खान पीण दा संजम दसते ने और साफ कहंदे ने बाबा होर खाना खुशी खुआर जित खा दे तन पीड़िए मन में चले विकार। ओ खाना जो वक्ती तौर ते खुशी देवे ते बाद विच विकार पैदा करे ओ खाना जो वक्ती तौर ते रस देवे पर बाद विच बेरसी नू पैदा कर देवे और शरीर नू रोगी कर देवे सतगुरु उस तों जो है वर्जदे ने। एह गल वखरी है कि शरीर अलग अलग ने। कोई वाई प्रधान शरीर है कोई कफ प्रधान शरीर है और कोई पित्त प्रधान। अपने शरीरक सुभाव नू वेख के खाणियां प्रति जो सुचेत हो जांदा है उस शरीरक पीड़ा तो बच जांदा है मानसिक विकार तो बच जांदा है। और जैसे शरीर दे खाण पीण दा मसला हल होवे एकदम पहनण दी दुनिया आरंभ हो जांदी है पर पहनना सिर्फ प्रदर्शनी वास्ते होवे पहनना सिर्फ नुमाइश होवे पहनना अपनी बिरती नू भी बार मुखी करे ते दूजियां दी बिरती नू भी अपनी तरफ खिंचे ऐसा पहनना भी मानसिक विकारां नू जन्म देंदा है। तो सतगुरु उस तों भी सानू वरजदे ने बाबा होर पहनन खुशी खुआर जित पै दे तन पीड़िए मन में चले विकार। अगां चल के मेरे पातशाह मन दी उस अवस्था दा जिक्र करदे ने जद तन तो मनुख निश्चिंत हो जाए ते मन बड़े पुरजोर ढंग नाल मंग करन लग पैंदा है। और एही एक ऐसा शब्द है जिस दे चार रहाव ने चार ठहराव ने। ए अपनी तरह दा इंज कह लो एक महान शब्द है जिस दे एक नहीं दो नहीं तीन नहीं चार रहाव ने। चार रहावां देच भाव चार भाव सतगुरां ने साडे सामने रखे ने प्रथम शरीर और शरीर दे खान पीन दा मसला हल होवे तो फिर पहनना, और पहनना भी ऐसा हो जाए कि अपने आप नू नुमाइश करन दा चाव पैदा होवे ते दूजियां दी बिरकती नू भड़कान दा मसला खड़ा होवे, साहिब कहिंदे नहीं, ए भी खुआरियां नू जन्म देंदा है। खान पीन पहनन दे मसले तो जैसे मनुख निश्चिंत होंदा है तो फिर मन दी दुनिया सामने आउंदी है। कहिंदे ने पशु सुखी ने क्योंकि अक्सर प्रकृति उन्हां दीयां शरीरक लोड़ां दी पूर्ति कर देंदी है, पर ए जो मन है मनुख दा ए ऐसा है कि शरीरक लोड़ां दी पूर्ति हो जाए और जितनी ज्यादा हो जाए ए उतना ही भयंकर रूप विच मंग करन लग पैंदा है। इत्थे मनुखी मन ने बड़े भुलेखे खादे ने और मनुख ने बड़े संपन्न तरह दे मनोरंजन दे साधना नू जन्म दिता है। जिहड़े जिहड़े देश जितने अमीर ने, जिहड़े जिहड़े घराने जितने ज्यादा संपन्न ने, देखे उत्थे मानसिक बेचैनी उतनी ज्यादा है। सतगुरु आप भी कहंदे ने कि वडे वडे जो दीसे लोग तिनको व्यापे चिंता रोग। महाराज कहंदे ने दुनिया दे तमाम वडे मनुखां ते निगाह मारनी। वडे मनुख कौन? जिन्हां कोल धन संपदा ज्यादा है। को ना वडा माया वड्याई, गुरबाणी दी व्याख्या गुरबाणी जो है कर दी है, ए मनुख वड्डा नहीं, ए वडपणा धन ते खड़ा है, ए वडपणा संपदा ते खड़ा है, ए वडपणा प्रभुता ते खड़ा है, सता ते खड़ा है। और जितनी ज्यादा धन संपदा है उतनी ज्यादा प्रभुता है, जितनी ज्यादा सता है उतनी ज्यादा प्रभुता है, और जितनी ज्यादा प्रभुता है महाराज कहने ने उतना ही वड्डा है, और जितना ज्यादा वड्डा है उतनी ही ज्यादा चिंता है। बड़े बड़े जो दीसे लोग तिनको व्यापे चिंता रोग। इसनू एक होर ढंग नाल भी धन गुरु नानक देव जी महाराज ने खोले है, जिस ग्रह बहुती तिस ग्रह चिंता, जिस ग्रह थोरी सो फिरे भरमंता। जिस को ले धन संपदा ज्यादा है उथे अधिक चिंता है, पर जिथे लोड़ जोगा भी नहीं उथे भटकना है, उथे मन विच भरम ने और उथे बहुत धावना है, उथे बहुत भटकना है। एक थां ते भटकना है और उस भटकन विच भुलना ने, इस वास्ते आम कह दिता है कि गुनाह गरीबी तो जन्म लेंदे ने। गरीबी मुफलसी गुनाहां दी जननी है, गुनाहां दी मां है। मजबूरियां मनुख नूं रसातल विच ले जांदियां, धरातल दे जहर ले जांदियां ने। इस वास्ते साहिब कहिंदे ने जिथे लोड़ां दी पूर्ति नहीं हो रही उथे ते भटकना है, और जिथे लोड़ां दी पूर्ति तो भी अधिक है उथे चिंता है, बड़ी भयंकर जो है चिंता है। जितने संपन्न देश ने उतने ज्यादा चिंता तुरने, और जितने संपन्न घराने ने उतने ज्यादा चिंता तुरने, और जितने ज्यादा चिंता तुरने उथे उतने ज्यादा मनोरंजन दे साधन मुहैया किते जांदे ने, उपलब्ध किते जांदे ने मनोरंजन। गरीब अजे जिस दियां तन दियां ही लोड़ां दी पूर्ति नहीं हुई, अजे तन दा ही मसला हल नहीं होया, अजे तन ते चीथड़ा नहीं है, अजे पेट दे च रोटी नहीं है, इनू मनोरंजन नहीं चाहिदे। शरीर सब तो अगे है, अजे शरीर दा मसला हल नहीं होया तो मन पिछे खड़ा है, मन नंबर दो ते खड़ा है। जिस वक्त भारत संपन्न सी और ईरानिया अफगानिया ने तुर्की लोगां ने इनू सोने दी चिड़िया आख्या, उस जमाने च इस देश दे घर घर दे संत पैदा हो रहे सन, देवते पैदा हो रहे सन, देवियां पैदा हो रही सन, धन संपदा बहुत सी, शरीर दा मसला हल हो गया सी, मन दे मसले नू परमात्मा दे नाम नाल हल कर रहे सन, प्रभु चिंतन नाल हल कर रहे सन। चाहे थे राजकुमार सिद्धार्थ होवे, चाहे महावीर होवन, आखिर राजघरानियां दे फरजंद सन, इन्हों ने भी अपने मानसिक मसले प्रभु चिंतन नाल हल की थे, आत्म अभ्यास नाल जो है हल की थे। करीबन करीबन इस देश दे राज घरानिया दे चों धर्म दी सुगंध फैली, धनाढ़ मनुख प्रभु दे मार्ग ते चले, और जब धनाढ़ चल पैन सताधारी चल पैन तो दूसरा वर्ग उन्हां दे पिछे चल पैंदा है, स्वभाविक है। अक्सर छोटा वड्डे दी नकल करता है, निर्धन धनवान दी रीस करता है। तो जो थोड़े जिया भी तलते पछड़े सन दरम्याने सन उन्होंने राजघरानिया दे ये जो राजकुमार सन इन्हों की नकल की थी, राजिया की नकल की थी, राजे जोगी बन रहे ने, राजकुमार संत बन रहे ने। तो इस देश दे ऐसी हवा चली घर घर दे देवी, घर घर दे देवता, गली गली दे संत, और अज तक वो पुरानी हवा दे कुछ झोंके मौजूद ने कि सारी दुनिया च अज भी कहंदे ने हिंदुस्तान एक धार्मिक देश है, हिंदुस्तान देवी देवतावां दा देश है, हिंदुस्तान गुरु पीर पैगंबरां दा देश है, जोगियां दा देश है, आत्म ज्ञानियां दा देश है। पर ए आत्म ज्ञानियां दा देश सी अज नहीं, ए ऋषि मुनियां दा घराना सी अज नहीं। संपन्न लोगां ने अपना पूरा समा अपनी पूरी शक्ति आत्म अभ्यास दे खर्च की थी, तो सहजे सहजे की होया धन दी फिक्र ना की थी, संपदा दी फिक्र ना की थी। संत पैदा होंदे गए, ऋषि मुनि पैदा होंदे गए, अवतार पीर पैगंबर पैदा होंदे गए, तो धन संपदा दी ते फिक्र ना की थी, मुफलसी भी पैदा होंदी गई, और मुफलसी चरम सीमा ते पहुंच गई। और अज असी देखदे आं कि हिंदुस्तान अज उन्हां देशां दी तरफ निगाह करदा है जिथे संपन्नता है, ते जिथे संपन्नता आ गई है वो आत्म अभ्यास लई हिंदुस्तान दे दरवाजे खटखटा रहे ने, वो योगियां दे आश्रम लभ रहे ने, वो आत्म अभ्यास दे केंद्र लभ रहे ने। संपन्न हो गया अमेरिका, योगी शब्द दी उत्थे महिमा वध गई है, योग दी महानता वध गई है, आत्म अभ्यास दी उमंग ते तरंग वध गई है, लेकिन धन संपदा दी तरंग ते उमंग हिंदुस्तान दे च वध गई है। अज धन दी खातर इस देश दे धर्म नू छोड़िया जा सकदा है, पर उस देश दे च ऐसा है कि धर्म दी खातर धन नू छोड़िया जा सकदा है। संपन्न घरानिया दे बच्चे हिपी बन गए, छोड़ गए सारे ऐशो आराम नू, हर तरह दे सुख नो, और उन्होंने बुलंद बांग कह दिता आत्मक चैन चाहिदी है, सुकून चाहिदा है, शांति चाहिदी है, प्रभु चाहिदा है, आत्म प्रकाश चाहिदा है। तो खैर जैसे जैसे शरीर दा मसला हल होवे मन बड़े भयंकर रूप दे सामने आउंदा है, और शरीर पहले इदा मसला पहले हल करना पैंदा है, और इदा मसला है खाना पीना पहनना। पर ए संजम दे च ना होवे तो खाना पीना भी तन नू रोगी कर देगा, मन नू विकारी कर देगा। ए पहनना अगर संजम दे च ना होवे, मर्यादा दे च ना होवे, तो ए भी तन नू रोगी कर देगा, मन नू विकारी कर देगा। और तन दियां सारियां लोड़ां पूरियां हो जान ते मन जद बड़े भयंकर रूप दे सामने आवे तो हुण इस मन दी वास्तविक लोड़ की है। करीबन करीबन दुनिया दे अजोके सियाने मनुखा ने ऐसा समझ लिया मनोरंजन मन दी लोड़ है। नाटक चेटक तरह तरह दे रंग तमाशे रंगीनिया इस तरह दे मनोरंजन दे साधन संपन्न घरानिया दे नवे तो नवे पैदा हो रहे ने, लेकिन मन दी अपनी एक अवस्था है, जिस चीज नू एक दफा वेख लवे ओनू पुराना कर देंदा है, ते पुराने दी मन परिक्रमा नहीं करदा, मन अगे जांदा है, मन गतिमान है, इदी गति बड़ी तीक्ष्ण है, और ए रुकदा नहीं, ए लंघ जांदा है, और लंघ के हर चीज नू पुराना कर देंदा है, हर वस्तु नू पुराना कर देंदा है, रंग पुराने हो जाते हैं, रूप पुराने हो जाते हैं, महफिलां पुरानियां हो जांदियां ने, तस्वीरां पुरानियां हो जांदियां ने, कहानियां पुरानियां हो जांदियां ने, संगीत दियां धुनां पुरानियां हो जांदियां ने, माहौल पुराना हो जांदा है। अज देखदे हां संपन्न घर जो है देशां विच ते कोई वध तों वध दो साल ही मकान विच रहिंदा है, तीजे साल मकान बदल देंदा है। नौबत इत्थे तक आ गई, परिवार बदलने ने, पति बदलना है, पत्नी बदलनी है, पर हुण कौन दसे? ए जो मनोरंजन है ए मन दी मंग नहीं, ए ते इस तरह है जैसे रोंदे हुए बच्चे नु छणकणा देके वक्ती तौर ते बुलाया जा सकदा है, पर उते दूध लई रो रहे है, उते मां लई रो रहे है। वक्ती तौर ते ए छणकणा देके बुलाया जा सकदा है, परचाया जा सकदा है, लेकिन फिर भी उसने छणकणा सुट देना है। हथ मां दी तरफ पसारने ने, दुध दी मंग करनी है। हू बहु देखदे पया संपन्न घरानिया दे लोग इना छणकणिया ने सुट रहे ने, और कहने नहीं अस्थाई सुकून चाहिदा है, मसनोई नहीं दायमी आनंद चाहिदा है, अस्थाई आनंद चाहिदा है, अस्थाई खेड़ा चाहिदा है। तो ओ जड़ा अस्थाई खेड़ा है, उते जो अस्थाई है, जो टिकिया होया है, जो दायमी है, जो हमेशा है, उस तो ही प्राप्त हो सकता है, और ओते केवल परमात्मा है, ओते केवल ईश्वर है, उस तो ही लग सकता है। तो मनोरंजन दे जेड़े जेड़े साधन उस दौर दे विकसित होए सन, सतगुरुदेव जी महाराज उसका जिक्र करते ने। सुंदर घोड़ा होवे, सोने दी काठी होवे, लगाम भी जर्रीदार होवे, और कृपान तलवार गात्रे वाली पहनी होवे, तीर कोल होवन, पत्था होवे, और तरह तरह दियां खुशबुआं होवन, और इस सब कुछ ला के घोड़े ते असवार होके निकलना एक मनोरंजन सी, एक मन दी लोड़ सी, नेजेबाजी एक खेडा, इस तरह दे मनोरंजन वक्ती तौर ते मन दा बहलावा सी उस दौर विच विकसित होए सन। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहंदे ने नहीं, मन दी ए लोड़ नहीं, और इस लोड़ नू किवें पूरा करना है? धन गुरु नानक देव जी महाराज दसदे ने, घोड़े पाखर सोयने साखत बूझण तेरी वाट। हे परमात्मा, जो मैं तेरा रस्ता जान लिया है, जो मैं तेरे रस्ते नू समझ लिया है, मानो ए मैनू घोड़े दी प्राप्ति हो गई है, और ऐसा घोड़ा जिदे ते जत सत दी काठी पई हुई है, सोने दी काठी पई हुई है। कहिंदे ने ए कोई लाजमी नहीं कि मनुख नू अपने घर दे ही रस्ते दा पता होवे, जो इट्टां ते पत्थरां दा बने होया मकान है और उस दे च आ गए है। अगर एही उसका घर है तो एक दिन इसे ही घर चो चार मनुख चुक के ले जांदे ने, और काडो काडो होई सतगुरु दी बाणी कहिंदी कड्डो कड्डो, तो एक गल स्पष्ट हो गई, इत्थे घर घर नहीं सी, सरां सी, इत्थे ते सी प्राउणे सी, मेहमान, घर ते कोई होर है। बाबा फरीद उसका जिक्र करदे ने, गोर निमाणी सड करे निघरिया घर आओ, सर पर मैथे आवणा मरनो ना डरियाओ, तन दा घर शमशान है, मन दा घर भगवान है, तन दा घर कबर है, मन दा घर खुदा है। तो बाबा फरीद कहिंदे घर ते आवाजां पिया मारदा है, ऐ तन कबर आवाजां पिया मारदा है, कबर तैनू बुला रही है, गौर निमाणी सड करे, गौर कबर नू कहिंदे ने, गौर निमाणी सड करे निघरिया घर आओ, सर पर मैथे आवणा मरनो ना डरिया, मौत दा भय दूर कर, ऐ तन तेरा घर शमशान ही है, ऐ तन तेरा घर कबरी है, पर मन तेरा घर खुदा है, तेरा घर शमशान नहीं है, तेरा घर भगवान है। अपने घर दी चिंता कर, और उस घर दे रस्ते दा नहीं पता। और असी देखदे हां सारी जिंदगी ਲੋਕ ਕਈ ਦਫਾ ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਰਗ ਵੀ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰਸਤੇ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਰਦੂ ਦਾ ਮਹਾਨ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਲਮਾਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਸੋ ਤੇ ਮੈਂ ਕੱਟ ਗਈ, ਕੁਛ ਗੁਨਾਹੋਂ ਮੈਂ ਕੱਟ ਗਈ, ਰੋਤੇ ਮੈਂ ਕੱਟ ਗਈ, ਕੁਛ ਆਹੋਂ ਮੈਂ ਕੱਟ ਗਈ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਪੇ ਚਲਨੇ ਵਾਲੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਪੇ ਜਾ ਲਗੇ, ਰਾਹੇਂ ਬਦਲਨੇ ਵਾਲੋਂ ਕੀ ਰਾਹੋਂ ਮੈਂ ਕੱਟ ਗਈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੜੀ ਥੋੜੀ ਹੈ ਔਰ ਰਸਤੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਬਦਲਦਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਸਤਿਆਂ ਚ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਚੁਣ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਬੜੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਰਸਤੇ ਜਗਤ ਦੇ ਚ ਬਣੇ ਸ਼ਾਹਰਾਹ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚਾਰ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਾਹਰਾਹਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਬੌਧ ਧਰਮ, ਜੈਨ ਧਰਮ, ਸਨਾਤਨ ਮਤ, ਗੁਰੂ ਮਤ, ਸਿੱਖ ਮਤ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਚਾਰ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਹਰਾਹ ਬਣੇ, ਸ਼ਾਹੀ ਰਸਤੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਰਸਤੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਹਾਨ ਔਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਰਸਤੇ, ਇਸਲਾਮ, ਈਸਾਈਅਤ, ਯਹੂਦੀ, ਪਾਰਸੀ। ਪਰ ਕਈ ਦਫਾ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਦਤ ਆਉਂਦੀ ਏ ਵਿੰਗੇ ਟੇਡੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣਾ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਸ਼ਾਹਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਉਕਤਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਦੂਰ ਸਮਝ ਕੇ, ਤਾਂ ਵਿੰਗਾ ਟੇਡਾ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਵਿੰਗਾ ਟੇਡਾ ਚੱਲ ਕੇ ਭਟਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਨੀਆ ਹੋਰ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਏ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿੰਗੇ ਟੇਡੇ ਰਸਤੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਪਹੁੰਚਦੇ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਹਿਰਾ ਦੇ ਚ ਹੀ ਭਟਕਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਚ ਬਣੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਯਹੂਦੀਆਂ ਤੇ ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਚ ਬਣੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਹਿੰਦੂ ਮਤ, ਸਨਾਤਨ ਮਤ, ਜੈਨ ਮਤ, ਬੌਧ ਮਤ ਤੇ ਸਿੱਖ ਮਤ ਦੇ ਚ ਬਣੇ ਨਿਕਲੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਰਸਤੇ। ਪਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੇਡੰਗੀ ਚਾਲ ਨੇ ਸ਼ਾਹਰਾਹ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਔਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਟਕਿਆ, ਉਹਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਭਟਕਣ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਰਹਿ ਗਏ ਔਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਮਾਰਗ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੋ ਭਟਕੇ ਹੋਏ ਰਸਤਿਆਂ ਦਿੱਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਭਟਕ ਗਏ। ਸ਼ਾਹਰਾਹ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਭੀੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਕੌਲੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ, ਜਹ ਮਾਰਗ ਪੰਡਤ ਗਏ ਪਾਛੇ ਪਰੀ ਬਹੀਰ, ਇੱਕ ਔਘਟ ਘਾਟੀ ਰਾਮ ਕੀ ਤੇ ਚੜ ਰਹੋ ਕਬੀਰ। ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚਤਰ ਚਲਾਕ ਮਨੁੱਖ ਚੱਲ ਪਏ, ਬੜੀ ਭੀੜ ਚੱਲ ਪਈ, ਤਰਕ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤਰਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਜੈਸੇ ਰਸਤੇ ਚ ਔਘਟ ਘਾਟੀ ਆਈ, ਪਹਾੜ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਨਾਰਾ ਕਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਕਿਨਾਰਾ ਕਸ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਭਟਕ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਪਹਾੜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਟਕਣ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਤੋ ਉਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਭਟਕੇ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਟਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਚੱਲਣ ਕਰਕੇ ਰਸਤੇ ਬਣੇ। ਇਹ ਭਟਕੇ ਹੋਏ ਰਸਤੇ ਕਰੀਬਨ ਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਜੋ ਹੈ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਭੂ ਤੱਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਭਗਵਾਨ ਤੱਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਪਰ ਹਾਂ ਰਸਤਿਆਂ ਦੇ ਚ ਭਟਕ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਆਲਮ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਪੇ ਚਲਨੇ ਵਾਲੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਪੇ ਜਾ ਲਗੇ, ਰਾਹੇਂ ਬਦਲਨੇ ਵਾਲੋਂ ਕੀ ਰਾਹੋਂ ਮੈਂ ਕੱਟ ਗਈ। ਜਿੱਥੇ ਰਾਸਤਾ ਕਠਿਨ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ ਮਨੁੱਖ ਉਥੇ ਰਾਸਤਾ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਮਾਰਗ ਮੈਦਾਨੀ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਹਾੜੀ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਔਘਟ ਘਾਟੀ ਰਾਮ ਕੀ ਤਹੀਂ ਚੜ ਰਹੋ ਕਬੀਰ, ਇਸੇ ਨੂੰ ਰਵਿਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਘਟ ਆਓ ਘਟ ਡੂੰਗਰ ਘਣਾ, ਇੱਕ ਨਿਰਗੁਣ ਬੈਲ ਹਮਾਰ, ਰਮਈਏ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਮੇਰੀ ਪੂੰਜੀ ਰਾਖ ਮੋੜਾ। ਔਘਟ ਘਾਟ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਤੇ ਚੜਨਾ ਬਹੁਤ ਕਠਿਨ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਲੰਘਣਾ ਬਹੁਤ ਕਠਿਨ ਹੋਵੇ ਔਰ ਚੜਾਈਆਂ ਤੇ ਦਮ ਫੁੱਲ ਜਾਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਉਚਾਈਆਂ ਤੇ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਚਾਈਆਂ ਤੋਂ ਜੋ ਵੀ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਰਸਤਾ ਬਦਲਦੇ ਨੇ ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਜੋ ਰਸਤਾ ਬਦਲਦਾ ਉਹ ਭਟਕਿਆ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਉਹਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪੱਕੇ ਰਸਤੇ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਇੱਕ ਦੇ ਭਟਕਣ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਦੁਨੀਆਂ ਭਟਕਦੀ ਏ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਟਕਣ ਕਰੀਬਨ ਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦੇ ਜੋ ਹੈ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਘੋੜੇ ਦੀ ਅਸਵਾਰੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕਾਠੀ ਹੈ, हे प्रभु जिड़ा मैं तेरे रस्ते नु जान ले तेरे मार्ग नु जान ले घोड़े पाखर सोयने साखत बूझण तेरी वाड मैं जान ले तेरा रस्ता की है उसका रस्ता की है जपो ता एको नामा अवर निराफल कामा धन गुरु नानक देव जी महाराज कहंदे ने तेरा नाम जपना ही तेरे राह ते चलना है तेरे मार्ग ते चलना है बाकी सब भटकना है नाम बिना जेता व्यवहार जो मृतक मिथ्या सिंगार नानक के घर केवल नाम सतगुरु देव जी महाराज कहंदे ने साडे घर दे ते केवल नाम दा ही जप है और कुछ भी नहीं और यही एक मार्ग है यही सही मार्ग है बाकी सारी दी सारी जो है भटकना है उदे रस्ते नु बुझना की है उदे नाम नु जपना और नाम जपन विच पूरा भरोसा होना कि परमात्मा तक पहुंचने दा यही मार्ग है यही रस्ता है तो साहिब कहंदे ने जिहड़ा तेरे रस्ते नु जान लिया तेरे वाट नु समझ लिया बस यही साडे वास्ते घोड़ियां दी असवारी है घोड़े पाखर सोयने साखत बूझण तेरी वाट तरकस तीर कमान सांग तेग मन गुण धात हे परिपूर्ण परमात्मा तेरे अनंत गुणा नु जो धारण कर लिया है यही साडे कोल भत्था है उस दे तीर ने यही साडे कोल कमान है और यही तेग बंद जिस दे तलवार रखी दी है उन्हू कहंदे ने तेग बंद गात्रा यही साडे कोल ओ गात्रा है और यही साडे कोल तलवार है केड़ा जो तेरे गुण साडे कोल ने ए जो ज्ञान आ गया ए जो शील आ गया है ए जो संजम आ गया है ए जो प्रेम आ गया है ए जो समदृष्टि आ गई है ए जो हृदय निर्वैर हो गया है निर्भय हो गया है यही ते साडे शस्त्र ने धन गुरु अर्जन देव जी महाराज भी इसका बड़े सुंदर ढंग नाल जिक्र करते ने आम कहा जाता है अवतारी पुरुषां कोल कुछ ना कुछ शस्त्र रहे ने मुहम्मद साहब दे हथ दे तलवार सी अपने देश नू देखिए श्री राम दे कोल धनुषबाण सी द्वापर युग दे अवतारी पुरुष श्री कृष्ण जी कोल सुदर्शन चक्र सी किसी तारकक ने गुरु अर्जन देव जी महाराज नू कह दिता तुसी पंजवें गुरु नानक दी गद्दी दे वारस कलयुग दे अवतारी पुरुष थोड़े कोल कोई शस्त्र नहीं है तो महाराज कहण लगे है वेखो गरीबी गदा हमारी खन्ना सगल रेन छारी इस आगे टिके न को विकारी गुरु पूरे ए गल सारी साडे कोल गदा है गरीबी दी विनम्रता दी निर्माणता दी साडे कोल खंडा भी है दुधारी केड़ा जो सारिया दे चरणा दी खाक बन गए हर एक दे पैरां दे थल्ले हो गए सानू किसे दे सिर दे उपर बैठण दा शौक नहीं सानू ते कदमां विच बैठण दा शौक है सानू ते चरणा दे थल्ले बैठण दा शौक है चोटी दे धार्मिक मनुख दी चाहत आउंदी है सारिया दे कदमां दे थल्ले बैठना है चोटी दे राजनीतिक दी एह चाहत आउंदी है कि सारिया दे सिर ते बैठना है राजनीति सिर ते बैठना है धर्म नीति कदमां दे जो है बैठना है तो महाराज कहंदे ने इह जो सारे गुण तेरे प्राप्त हो गए ने इह साडे कोल शस्त्र ने और गुरु अर्जन देव जी महाराज कहंदे ने विनम्रता साडे कोल गदा है सारिया दे चरणा दी जो खाक बन गए इह साडे कोल खंडा है तरकस तीर कमान सांग तेग बंद गुण धात वाजा नेजा पत स्यों प्रगट करम तेरा मेरी जात साडी इज्जत साडी मान मर्यादा साडी जात साडी पात एक ही है तेरी बख्शिश इह जो तेरी रहमत हो गई है इह जो तेरी बख्शिश है तेरी बख्शिश ही साडी जात है तेरी बख्शिश ही साडी इज्जत है तेरी बख्शिश ही साडी मान मर्यादा है बाबा होर चढ़ना खुशी खुआर जित चढ़िए तन पीड़िए मन में चले विकार होर असवारियां होर मनोरंजन दे साधन साहिब कहंदे ने हे सियाणे मनुख सब खुआरियां नू जन्म देंदे ने सब दुख संताप नू जो है जन्म देंदे ने मन विकारी हो जांदा है तन रोगी हो जांदा है ऐसे मनोरंजना नू एक पासे करना है ऐसियां असवारियां नू एक पासे करना है बाबा होर चढ़ना खुशी खुआर जित चढ़िए तन पीड़िए मन में चले विकार
1: घर मंदिर
0: खुशी नाम की नदर तेरी परवार। हुक्म सोई तुद भावसी होर आखण बहुत अपारे। नानक सच्चा पात साओ पूछ न सकरे बिचारे। बाबा होर सोना खुशी खुआरे जित सुत।

महाराज, पति पत्नी दे रिश्ते नो खून दा रिश्ता नहीं मनदे, और रूहे जमीन ते यही अवतारी पुरुष है जिसने बुलंद बांग कह दिता ए कोई खून दा रिश्ता नहीं है। इत एक जोत दोए मूर्ति धन पर कहिए सोए, ए जोत एक है, मन एक है, विचार एक ने, सिर्फ शरीर दो ने, और परिपूर्ण परमात्मा ने इस तरह दे दो शरीर बनाए ने, पर मन एक ने। महाराज कहते ने भूल के भी उन्होंने पति पत्नी ना आखना, जो सारी जिंदगी एक कोई मकान दे रहे ने, पर जोत एक नहीं हो सकी। धन पर ए ना आखियन, महाराज कहते ने भूल के भी ना आखो ए पति है ए पत्नी है। धन पर ए ना आखियन, बैन इकट्ठे होए सारी जिंदगी इकट्ठे रहे, इको मकान देच रहे, इको स्थान देच रहे, दुनिया दी नजरां च भी इस तरह जापे जिवे इकट्ठे रह रहे ने, खुशखरम रह रहे ने, ठीक रह रहे ने। पर साहिब कहंदे नहीं, धन पिर ए ना आखियन, बैन इकट्ठे होए एक जोत दोए मूर्ति धन पिर कहिए सोए, दोहां दी जोत एक हो जाए, विचारां दी इतनी गहरी सांझ हो जाए, एक पत्नी हो जाए, एक पति हो जाए, एक दूजे दी पत, एक दूजे दे हाथ च होए, एक दूजे दी इज्जत एक दूजे दे हाथ च होए, और अपने हत्थां नूं इतना संभाल के रखन कि मेरे हाथ विच किसी दी पत है, मेरे हाथ विच किसी दी इज्जत है, मेरे हाथ विच किसी दा सुकून है, मेरे हाथ विच किसी दी शांति है, मेरे हाथ विच किसी दी जिंदगी है। अपने हत्थां नूं पति संभाल के रखे और अपने हत्थां नूं पत्नी संभाल के रखे, और इस तरह जोत एक हो जाए, तो साहिब कहंदे ने ए पति पत्नी ने, और यही एक रिश्ता है जो दादकियां दे रिश्ते नूं जन्म देंदा है, नानकियां दे रिश्ते नूं जन्म देंदा है, सहुरियां दे रिश्ते नूं जन्म देंदा है। यह रिश्ता टुट गया और यह रिश्ता है नहीं तो सहुरे कित्थे, नानके कित्थे, ते दादके कित्थे। गुरु नाल ही कोई संबंध नहीं तो ऋषि होना, संत होना, भगत होना, जोगी होना, महान त्यागी होना, बैरागी होना, ये सब कुछ किथे है? ये प्रगति नहीं हो सकता, ये उजागर ही नहीं हो सकता। और बाकी रिश्ते जन्म ही नहीं ले सकते जे पति ते पत्नी दा रिश्ता नहीं। तो मनुख दे प्राणा विच बड़ी प्रबल प्यास है, एक छोटा जिहा बच्चा है, चाहीदी है मां, चाहीदा है पिता, पर जैसे जैसे ए वड्डा हुंदा है और इसनू तन्हाई अखरदी है तो चाहीदी है भैण, चाहीदा है भरा, मां बाप नाल बराबरी नहीं कर सकदा सी, ऐसा भी चाहीदा है जिथे कुछ बराबरी महसूस हो गए, भैण ते भरा देच बराबरी है, भाई भाई देच बराबरी है, और जिथे बराबरी ना होवे उथे उन्होंने दो भरा कहना बेमैनी है। जिथे बराबरी नहीं शायद वो भैन ते भरा नहीं है। मां बाप नाल बराबरी करनी औखी सी, मां वड्डी है, प्यो प्यो है, उसके हत्थां च पले है, वड्डा होया है, और उसकी असीसा नाल इसने चलना फिरना सिखया है, वड्डा होया है। इदे प्राण इदी आत्मा तड़प दिए कोई ऐसा भी होवे जिन्हू मैं कह दिया ये मेरे वर्गा मेरे वर्गा है, बराबरी तो चाहीदी है भैन, चाहीदा भरा, बहुत वड्डी घाट रह जांदी उस मनुख दी जिंदगी च जिसका भरा ना होवे। लोकी कह देंदे ने इदियां ते बावां ही कोई नहीं, और कह देंदे ने इदी ते भैन नहीं, इदा ते कोई माण ही नहीं, भैन भरा ते माण करदी है, भरा भैन ते माण करदा है। अक्सर ऐसा जो है देखिया गया है तो कहंदे माण तां ही नहीं रह जांदा अगर भरा नहीं है, बहन नहीं है। नानक सास भराई, महाराज स्त्री दी उपमा इंज पे कर दे, नानक सास भराई ए पागा वाली है, क्योंकि सबराई ए चंगे भरावां वाली है, ए मान तान वाली है, एदे भरा ने, एवें नहीं है, एदे भरा भी ने, ए नहीं आखिया एदे मां बाप भी ने, नहीं ए भरावां वाली है। उस स्त्री दी भारतीय समाज विच आद काल तो मान प्रतिष्ठा बनी हुई है, कह दिता जांदा इते भरावां वाली है, इहदे भरा ने, इह एवें नहीं, इह नहीं आख्या जांदा इहदा प्यो भी है, इहदी मां भी है, नहीं नानक सास भराई। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहंदे ने इते भरावां वाली है।

0: ਥੋੜੀ ਏ ਤੋ ਭਰਾ ਭੈਣ ਦਾ ਮਾਣ ਨੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ ਭਰਾ ਭਰਾ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਹੈ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਗਾਂਹ ਚੱਲ ਕੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਪਿਆਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਕ ਉਮੰਗ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਿਪਰੀਤ ਦੀ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਸ ਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪੁਰਖ ਮੇ ਨਾਰ ਨਾਰ ਮੇ ਪੁਰਖਾ ਬੂਝੋ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਓ ਇਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਇਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣੋ ਕੋਈ ਪੁਰਸ਼ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਧੀ ਇਸਤਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਕੋਈ ਇਸਤਰੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸਤਰੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਧੂਰਾ ਪੁਰਸ਼ ਵੀ ਬੈਠਾ ਅਗਰ ਮਾਂ ਬਾਪ ਤੋਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਚ ਕੁਛ ਮਾਂ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਚ ਕੁਛ ਪਿਤਾ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ ਕੋਈ ਪੁਰਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤੋ ਮੈਜ਼ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਪਿਤਾ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਇਸ ਦੇ ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਮਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਹੈ ਔਰ ਕੋਈ ਇਸਤਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕੋਈ ਲੜਕੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਮੈਜ਼ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਚ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਮਾਂ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਪਿਤਾ ਦੀ ਘੱਟ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਐਸਾ ਪੁਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸਤਰੀ ਨਹੀਂ ਔਰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਇਸਤਰੀ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਚਲੀ ਕਿ ਹਰ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸਤਰੀ ਅਰਧ ਅੰਗ ਵਿਚ ਹੈ ਅਧੂਰੀ ਹੈ ਅੰਦਰ ਔਰ ਹਰ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁਰਸ਼ ਅਰਧ ਅੰਗ ਹੈ ਅਰਧ ਅੰਗ ਨਹੀਂ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਅਰਧ ਅੰਗ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਚ ਔਰ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਚ ਪੁਰਸ਼ ਵੀ ਅਰਧ ਅੰਗ ਹੈ ਕਾਰਨ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜੋ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਅਧੂਰਾ ਹੈ ਇਹ ਅਧੂਰਾ ਪੁਰਸ਼ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਧੂਰੀ ਇਸਤਰੀ ਹੈ ਉਹ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੰਦਰੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੇ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਔਰ ਇਸੇ ਪੂਰਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੀ ਵਿਵਾਹ ਤੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਧੂਰੀ ਇਸਤਰੀ ਅੱਜ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਅਧੂਰਾ ਮਨੁੱਖ ਅੱਜ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਉਹ ਅਰਧ ਅੰਗ ਅੱਜ ਸੰਪੂਰਨ ਅੰਗ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਉਹ ਅਰਧ ਅੰਗ ਜੋ ਪੁਰਸ਼ ਸੀ ਅੱਜ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਇਆ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਧੂਰਾ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਅਧੂਰਾ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਦਰਅਸਲ ਇਸਤਰੀ ਅੱਜ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਪੁਰਸ਼ ਅੱਜ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸੰਪੂਰਨ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਤਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੈ ਔਰ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਜਗਤ ਵਿਚ ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ ਵਰਗੀ ਹੋਰ ਫਿਰ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਮਝ ਲੋ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਇਸ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਮੂਲ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਔਰ ਅਕਸਰ ਐਸਾ ਜੋ ਹੈ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਧੂਰੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸਤਰੀ ਅਰਧ ਅੰਗ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੰਪੂਰਨ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁਰਸ਼ ਅਰਧ ਅੰਗ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੰਪੂਰਨ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਛੁਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬਾਲੀ ਰੋਵੈ ਨਾਏ ਭਤਾਰ ਨਾਨਕ ਦੁਖੀਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਬਾਲੀ ਇਹ ਕੁਆਰੀ ਕੰਨਿਆ ਜੋ ਵਿਆਹਣ ਯੋਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਇਹਦਾ ਰੋਣਾ ਹੋਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਅਧੂਰਾ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸਦਾ ਮੂਲ ਦੁੱਖ ਇਹੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਬਲ ਦੁੱਖ ਇਹ ਹੈ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਦਹਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਚ ਕਦਮ ਰੱਖਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਮਰਦ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਅਧੂਰੀ ਇਸਤਰੀ ਹੈ ਉਹ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੋ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਪਤਨੀ ਨੇ ਵਾਕਈ ਪਤੀ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੋ ਉਸ ਪਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਅਧੂਰੀ ਇਸਤਰੀ ਸੀ ਉਹ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ और उस पति दे अंदर उस पुरुष दे अंदर जो अधूरी स्त्री बैठी है वो अंस मां दी है, अधूरी अंस उस दे अंदर मां दी है। और जो लड़की है वो जो बच्ची है वो जो पत्नी है उस दे अंदर अधूरी अंस पिता दी है। मां बाप तो शरीर आया है तो अंस ते मां बाप दी है। तो स्त्री दे अंदर अधूरा पुरुष जो बैठा है वो अधूरा पिता ही है, और स्त्री दे अंदर जो अधूरा पुरुष बैठा है वो पिता ही है, और पुरुष दे अंदर जो अधूरी स्त्री बैठी है वो मां ही है। इंज कह लो जीवन भर पुरुष मां दी तलाश करता है, जीवन भर स्त्री पिता दी तलाश करती है, और उसनु अपने पति देच पिता दी झलक ना मिले, अपनी पत्नी देच मां दी झलक ना मिले, यकीन जानो तृप्ति नहीं आती। सारी जिंदगी अधूरापन रहेगा, खटकदा रहेगा, बोझ रहेगा। और वाकई स्त्री दिच किधरे मां दी झलक मिल गई, मां दे स्वभाव दी झलक, मां दी ममता दी झलक, मां दी शफकत दी झलक, मां दी हमदर्दी दी झलक, मां दे प्यार दी झलक, मां दी कुर्बानी दी झलक जे किधरे पत्नी दे च मिल गई तो समझ लो पुरुष संपूर्ण हो गया, मुकम्मल हो गया। और इस तरह स्त्री नूं जे किधरे पति दे चो अपने पिता दे प्यार दी झलक मिल गई। बाल कन्या को जैसे बाप प्यारा, भाई को अत भाई। गुरु नानक देव जी महाराज कहंदे ने कि बच्ची ये बाल कन्या पिता दी तरफ लपकदी है, ये बावां पसारदी है, इसका मान तान पिता है, ये परिक्रमा प्यो दे आले दुआले करदी है, और प्यो दा प्यार भी अक्सर इसलिए छलकदा है, इसलिए जो है उमड़दा है। पति दे चों ए प्यार ना मिलिया, पिता दे प्यार दी झलक ना मिली, पिता दे प्यार दी शफकत ना मिली, पिता दे प्यार दा हुलारा ना मिलिया, ए स्त्री भी अतृप्त रहेगी। इस रिश्ते च ओनू कोई सुकून नहीं मिलेगा, रूहानी सुकून नहीं मिलेगा, रूहानी तस्कीन नहीं मिलेगी। और इस तरह दे रिश्ते है जो इंज कह लो पति नूं पत्नी दे चों मां दी झलक नहीं मिली, और पत्नी नूं पति दे चों कोई पिता दी शफकत ते पिता दी तस्वीर सामने नहीं जो है प्रगट होई, ए रिश्तियां च अंदरूनी तौर ते दरार बनी रहिंदी है। और कई दफा हालात ऐसे हो जांदे ने बैरूनी तौर ते भी दरार प्रगट हो जांदी है, नौबत तलाक तक पहुंचती है, रिश्ते जो है टूटते ने। वास्तविक ए रिश्ता जोत दा रिश्ता है, अंदरूनी रिश्ता है, और परिपूर्ण परमात्मा ने इस ढंग दा जो है बना रखे। धन गुरु नानक देव जी महाराज इन्हां महान रिश्तियां दा जिक्र बड़े सोहने आलमाना ढंग नाल उजागर करदे ने। घर मंदर खुशी नाम की नदर तेरी परवार। हे परिपूर्ण परमात्मा, मेरा बड़ा सुंदर घर भी है, बड़ी सुंदर महल माड़ी भी है, और उस घर दे च उस महल माड़िया दे अंदर मेरा बहुत सुंदर एक परिवार भी है। मैं फिर अर्ज करा, मनुख नु सिर्फ खाना ही नहीं चाहिदा, सिर्फ पीना ही नहीं, सिर्फ पहनना ही नहीं, सिर्फ मनोरंजन ही नहीं, मनुख नु घर भी चाहिदा। और सिर्फ घर नहीं परिवार भी चाहिदा, अगर परिवार नहीं तो घर ही नहीं। घर दे च ओ भी चाहिदी है जिसनु कहा जाए घर वाली, घर दे च ओ भी चाहिदा है जिसनु कहा जा सके घर वाला। घर वाला ही नहीं है, घर वाली ही नहीं है तो घर कादा, घर की है। कोई इट्टां दी ढेरी नूं घर थोड़ी कहंदे ने, कोई पत्थरां दे इकट्ठ नूं घर थोड़ी कहंदे ने, नहीं। घर है तों इस दी शोभा है घर वाले नाल, घर वाली नाल। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहंदे ने हे परिपूर्ण परमात्मा, ए जो तेरी मेरे ते निगाह हो गई है, ए जो तू मेरे ते अपनियां निगाहां सुट दितियां ने, ए जो मैं तेरी निगाह दे थल्ले आ गया, ए मैनू सुंदर महल दी प्राप्ति हो गई है, परिवार दी प्राप्ति हो गई है, घर दी प्राप्ति हो गई है। हुक्म सोई तुद भाव सी होर आखण बहुत अपार। दरअसल मनुख ते प्राणा दे च ए भी प्यास है कि मैं घर दे च जो कुछ आखां मेरी गल ठुकराई ना जाए, मेरा बोल काबले कबूल हो, मां नू पिता नू पत्नी नू पुत्रा नू भरावां नू भैणा नू। कम से कम मेरी गल रद्द ना की दी जाए। साहब कहंदे ने हुक्म सोई तुद भाव सी होर आखण बहुत अपार। ऐही मेरा हुक्म करना है केड़ा जिड़ा तेरे हुक्म नू पा जाना है, जिड़ा तेरी रजा दा मैनू चंगा लगना है। जो तेरा हुक्म मैनू चंगा लगन लग पे है मानो यही मेरा हुक्म पे चलदा है, यही मेरी गल पे चलदी है, मेरी गल कोई रद्द नहीं करदा। दरअसल एक बहुत वड्डी सच्चाई अध्यात्मक दुनिया दे प्रगट होंदी है उस दिन, जेड़ा मनुख परमात्मा दा हुक्म मनदा है जगत उसका हुक्म मनदा है, और जो परमात्मा दे हुक्म नु एक पासे कर देंदा है उस मनुख दे हुक्म नु भी दुनिया बहुत चिर तक मन नहीं सकदी, ओनू भी नजरअंदाज कर दिता जांदा है, उसनु भी एक पासे सुट जांदा दिता जांदा है। जो उस एक दा हुक्म मन लैंदा है उसका हुक्म सारी कायनात पे चलता है। तो हुक्म सोई तो दभाव सी और आखण बहुत अपार, और ते बहुत कुछ कहना है, बहुत कुछ कहना है, पर हे परिपूर्ण परमात्मा वास्तविक तेरी रजा दे च राजी रहना, तेरे हुक्म नू जो है चंगा समझ के ओनू अपने अंदर धार लेना, तेनू पा जाना, बस यही अपनी गल दा चलाना है, यही जो है असी अपना हुक्म चलांदे आं। नानक सच्चा पातशाह पूछ ना करे विचार, ओ परिपूर्ण परमात्मा सच्चा है, मालिक है, पातशाह है, ओ किसे कुल पुछ पुछ के बख्शा नहीं देंदा, दे ही जांदा है। किसे खेत कुल बदल पुछदे नहीं बरसीए के ना बरसीए, किसे घर कुल सूरज पुछदा नहीं रोशनी देईए के ना देईए, किसे घर दे कोलो चंद्रमा पुछदा नहीं मैं अपनी किरणा खिलेरा के ना खिलेरा, और किसे मनुख कोल पवन पुछदी नहीं तेनु छुआ के ना छुआ। महाराज कहंदे इस तरह परमात्मा पुछदा नहीं, बिना पुछिया ही सब कुछ देई जांदा है, बिना पुछिया ही सब कुछ वंडी जांदा है, बिना पुछिया ही सारिया नियामता झोली दे जो है पाई जांदा है। आखरी रहाओ चौथा रहाओ, बाबा होर सोना खुशी खुआर, जित सुते तन पीड़ी है मन में चले विकार। गुरबाणी ग्रामर दे मुताबिक इथे सौण दे अर्थ ने ऐशो इशरत, परिवारिक ऐशो इशरत, परिवारिक सुख साधन, परिवार दा सारा सुख दा माहौल। बाबा होर सोना खुशी खुआर, जित सुते तन पीड़ी है मन में चले विकार। होर सोना होर ऐशो इशरत, इस तो इलावा जो सतगुरु देव जी महाराज ने सुहाग दसी, इस तो इलावा जिहड़ी ऐशो इशरत है महाराज कहिंदे ने तन नूं पीड़ित कर देंदी है, मन नूं रोगी कर देंदी है। ए पावन पवित्र वाक धन गुरु नानक देव जी महाराज दा ऐसा है, चार रहावां दे च जिंदगी दे मूल सिद्धांत सारे दे सारे बयान कर दिते ने, और तय दिल नाल जो इन्हां नूं हिरदे दे च वसा लवे लोक परलोक उसका सुहिला हो जाता है, तन दे तलते अरोग रहिंदा है और मन दे तलते आनंदित होंदा है, इस तरह उसका लोक परलोक सुहिला हो जाता है। और ये पंक्ति उस दे पूरी उतरदी है, ए लोक सुखिए परलोक सुहेले नानक हर प्रभ आपे मेले।
1: ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भो निर्वैर अकाल मूरत, अजूनी सैभं गुरप्रसाद, बेसुमार अथा अगन अतोलय

다른 걸 원생지 말하이다. 혹은 레헷 베아리 모지코 시크 베아라나 दरअसल सिख का स्वरूप ही ता बनता है जी उस को रहनी हो गए। रहनी दो तरह की, मानसिक ते शरीरक। मानसिक रहनी है बाणी दा पाठ, जपजी साहब, जाप साहब, सवैये चौपाई, आनंद साहब और जितनी बाणी पढ़ सके। मूल मंत्र दा जप एक ओंकार तो लेके गुरप्रसाद तक वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु मंत्र दा जप दो वक्त, 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा या जितना उसको समय। ये मानसिक रहत है। तन दुते पंच ककार ये शरीरक रहत है। मन करके सिख बने, तन करके ये सिख बने तो मानसिक ते शरीरक रहत चाहिए। ना मानसिक रहत होवे ना शरीरक, तो धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहंदे ने ए सिख मैनू प्यारा ने, क्योंकि इसने पाहुल नहीं ली और रहनी नहीं रखी। धरे केस पाहुल बिना देखी मूरख सिख, तिसको दर्शन ना है मेरा पापी त्यागे बिख। रहत नामे इस तरह के बोलने, ज्यो काहू पे गधा नवायो फूल माल ताए मूंड धरायो। जिमें कोई खोते नु इशनान करा के उदे गल विच फुलां दी माला पावे और उदे शरीर दिते चंदन इत्यादिक लावे। ज्यो काहू पे गधा नवायो फूल माल ताए मूंड धरायो, तैंकी कर ताकी शोभा नाही, हासी होए होत जग माही। अगर इस तरह करके कोई खोते नु बाजार विच ले आवे, लोकी उसनु वड्याण नहीं लगे बल्कि हसन गए उसते, भई लै खोते नु इशनान करा के चंदन ला के गले विच फुलां दी माला पवा के लैके आ गया। तैंकी कर ताकी शोभा नाही, हासी होए होत जग माही। ये प्रमाण किस प्रथाई दिता जा रहा है, अगां फरमान कर देने। तिम कुरतियन केस रखाए कहो कैसे ओ शोभा पाए। इसे तरह जो कुरैती है उसने केस रखे हुए ने, मानो खोते नु इशनान कराया गया, फुलां दी माला पवाई गई है, चंदन आदक लाया गया, बस खोते ही रखोता है। सिर्फ सिर्फ केस ने, ना मानसिक रहत ना बाकी शरीरक रहत। भाई साहब भाई नंदलाल दा बड़ा सुंदर फरमान, निशाने सिखी ई पंज हरफ का, जिथे हृदय दी बनावट बनेगी बाणी नाल, मूल मंत्र दे जप नाल, गुरमंत्र दे जप नाल, उथे शरीर सिखी दा स्वरूप पेश करेगा। इना पंच ककारा नाल, कक्का के

और इस तरह दा अंदर वीर रस बने आ रहा है तो फिर मनुख अपनी भी रक्षा कर सकता है, कौम की भी रक्षा कर सकता है, देश की भी रक्षा कर सकता है, और किसी तरह का भी कोई हथियार होवे उस नाल रक्षा करेगा। लेकिन सिपाही होने का भाव तो बने आ रहे, अंदर वीर रस ते बने आ रहे, वो तो ताई हो सकता है कि हर वक्त मनुख ने कोई शस्त्र पहने होवे। तो इस तरह तिरपान पहनन दी, धारण करन दी सानू ताकीद की गई। भाई साहब भाई नंद लाल कहने निशाने सिखी ई पंज हरफ काफ के हर गिज ना बाशद ई पंज माफ कड़ाकार दो काच कंगा बिना बिना केस हेच अस्त ई जुमला निशान। अज दे साइंस युग दे विज्ञानिक युग दे तरखड़ी आउंदी है कि नाखून कटदे हो ये भी प्राकृतिक ने, ते की होया अगर केस कटे जा रहे हैं, की होया अगर केसां दा मुंडन है, आखिर नाखूनां दा भी तो मुंडन कर दे ही है। नाखूनां दा वो हिस्सा कटिया जांदा है जो मुर्दा ने मर चुके ने, जिवें घर विच कोई प्राणी मर गया है चलाना कर गया है तो हुण मुर्दे नूं घर विच ते नहीं रखते, और घर विच रखांगे तो बदबू, घर विच रखांगे तो गलाजत, घर विच रखांगे तो सारा घर मरगट बनेगा। इस वास्ते मुर्दे नूं मरगट घाट लै जांदे आ और जला के खाक कर दे। नाखून जो मुर्दा हो जांदे ने मैल नाल भर जांदे ने और बीमारियां दे ओ जन्मदाते बनदे ने। जिंदा नाखून जो मांस दे नाल जुड़े होया है, जिंदा है, उसनूं कटांगे तो खून निकलेगा, उसनूं कटांगे तो पीड़ होवेगी, पर जो अगे वध चुके है मैल नाल भर गया है ये तो मुर्दा है। इस नाखून नूं कटना मैल नूं कटना है, परे सुटना है। प्रकृति ने जब उसनूं खत्म कर दिता है, मुर्दा कर दिता है, तो मुर्दा इस शरीर तो अंग तो एक पासे करना पड़ेगा, जैसे घर दे वेड़े तो मुर्दे नूं एक पासे करते हैं। हां केस भी कुछ मरदे ने, पर सानू किस तरह पता चलेगा केड़े केस मुर्दा हो चुके ने, दाड़े दे केड़े वाल मुर्दा हो चुके ने, सिर दे केड़े केस मुर्दा हो चुके ने, ये साडे हत्थां नूं नहीं पता चलदा, ये कंगे नूं पता चलदा। जैसे जैसे असीं कंगा फेरदे हां मुर्दा केस झड़ जांदे ने, निकल जांदे ने। जैसे नाखून रोज वधदे ने, रोज नवे केस पैदा होंदे ने और पुराने झड़दे ने। ये केसां दा जन्म ते मरण जीवन भर चलदा रहिंदा है। कुछ ते सियाणे कहिंदे ने कि मुर्दे दे भी केस वधदे ने और नाखून वधदे ने। खैर जो कुछ भी है, जो केस मुर्दा ने कंगे दे राही झड़ जांदे ने, निकल जांदे ने, और जो जिंदा ने ओ सवर जांदे ने, सवर जांदे ने। प्रकृति केसां नूं एक सीमा तक रखती है, चाहे वह मुखड़े दे ने चाहे वह सिर दे ने। असी देखदे हां जो केसां दा मुंडन करदे ने आखरी दवां तक केस उन्हां दे वधदे ने, दाड़ा मुनिया चौथे पंजवें दिन फिर दाड़ा आ गया, फिर मुनिया चौथे पंजवें दिन फिर आ गया। लेकिन इस मुंडन नूं इस मुंडन नूं कोई छोड़ देवे तो दाड़ी एक सीमा ते आके रुक जाती है और जीवन भर उत्थे जो है रुकी रहती है, उस तो अगे जो है नहीं जाती। केस भावे नवे जन्म दे रहिंदे ने, मुर्दा झड़दे रहिंदे ने, लेकिन लंबाई एक सीमा तक ही आखिरी दमा तक जो है रहिंदी है। प्रकृति ने इस तरह नाप तोल के हर एक नूं जो है केस दिते हुए ने। केसां दा मुंडन प्रकृति नाल जंग है और इस जंग विच हार ही हुंदी है, जित नहीं आउंदी, क्योंकि आखरी दमा तक केस निकलदे रहिंदे ने, वधदे रहिंदे ने। जैसे जैसे सिर विच आत्म ज्योति खत्म आउंदी गई, नाम अभ्यास खत्म आउंदा गया, केसां दी कदर भी घटदी गई। अज भी असीं देखदे हां कि रामलीला विच राम पेश करना है स्टेज ते, विश्वामित्र नूं पेश करना है, विशिष्ट जी नूं पेश करना है, तो जोड़े भी चाहिए ने, दाड़ियां भी चाहिए ने, और अक्सर

बाजार तो नकली जूड़े नकली दाड़ियां खरीद के लिया जाए। असी इस गल का माण कर सकते हैं कि साढ़े सिर ते जूड़ा असली है राम वर्गा, साढ़े मुखड़े ते दाड़ा असली है विश्वामित्र जैसा, विशिष्ट जैसा, अवतारा का स्वरूप, ऋषि मुनिया का स्वरूप। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने, धन गुरु नानक देव जी महाराज ने साड़ी झोली दे पाया है। हां जद कोई ऋषि होने तो मुनि होने तो संत होने तो थले जाता है, मनुखता तो थले गिरदा है, तो जब थले ही गिर गया तो फिर हुण केसां दी लोड़ भी नहीं। अज सारी दुनिया विच केसां दा मुंडन है। थोड़ी जिया कौम जिसनों असी सिख कहिंदे आ, केस इस कोली दिखाई देंदे ने, या कुछ थोड़ा जिया साधु समाज। वैसे बगौर मुताला करिए, मुहम्मद साहब केसाधारी सन, हजरत ईसा केसाधारी सन, और इसे तरीके नाल भारत दे तमाम ऋषि मुनि अवतारी पुरुष केसाधारी सन। और सिर्फ केसाधारी नहीं, बहुत अवतारी पुरुष शस्त्रधारी भी सन, जैसे धनुषबाण श्री राम कोल है, जैसे सुदर्शन चक्र श्री कृष्ण कोल है, जैसे तलवार मोहम्मद साहब दे जो है हथ दे च है, और इसे तरीके नाल परशुराम कोल कुलाड़ा है, बरछा है, हनुमान दे कोल गदा है, गदा विष्णु जी कोल भी है। और इस तरीके नाल असी देखते हैं बहुते अवतारी पुरुष पैगंबरी पुरुष शस्त्रधारी ने केसाधारी ने, जैसे जैसे पैगंबरां नूं अवतारां नूं मनना घटदा गया, उन्हां दा सत्कार सन्मान घटदा गया, क्योंकि जितनी मिकदार विच मनुख दा अहंकार वधदा है उतनी ही मिकदार विच अवतार दा सत्कार घटदा है। ते जिस दे लई कोई सत्कार नहीं रहा, आदर नहीं रहा, उस दे पिछे चलण दी लोड़ की है। हां कदी कदी नकली राम बन के चलो सामने एक तमाशा कर दिता, नकली जूड़ा सिर ते रख के, नकली दाड़ा मुखड़े ते लगा के इस तरह नकल पेश कर देती। लेकिन ये पेश करना भी इस गल दा सबूत है कि जूड़ा केस इना अवतारी पुरुषा ने धारण किए हुए सन, और जे इना दी उस जमाने विच लोड़ सी तो अज भी लोड़ है। अगर अज लोड़ नहीं है तो फिर जूड़े तो बिना ही राम पेश करना चाहिए, दाड़े तो बिना विश्वामित्र ते विशिष्ट नो स्टेज ते पेश करना चाहिए। ऋषि मुनियां दा स्वरूप, पैगंबरां दा स्वरूप, गुरु अवतारां दा स्वरूप धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने सानू प्रदान कीता, और प्रदान करके साफ आग दिता, खालसा मेरो रूप है खास, खालसे मैं हूं करो निवास। जिवें चंगी औलाद मां बाप दे नाम नो रोशन कर दी है, तिवें धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहिंदे ऐ खालसा तेरा जीवन इतना उच्चा है और तू ऐसा संत स्वरूप बने है, तू मैनू चार चंद ला दिते ने, तू मैनू सजा दिता है। मान नाल सतगुर इत्थे तक कहिंदे ने इन ही की कृपा के सजे हम हैं, नहीं तो मोसे गरीब करोड़ परे हैं। किसी नूं शक ना पवे कि खुशामद कीती जा रही है या गल वधा के आखी जा रही है। तो महाराज कहिंदे या में रंच न मिथ्या बाकी, पार ब्रह्म गुरु नानक साखी।